ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:53 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

6:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में समाचार, 7:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार, 9:02 पर लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित

कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर, 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:02 पर बॉलीवुड ट्रेल्स, 12 बजे अंग्रेजी में समाचार, 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल, 1 बजे हिंदी में समाचार और 1:02 पर मेरा वाला सॉन्ग।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

एफएम रेनबो पर इस समय हुआ है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी क्षेत्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, वैश्विक बागवानी क्षेत्र से रायल सीमा के किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी सेवन देशों ने तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी सेवन और सहयोगी देश अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करेंगे। पाकिस्तान सरकार और जेल में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से ज्यादा स्कूलों को बाधित कर दिया और इस दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई। एशियाई खेलों में पुलिस ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीन बोरगोहाइन और अंकुश

संघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

कोने में बैठ क्यों रोता है, कोने में बैठ क्यों रोता है, यूं चुप चुप सा क्यों रहता है, आगे बढ़ने से क्यों डरता है, सपने बुनने से क्यों डरता है, तकदीर को क्यों रोता

है तो मेहनत से क्यों डरता है, क्या खूबसूरत लाइन है नरेंद्र वर्मा जी की। और की जो कविता है ये हमें इंस्पायर करती है, हमें बताती है कि केवल अपनी किस्मत को रोते रहने से बात नहीं बनेगी दोस्त, इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा, निकलना होगा, भूलना होगा उन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को, उन सारी पुरानी बातों को जो आपको याद दिलाती हैं आपकी हार के बारे में, जो आपको याद दिलाती हैं उन कटु अनुभवों के बारे में, क्योंकि वो उसके आगे भी एक दुनिया है, उसके आगे भी एक जीत है, उसके आगे भी एक खुला आसमान है जो आपकी उड़ान का इंतज़ार कर रहा है। तो बस अपने पंख फैलाइए और निकल पड़िए एक नए सफर की ओर। मैं हूं ऋचा आपके साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ, जब आप खुद निकल पड़ते हैं अपनी जीत के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद आपको सपोर्ट करने लगती हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो आपको पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। और एक ऐसी ही कहानी अब मैं आपके लेकर आई हूँ जो आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। एशियन गेम्स 2026 चल रहे हैं अभी, और ऐसे में कई सारी ऐसी कहानियाँ निकल कर सामने आती हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे आप लाइफ में, आपके पास हार का दरअसल कोई ऑप्शन ही नहीं होता, और फिर जब आप जीतते हैं तो वो जीत केवल आपकी रहती ही नहीं है, वो पूरे देश की जीत बन जाती है। और ऐसी ही कहानी है नीरू धांडा की। जी हाँ, नीरू धांडा जी की कहानी एक इतनी प्रेरक कहानी है कि 2026 एशियन गेम से 10 दिन पहले वह अस्पताल में भर्ती थी, और अस्पताल में भर्ती होने की वजह से, बीमारी की वजह से, वो लगभग 3.5 हफ्ते की वो जो फिनिशिंग ट्रेनिंग होती है ना, वो नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जापान पहुंचकर उन्होंने वुमेन्स ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन किया, एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता, और यहां से शुरुआत हुई उनके पहले एशियन गेम्स इंडिविजुअल गोल्ड की। ये शुरुआत इनकी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि शुरुआत में अपने कज़न लक्ष्य श्योरेन के इक्विपमेंट और गन से इन्होंने प्रैक्टिस की थी, और उसके बाद हालात कितने भी मुश्किल हुए, लेकिन अगर हिम्मत बची है तो जीत की संभावना हमेशा बची रहती है। और कहते हैं ना कि फिल्म दंगल का भी एक डायलॉग आपने सुना ही होगा कि जिसमें कहा है कि मारी छोरियां छोरों तक कम हैं के, और जब छोरियां अपने पे आती हैं तो बिल्कुल ये धाकड़ छोरियां कुछ ना कुछ जीत के हमारे लिए लेकर आती हैं।

मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज, 10000 मीटर में सिल्वर सहित कई सारे मेडल्स जीते हैं। और पता है इनकी परफॉर्मेंस में सबसे खास बात क्या है? इनकी कहानी खास इसलिए है क्योंकि इन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन को बीट किया है, हर बार ये खुद से ही जीते हैं। और देखिए, हर बार इनके कॉम्पिटिशन किसी देश के कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि खुद रहे हैं, और अपने आप से प्रदर्शन करते हुए आज ये इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। लवलीना बोरगोहेन को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर खुद को ही गोल्ड का तोहफा दे दिया। 2 अक्टूबर 2026 यानी कल के दिन इन्होंने अपने बर्थडे को एक यादगार जीत के साथ मनाया, और साथ ही विमेंस की 75 किलोग्राम की बॉक्सिंग फाइनल में चाइना की बाओ जियो को 5-0 से हराकर खुद को गोल्ड मेडल का गिफ्ट दिया। और इस जीत के साथ मैरी कॉम के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली ये भारत की दूसरी महिला बॉक्सर बन गई हैं। इससे पहले इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में क्वार्टर फाइनल से इन्हें बाहर होना पड़ा था, और कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में भी इन्हें सिल्वर मिला। अपने अनुभवों से सीखा इन्होंने, अपनी जीत को बदला इन्होंने, अपनी हार को जीत में बदला, और साथ ही अपनी इस जीत को इन्होंने गोल्ड में बदल दिया। एशियन गेम्स के मेडल में इन्हें गोल्ड मेडल मिला, और ये हमें सिखाता है कि हार आपकी कहानी का अंत हो ही नहीं सकती, बल्कि वो आपकी अगली जीत की शुरुआत होती है। और कभी कभी जब आप अपनी हार से सीखना शुरू कर देते हैं, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिस पर आप किसी समय पर आप खुद भी यकीन नहीं कर सकते थे। होता है ना कि जो सोचा नहीं है वो आपके साथ होने लगता है, और आपको लगने लगता है कि आप सफलता के बादलों में उड़ रहे हैं। मैं हूं ऋचा, आपके साथ 102.6 MHz पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुप्रभात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये है आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ ऋचा आपके साथ। और न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जो हमें बताती हैं कि हार मानना कोई एक ऑप्शन ही नहीं है, केवल जीतना है और आगे जाकर केवल अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना है। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोड़, ये इतिहास रचने वाली ये जो तिकड़ी है ना, इस भारतीय महिला की रिकर्व आखिरी टीम है और 2026 एशियन गेम्स में उन्होंने इतिहास रचा है।

अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा, कुबकु मोहर ने साउथ कोरिया की को हराकर महिला रिकर्व टीम इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स गोल्ड जीता था। इनकी कहानी अलग अलग है और इनकी हर एक की कहानी बताती है कि किस तरह खिलाड़ी ने शुरुआत की और कैसे वो उनकी मेहनत ने उन्हें इस बड़े मंच तक पहुंचाया है। और इससे हमें सीखने को ये भी मिलता है कि तीर चलाने से पहले हमें तय करना पड़ता है कि निशाना क्या है, और ज़िंदगी में भी अगर हम ये तय कर लें कि लक्ष्य क्या है तो हम अपनी जीत से कभी दूर नहीं हो सकते। ऐसी ही कहानी विदर्शा विनोद की भी है, जिन्होंने एनसीसी से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद वो एशियन गेम्स तक पहुंची। ट्रेनिंग के लिए ये केरला से दिल्ली आई, और जिसे हिंदी भी नहीं आती हो ज़रा सोचिए उसके लिए सर्वाइव करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन अपनी भाषा को इन्होंने कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझा और ट्रेनिंग की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपना सफ़र जारी रखा और छोटे छोटे मौके चुरा के ये आज यहाँ तक हैं कि कभी जो हमें सिखाती भी है कि ज़िंदगी में कोई मौका भले ही छोटा हो लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। वैसी ही कुछ कहानियाँ हम आज आपके लेकर आए हैं जो बताते हैं कि केवल ये जो मेहनत की कहानियाँ हैं ना, ये केवल फिक्शनल नहीं होती बल्कि हकीकत में अगर आप उनमें फॉलो करें तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं।

0: और अब आकाशवाणी रेनबो पर समय हुआ है प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण का।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध का 9वां अध्याय। आपने सुना परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न पूछ रहे थे सृष्टि तत्व के बारे में, और तब उन्होंने कथा सुनाई, यानी सुखदेव जी ने कथा सुनाई ब्रह्मा जी और नारद जी की, जहाँ नारद जी भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछ रहे थे और ब्रह्मा जी ने जब उत्तर दिए तो उन्होंने बताया कि किस तरह वो भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, यानी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उन्होंने अपने चारों तरफ जल ही जल देखा और फिर उन्होंने बहुत प्रयास किया ये जानने का कि क्या उनके अलावा भी वहाँ कोई है, और जब नहीं हो पाया, वो ढूंढ नहीं पाए, तब फिर उनको एक आवाज़ सुनाई दी। तब तब तब हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना लोक दिखाया, अपना रूप दिखाया, अपने पार्षदों का रूप दिखाया, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो आपने सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी बहुत ही भावुक हो गए। भगवान का सौंदर्य है ही इतना प्यारा कि उनको देख करके उनके भक्त भावुक हो ही जाते हैं, है ना? तो वो भी भावुक हो ही गए। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने जब भगवान के दर्शन किए तो भगवान ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, आपने निष्काम भाव से तपस्या की है, मेरा भजन किया है, और मैं आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आप मुझसे वर मांगिए, आप क्या चाहते हैं, वर मांगिए। तो भगवान ने कहा कि देखिए, आपने जो तपस्या की है उस तपस्या से ही आपने मुझे जाना है, है ना? भगवान 22वें और 23वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयम साक्षादात्माहम् तपसो अनघ। सृजामि तपसै वेदम्, ग्रसामि तपसा पुनः, विभर्मि तपसा विश्वम्, वीर्यम् मे दुश्चरम तपः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, आपने बहुत ही तपस्या की है मुझे पाने के लिए और मैं आपके निष्काम तपस्या से प्रसन्न हूं। और उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, इसीलिए मैंने आपको तपस्या करने की आज्ञा दी थी, क्योंकि हे निष्पाप, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या की आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसको धारण करता हूँ, पोषण करता हूँ, और फिर तपस्या से ही मैं इसे अपने में लीन कर देता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लंग शक्ति है। तो भगवान ने ये जो कहा कि मैं तपस्या को बहुत पसंद करता हूँ, तपस्या मेरी ही शक्ति है, और वो भी कैसी शक्ति? दुर्लंग शक्ति, दुर्लंग शक्ति। तो भगवान ने ये भी कहा कि तपस्या मेरा साक्षात हृदय है, मैं ही तपस्या का लक्ष्य हूं, तपस्या की आत्मा हूं, आश्रय हूं, लक्ष्य हूं। यानी तपस्या करके यदि कोई मुझे पाना चाहता है तो ही उसकी तपस्या सार्थक है, है ना? क्योंकि देखिए, जो जीवात्मा है वो ना जाने कब से विषय भोग में फंसे हुए हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि इस विषय भोग के दुष्चक्र से निकला कैसे जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर वो तपस्या करें, यानी भक्ति मार्ग का अवलंबन लें, और तपस्या का अर्थ है मेरी ही विद्या शक्ति की वृत्ति विशेष, यानी कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, जिस पर अनुग्रह करता हूं, वो व्यक्ति संसार के इस दुष्चक्र को समझने लगता है, वो समझ जाता है कि मैं अविद्या का शिकार हूं। तो ये जो तपस्या है
वो है साधन भक्ति। साधन भक्ति, अगर तपस्या किसी कामना की पूर्ति के लिए की जाए तो भगवान कहते हैं वो आत्मा रहित मृतक के जैसी होगी, यानी शव है मगर उसमें प्राण नहीं है तो वो शव ही है। और सृष्टि की वासना जो तुम्हारी थी हे ब्रह्मा, वो सृष्टि की वासना भी ऐसी ही थी जहां कामना थी, लेकिन तो भी वो मेरे द्वारा ही प्रेरित थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सृष्टि करो, इसलिए तुम्हारी जो तपस्या थी वो मेरे द्वारा अनुमोदित है, क्योंकि तुम्हारी वो तपस्या निष्काम तपस्या जैसी है। निष्काम, तो जो तपस्या है इसका अर्थ है कृष्ण के सुख के लिए विषय भोग का त्याग। भक्ति की अनुकूलता का विधान करना ही तपस्या है, वरना ये तपस्या बंधन का कारण हो जाती है ना? क्योंकि जो कृष्ण भक्ति विहीन है ऐसा व्यक्ति अगर तपस्या करे भी, चाहे वो ब्रह्मचारी भी हो, तो उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि गजेंद्र, वानर या गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी कि उन्होंने मुझे पाया। असुर तो तपस्या करते हैं, कितनी कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन वो वर क्या मांगते हैं? बड़े ही हास्यास्पद वर मांगते हैं, मेरी मृत्यु ना हो, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो वो तो अविद्या की वृत्ति के शिकार होते हैं, तो उस तपस्या से उन्हीं का विनाश हो जाता है। मेरी शरण लिए बगैर कोई मुझे नहीं पा सकता है, इसीलिए तपस्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है भगवान को पाने का, और सृष्टि के लिए भगवान की तपस्या जो ब्रह्मा जी ने की वो भगवान की ही इच्छा से की, इसलिए भगवान को उनकी वो तपस्या पसंद आई। बात बिल्कुल सही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कुछ किया जाता है भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं और वो साधन सार्थक हो जाता है। तो आपने सुना ही श्री वैकुंठ नाथ नारायण जब ब्रह्मा जी से मिले तो उन्होंने उनके मस्तक

पर अपना हस्तकमल अर्पण किया और अपनी कृपा शक्ति उनमें संचारित करके कहा। बड़े ही मधुर वाक्य में वेद गर्भ यानी जिनके गर्भ में अर्थात हृदय में वेदों का ज्ञान विराजमान है उन्हीं का नाम है वेद गर्भ। श्री भगवान का जो ये संबोधन था वेद गर्भ, इस संबोधन के साथ साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेद ज्ञान संचारित कर दिया। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मन, जो लोग किसी प्रकार की कामना अपने हृदय में रखकर मुझे पाने के लिए साधन करते हैं वे कहलाते हैं कूट योगी। उन्हें उनका काम्य फल तो मिल जाता है जो वो चाहते हैं, पर वो मुझे नहीं पा सकते हैं। पर हे ब्रह्मा, तुमने सारी कामनाएं त्याग करके मुझे पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या की, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और इसीलिए तुमने मुझे पाया भी है। तो हालांकि देखा जाए ब्रह्मा जी ने जब तपस्या आरंभ की थी तब उनके हृदय में सृष्टि शक्ति प्राप्त करने की कामना थी कि मैं सृष्टि कर पाऊं, इसकी शक्ति पानी है मुझे, इसीलिए मुझे भगवान को देखना है। तो भी भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, तुम निष्काम हो। इसका कारण यही कि तपस्या के आरंभ में ब्रह्मा जी की सृष्टि शक्ति प्राप्त करने की कामना थी, लेकिन श्री गोविंद चरण चिंतन के कारण उनकी वो कामना चली गई, है ना। कहा भी गया है, काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास होते होए अभिलाषे। जो कामनाओं की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण का भजन करते हैं उन्हें भजन का रस प्राप्त हो जाता है, कृष्ण रस प्राप्त हो जाता है और वो अपनी कामनाओं को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं हमें तो आप अपना दास बना लीजिए। ब्रह्मा जी की यही अवस्था हो गई थी, इसीलिए श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे निकट वर चाहो, वर मांग लो, मैं तुम्हारी सारी मनोवासना पूर्ण करूंगा। हालांकि मेरा दर्शन तुमने पाया है यही समस्त साधनाओं की सिद्धि है। तुमने जब मेरा ही दर्शन पा लिया तब अब तुम्हें किसी भी साधना के फल को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब किसी भी साधना का फल पाना शेष है नहीं, बाकी है नहीं। इसलिए मेरा दर्शन पाने की जो लालसा है वही असली पांडित्य का परिचय है। केवल मात्र कोई शास्त्र का अध्ययन करता रहे, श्लोकों को रटता रहे, यहां वहां श्लोकों को बोलता रहे, तो उससे किसी का पांडित्य प्राप्त नहीं होता है। भगवान के दर्शन पाने की अदम्य लालसा ही पांडित्य और विद्वता का परिचायक है। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि तुमने मेरे दर्शन को पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की है और ये तुम्हारे पूर्ण पांडित्य का परिचायक है। मैं तुम्हें दर्शन दूंगा ये मैंने सोचा ही था, इसीलिए मैंने आकाशवाणी से मंत्र प्रदान किया था तुम्हें और तपस्या का उपदेश दिया था। तपस्या मेरी ही अंतरंगा शक्ति है, सृष्टि स्थिति प्रलय तपस्या के प्रभाव से ही मैं करता हूं। मेरी कृपा से ही तुमने तपस्या की है और इसी से तुम्हें मैंने सृष्टि शक्ति प्रदान की है। श्रीमद् भागवतीय श्लोक से जाना जाता है, विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम एकया यात्यनावृत्ति मन्यार वर्तते पुनः। इस श्रीमद् भागवत के श्लोक से जाना जाता है कि जीव अविद्या वृत्ति में भोग और विद्या वृत्ति में तपस्या करने में प्रवृत्त होता है, यानी जब तक वो अविद्या का शिकार रहता है, जब तक शरीर को मैं मानता है तो ये तो बहुत बड़ी अविद्या है, शरीर ही मैं हूं और शरीर से संबंधित मेरे हैं, ये तो बहुत बड़ी अविद्या है। तो जब तक ऐसा होता है तब तक जीव भोग में लगा रहता है, वो भोग चाहता है, वो भगवान को भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का माध्यम समझ लेता है। वो जानता नहीं है भगवान क्या है, उनकी सेवा पाने का सुख क्या है, उनकी सेवा करने का सुख क्या है, क्योंकि ये तो विद्या वृत्ति से ही उत्पन्न होगी,
ये

0: आलसा तो विद्यावृत्ति से ही आएगी। तो जब विद्यावृत्ति यानी किसी के अंदर भगवत विद्या आ जाती है, आत्मविद्या आ जाती है, तो वो समझ जाता है कि मुझे भगवान को पाने की साधना करनी है। तो जो अविद्या वृत्ति के शिकार हैं ऐसे जीव और श्री गोविंद के चरण कमलों को भूल करके विषय भोग की लालसा से हमेशा जर्जरित होते रहते हैं और ना जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कितनी कितनी योनियां भोगते हैं जीव। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, साधु गुरु वैष्णवों की कृपा होती है, भगवान के भक्तों की कृपा होती है, तब किसी जीव में विद्यावृत्ति का विकास होता है। तब वो सब समझता है और तब उसकी भोग वासना चली जाती है और तब उसके अंदर प्रबल लालसा प्रकट होती है। और यही लालसा धन है। भगवान मिल जाए इससे बड़ा धन है भगवान के लिए उनकी सेवा के लिए लालसा की प्राप्ति हो जाए, प्रबल लालसा की, है ना। यानी उनके बिना रह नहीं सकते। तो श्री गोविंद चरण कमल को प्राप्त करने के लिए प्रबल लालसा की उत्पत्ति हो तो समझना होगा कि भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से विद्यावृत्ति का विकास हो गया। तो यदि कोई तपस्या करता है और तपस्या में वो चाहता है भोग, या वो चाहता है मोक्ष, या वो चाहता है सिद्धि, तब समझना होगा कि वो तपस्या नहीं है, वो तो अविद्या का जाल है, अविद्या से जड़ित तपस्या है। लेकिन यदि कोई भोग या सिद्धि की वासना से शून्य होकर केवल मात्र गोविंद के चरणारविंद की प्राप्ति की वासना को हृदय में लेकर तपस्या में प्रवृत्त हो सके, साधन भक्ति में प्रवृत्त हो सके, तो वो तपस्या उसे श्री गोविंद चरणारविंद के निकट उपस्थित करा देगी और तब वही तपस्या कहलाएगी विद्यावृत्ति। और ये जो विद्या है ये भगवान ही की अंतरंगा शक्ति है। इसीलिए श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, तपो में हृदयम साक्षादात्माहम तपसो अनघ। यानी धन आदि को पाने की आशा में कोई कल्प वृक्ष के निकट जाए और उससे धन ले ले और धन लेकर कल्प वृक्ष छोड़कर चला जाए, उससे अच्छा तो यह है कि कल्प वृक्ष के मूल में आश्रय ग्रहण करके बैठा जाए। क्योंकि जो कल्प वृक्ष तलवासी हैं ऐसे व्यक्तियों को कोई अभाव ही नहीं रहेगा। लेकिन जो धन लेकर के धनी वापस चला आया, कुछ दिन बाद उसका अभाव फिर से आ सकता है, फिर से धन की कमी हो सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने इस बार श्री गोविंद चरण रूपी कल्प वृक्ष के मूल का आश्रय ग्रहण कर लिया है और श्री गोविंद भी उनकी मनोवासना को पूर्ण करने के लिए उनसे कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, तुम मन चाहवर मुझसे मांगो। तो बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि मैं आपकी की गई तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूं और मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारी समस्त मनोवासनाओं को पूर्ण करना चाहूंगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो अवस्थितो गुहां वेद यह प्रतिरुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथ है ना।

प्रतिपादितम् परावरे यथारूपे जानियाम ते त्वरूपिणः। तो ब्रह्मा जी ने कुछ एक श्लोकों में अपने हृदय की बात कही है। ब्रह्मा जी ने कहा 24वें श्लोक में कि भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से ये तो जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। हे नाथ, आप कृपा करके मुझ याचक की ये मांग पूरी कर दीजिए। क्या मांग? मानो भगवान पूछ रहे हैं, बोलो ब्रह्मा जी, क्या मांगना चाहते हैं आप मुझसे? क्योंकि आपसे ज्यादा उत्कंठित मैं हूं। आप जैसे ही जो भी कुछ मांगेंगे मैं आपको देने के लिए कटिबद्ध हूं। तो क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपके चरणों में यही याचना कर रहा हूं, आप मेरी यही प्रार्थना पूरी करें कि मैं आपके प्राकृत रूप रहित, आपका पर यानी अप्राकृत और अवर यानी प्राकृत दोनों प्रकार के रूपों को जान सकूं। यानी विराट रूप जो कि प्राकृत रूप है, जिसको आचार्य लोग कहते हैं कि ब्रह्मांड में जहां भी हम जिस भी चीज को देखें उसे भगवान से जोड़कर देखें, इसलिए ऋषियों ने इस रूप की कल्पना की है, विराट रूप की। लेकिन जो भगवान आपका अप्राकृत रूप है, यानी जैसा कि हम आपको अभी देख रहे हैं, इस रूप को भी हम जानना चाहेंगे, तो आप हमारी यही प्रार्थना पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो समस्त प्राणियों के ही अध्यक्ष हैं, सबके हृदय कंदर में आप अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, इसलिए आप तो अपने ज्ञान के प्रभाव से, कैसा ज्ञान? अप्रतिहत, ये ज्ञान जो कि अखंड है, जो कभी भी टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, अखंड ज्ञान है। ऐसे ज्ञान के प्रभाव से आप तो मेरे ही क्या, सभी के अभीष्ट से अवगत हो ही सकते हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रभु मैं क्या चाहता हूं, अर्थात आप समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हैं, सबके हृदय कमल में वास करते हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। तो भी हे नाथ, देखिए बड़ा ही सुंदर श्लोक रहा ये 25वां श्लोक, जहां कहा तथापि नाथ मानस से नाथ नाथ ये नाथितम। आहा, ब्रह्मा जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो तो यूं भी ईश्वर के ही अवतार हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी दो प्रकार के होते हैं, जीव कोटि ब्रह्मा। और जब जीव कोटि ब्रह्मा नहीं हो सकते, यानी ऐसा जीव नहीं मिलता जो योग्य हो, तब भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये तो यूं भी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ही ज्यादा दीन हैं, इसलिए कह रहे हैं हे नाथ, यानी हे प्रतिपालक, नाथ मानस से नाथ इतम, नाथ है प्रभु, आप मेरी याचना पर ध्यान दीजिए और मेरी उस प्रार्थना को पूर्ण कीजिए। मेरी प्रार्थना यही है कि मैं आपके दोनों रूप को जान सकूं, दोनों रूप को, है ना। यानी प्रार्थनाकारी अर्थात मैं हे नाथ आपसे जो विनती कर रहा हूं आप उसे नाथ है अर्थात पूर्ण कीजिए, नाथितम अर्थात जो मैं चाह रहा हूं उसको पूर्ण कीजिए। यानी आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, क्या, कि मैं आपके अप्राकृत और प्राकृत रूप दोनों को ही जान सकूं। आप हैं अरूपी अरूपी, यानी आप हैं अप्राकृत रूप विशिष्ट, जगत के जीवों के समान, जगत के मनुष्यों के समान आपका रूप नहीं है। हालांकि जब आप अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं तो आप चतुर्बाहु होते हैं। महाप्रभु ने कहा है कि नर वपु तहार स्वरूप, भगवान का जो स्वरूप है वो नर वपु की तरह है, पर वो नर नहीं हो गए। हमारा शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु

आकाश आदि से बना है, लेकिन भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन विग्रह दिव्य है, चिन्मय है। चिन्मय तो ऐसा अप्राकृत रूप इसका तत्व मैं जान सकूं, और जो आपने प्राकृत रूप अपना लिया हुआ है यानी विराट रूप जो आपका है उसको भी समझ पाऊं। तो प्रभु इन दोनों रूपों को मैं समझ पाऊं, ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए। और भगवान भानु पूछ रहे हैं, और बताइए सिर्फ इतना ही क्या? तो कह रहे हैं कि प्रभु आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। ये आप कैसे करते हैं, बस इस मर्म को समझा दीजिए, ऐसा ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। तो ज्ञान मांग रहे हैं, जानना चाहते हैं भगवान को, भगवान की माया को, भगवान के स्वरूप को, भगवान की अंतरंगा शक्ति को, भगवान की माया शक्ति को जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के प्रश्न बड़े उत्तम हैं, ये जानने की लालसा बड़ी उत्तम है, क्योंकि भगवान की भी इच्छा है कि ब्रह्मा जी ऐसे प्रश्न पूछें, क्योंकि ब्रह्मा जी ही वो पहले जन हैं जो प्रकट हुए हैं भगवान की ही नाभि से, तो उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इतने गहरे प्रश्न पूछ सकते हैं और गूढ़ उत्तर के मर्म को भी समझ सकते हैं और शास्त्रों को भी धारण कर सकते हैं, समस्त ज्ञान को धारण कर सकते हैं। इसलिए भगवान ही की इच्छा है कि वो इस प्रकार के प्रश्न करें। तो ये प्रश्न साधारण तो है नहीं, प्रश्न तो असाधारण ही है, क्योंकि प्रश्न ये कि आप अपने प्राकृत और अप्राकृत रूप को बताइए। तो कहीं से भी ब्रह्मा जी ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने साकार और निराकार रूप को बताइए, क्योंकि याद रखिए ब्रह्मा जी भगवान के सामने हैं, ठाकुर जी उनके सामने ही खड़े हैं। हमने वर्णन किया था कि ठाकुर जी बड़े ही सुंदर हैं, सुंदर मुकुट धारण किया हुआ है, कौस्तुभ मणि धारण की हुई है, उन्होंने कंगन धारण किए हैं, चरणों में नूपुर है और किंकिणी धारण की है कटी पर, सुंदर पीताम्बर है, सुंदर नयन है, मुस्कुरा रहे हैं, तो बिल्कुल साकार रूप ही देख रहे हैं। साकार से कभी ये नहीं पूछा जा सकता कि प्रभु आप निराकार रूप का वर्णन कीजिए। ठाकुर जी भी कहेंगे जब आप मुझे देख रहे हैं कि मैं साकार ही हूँ। और ये भी मैं बता चुका हूँ गीता में कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा, कि ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ, मेरे अंग की प्रभा ही ब्रह्म है। तो फिर आप निराकार रूप के बारे में क्या पूछ रहे हैं? इसीलिए उन्होंने निराकार रूप के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने पूछा प्राकृत और अप्राकृत रूप बताइए। प्राकृत यानी जो इस ब्रह्मांड में है विराट पुरुष के रूप में, और अप्राकृत यानी आपका लीलामय रूप, लीलामय रूप जो आपका अपने धाम में रहता है, अपने परिकरों के साथ लीलाहित रहता है, और उस लीलामय रूप को आप भगवान प्रकट भी करते हैं धराधाम पर। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं, आने वाले कार्यक्रमों में हम भी जानेंगे कि भगवान ने क्या उत्तर दिया और इन प्रश्नों का मर्म क्या है। तो इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार, मेरा नमस्कार।

की तरंगों से हिलती हुई कमल नाल की बाल लता की भांति सुंदर भुजाओं वाली हे नृत्यशील चंचल लता के अग्र भाग की नीलिमा की भांति नील नयनों से दृष्टिपात करने वाली हे मिलते जुलते और प्रेमाकृष्ट अति मनोहर मोहित मनमोहन की आश्रिते श्री राधिके, आप कब मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगी।

ये स्वर्ण मालाओं से युक्त त्रिरेखा से सुशोभित कंबु अर्थात शंख जैसे कंठ वाली, हे मंगल गुण वाले त्रिवली सूत्र तथा त्रिरत्न अर्थात हीरा मोती और माणिक्य जैसे मणित्रय की मालाओं की दीप्ति से दीप्तवती, हे दोलायमान नील कुंतल में प्रसूनों के गुथे हुए गुच्छों को धारण करने वाली श्री राधिके, आप कब मुझे अपनी कृपा कटाक्ष का पात्र बनाएंगे?

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 7 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मछार की बहादुरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, वैश्विक बागवानी केंद्र से रायल सीमा के किसानों को फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा कि वह जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। G7 देशों ने तेल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। G7 और सहयोगी देश अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करेंगे। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से ज्यादा स्कूलों को बाधित कर दिया और इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और एशियाई खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा है। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

सैटरडे की एक फ्रेश ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और अगर आपकी सुबह मेरी आवाज के साथ शुरू हो गई है तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपकी दोस्त आशा खुशी, और आज के एक घंटे हम बात करेंगे 3 अक्टूबर को हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज किसका बर्थडे है, कौन इंस्पायरिंग इंडियंस हैं जिन्हें हम याद करते हैं, और हाँ एंड में स्पोर्ट्स का फुल डोज तो बनता ही है भाई, एशियन गेम्स चल रहे हैं। तो चाहे आप मॉर्निंग वॉक पर निकले हो, कानों में ईयरफोन्स लगे हो, किचन में ब्रेकफास्ट बन रहा है, या अभी अभी बेड से निकले हैं, गुड मॉर्निंग, लेट्स बिगिन।

दिस इज मोहित चौहान फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी। ये ट्रैक आप सुन रहे थे रेनबो स्टेशन 102.6 पर और टाइम बस 2 o'clock हो चुका है 11 minutes past 7। और सबसे पहले आपको ले चलती हूँ हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे यानी कि हिस्ट्री की तरफ। 3 October 1992 इंडियन बिलियर्ड्स के लिए ना एक बहुत ही स्पेशल डे था। गीत सेठी, यस गीत सेठी ने वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप जीता था और अचीवमेंट के लिए सिर्फ अचीवमेंट सिर्फ एक टाइटल तक नहीं रुकी थी। उन्होंने ना 3-pot rule के अंदर 1286 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक बनाया था। इमेजिन कीजिए एक इंडियन प्लेयर वर्ल्ड स्टेज पर और एक ऐसा रिकॉर्ड जो उस वक्त हिस्ट्री बना दे। आंसू आ जाते हैं उन लोगों के अगर इंडियन हो आप और आप स्टेडियम में बैठे हो और कोई इंडियन है जो हिस्ट्री बना दे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। हम तो टीवी में देख के रो पड़ते हैं और भारत माता की जय बोल देते हैं। कभी कभी हिस्ट्री की किताबों में ना सिर्फ बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं होते, कभी एक नंबर भी हिस्ट्री बना देता है। 1276 यानी कि 1276 दैट वॉज गीत सेठी ऑन 3 October 1992।

0: स्पोर्ट्स की हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, अब एक और हिस्टोरिकल कनेक्शन आपको देती हूँ, थोड़ा कल्चर की तरफ चलते हैं। 3 अक्टूबर 1880 को पुणे में मराठी म्यूजिकल प्ले संगीत शकुंतल का डेब्यू हुआ था। इंडियन थिएटर और म्यूजिक की जर्नी में इनका अपना इम्पॉर्टेंट प्लेस है। और मुझे ना पर्सनली ऐसे फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री को अक्सर सिर्फ बैटल्स और डेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, उनकी लड़ाई उस सन में उनके साथ हुई थी, वो जीते थे वो हारे थे, अरे हो गया। अब हिस्ट्री हमें इंटरेस्टिंग लगती है जब हम अपने इंडियंस के बारे में बातें करें, जिन्होंने हमें प्राउड फील कराया था, जिन्होंने भारत देश को प्राउड फील कराया था पूरे वर्ल्ड के सामने। तो अभी जैसे गीत सेठी की बात हुई, संगीत शकुंतल जी की बात हुई है, तो हिस्ट्री में म्यूजिक भी है, थिएटर भी है, आर्ट भी है, स्पोर्ट्स भी है और आर्टिस्ट्स की कहानियां भी हैं। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलते हुए आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान दिल

स्टूडियो के घड़े में समय हो रहा है 7:23 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपकी आरजे खुशी के साथ। और अक्टूबर का महीना चल रहा है तो कुछ सप्ताह चल रहे हैं, दो सप्ताह चल रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक एक दो सप्ताह मनाया जाता है एंटी अनटचेबिलिटी वीक, यानी कि अस्पर्श्यता विरोधी सप्ताह। समाज में जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो ये चीज़, इसका जो आचरण है, मतलब जो छुआछूत का अंत किया गया है और किसी रूप में इसका आचरण करना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। साथ ही 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है, जब भारत में केंद्र और राज्य सरकारों, पर्यावरणविदों, कार्यकर्ताओं

शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए यह सप्ताह मनाया जाता है। भारत में 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया और जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई, जिसको हम कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन, उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा करुणामयी बनिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई बाहर जाके जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके प्रति करुणामयी रहिए। हाँ, उनको मारना ठीक नहीं है और दूरी बनाए रखना ही ठीक है, भाई वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। लेकिन अगर मैं वनों की बात करूँ तो पेड़ पौधे लगाना, घर के आसपास अपने एयर को प्यूरिफाई करने के लिए स्नेक प्लांट है, एलोवेरा प्लांट है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लिए ना आपको किसी एयर प्यूरिफायर की ज़रूरत ही नहीं होती है, ना नेचुरली ही हवा में प्रदूषण को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। अपने कमरे में आप ला के रखिए एक स्नेक प्लांट, एक एलोवेरा प्लांट, और इसकी तो कई लोग बताते हैं कि डायरेक्शन जैसे होती है साउथ डायरेक्शन में आप कुछ ये प्लांट रख सकते हैं। इसके बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए, खुद को जागरूक करिए, दूसरों को जागरूक करिए, और अपने कमरे में ही एटलीस्ट आप हवा को प्योरीफाई भी करें और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहें और ग्रीनरी भी बढ़ाते रहें। तो थोड़े से करुणामयी बनिए और पेड़ पौधे लगाना शुरू कीजिए। वेट मत कीजिए, नहीं बर्थडे में मैं एक पौधा लगाऊंगा, नहीं मेरी एनिवर्सरी आएगी तो, कम ऑन, हर हफ्ते एक पेड़ लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, वो बड़ा होता रहेगा, आपको भी देखकर सुकून मिलेगा। ऐसे ही अपने देश को संवारते रहिए, अपने घर को संवारते रहिए।

0: हमारे स्टूडियो का माहौल सवार रही थी मोनाली ठाकुर और ये गाना चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर। बर्थडे कॉर्नर की तरफ आप सभी को लेके चलती हूँ और आज है एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म मेकर का बर्थडे जो कि है जेपी दत्ता, बॉर्न ऑन 3rd of October 1949। बॉर्डर फ्यूजी जैसी फिल्म्स के डायरेक्टर जेपी दत्ता जी को हिंदी सिनेमा में वॉर थीम्ड फिल्म्स के लिए पर्टिकुलरली जाना जाता है। और एक और फेमिलियर फेस सत्यराज जो कि साउथ इंडियन सिनेमा के वेटरन एक्टर्स में से जिन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, आज वो 72 साल के हो रहे हैं। साथ ही इंडियन कंपोजर और सिंगर हैं शारथ, आज वो अपना बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक ही डेट पर सिनेमा भी है, म्यूजिक भी है, आपके स्टार्स भी हैं। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट डेट्स इन हिस्ट्री, हर डेट की अपनी एक कहानी होती है। और हमारे इस प्रोग्राम की कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: और अब एक ऐसा नाम जिन्हें आज याद करना जरूरी है, कादम्बिनी गांगुली जी। 3 अक्टूबर 1923 को उनका देहांत हो गया था। कादम्बिनी गांगुली इंडियन मेडिकल हिस्ट्री की पायोनियरिंग वुमेन में से एक थी और अर्ली इंडियन वुमेन फिजिशियन में उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जहां पर वुमेन के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल डोर्स ओपन नहीं हुआ करते थे, किसी वुमन ने मेडिसिन जैसी फील्ड में आगे बढ़ना सोचा और उसको पाया भी। आज हम उन्हें सिर्फ एक नाम के रूप में नहीं, एक पायोनियर के रूप में याद करते हैं। रिस्पेक्टफुल रिमेम्बरेंस टू कादम्बिनी गांगुली जी। चलो वैसे दिली, सैटरडे मॉर्निंग का एक सवाल है आप सभी से कि आपकी परफेक्ट सैटरडे मॉर्निंग क्या है? लेट उठना या चाय और न्यूज़पेपर के साथ बैठे रहना घंटों घंटों तक, मॉर्निंग वॉक पर निकल जाना या फिर फैमिली के साथ एक साथ तसल्ली से ब्रेकफास्ट करना? मेरी तरफ से तो सैटरडे मॉर्निंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, गुड म्यूजिक, डिटॉक्स वाटर और जीरो रश। आपका क्या फॉर्मूला है सोचिए और तब तक सुनते रहिए रेनबो स्टेशन। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से ब्रेक के बाद।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जो भी हुआ है वो तुमसे नहीं होता, वो खुद से होता है, अपनी मेहनत से होता है। टाइम है स्पोर्ट्स अपडेट का और आज नेचुरली सबसे बड़ा नाम है एशियन गेम्स 2026 का। कल इंडिया के लिए मेडल के मामले में ना एक फैंटास्टिक डे था। बॉक्सिंग से अगर मैं शुरुआत करूँ तो बॉक्सिंग रिंग में प्रवीण हुड्डा ने विमेंस 65 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम जीता और इस विक्ट्री के साथ प्रवीण एशियन गेम्स बॉक्सिंग गोल्ड जीतने वाली सिर्फ तीसरी इंडियन वुमेन बनी है मैरी कॉम और लवलीना के बाद। लवलीना की बात करें तो उन्होंने भी कल विमेंस 75 kg कैटेगरी में गोल्ड जीता है। मेंस में अंकुश फांगल ने 80 kg में गोल्ड अपने नाम किया है। सो बॉक्सिंग रिंग में ना कल इंडिया का डे था गोल्डन। रेसलिंग में भी एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। सुजीत कलकल ने 65 kg कैटेगरी में फाइनल में गोल्ड जीता है और उनका कमबैक, ओ मैन वाओ। अगर आपने वो मैच नहीं देखा, पता है क्या स्कोर था? 2-9। सुजीत थे 2 पर सिर्फ 2 पे और उनका जो कॉम्पिटिटर था वो था 9 points पे, लेकिन फिर 8 straight points स्कोर, 2 से कैसे 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ओ मैन, अगर आपने वो मैच नहीं देखा था ना तो भाई आज तो रिपीट देखना बनता है, ढूंढ ढूंढ के देखना बनता है सुजीत कलकल का ये मैच। और इतना प्राउड फील हुआ, हमें तो लगा भाई 2-9 हो गए, कहाँ जीतेगा ये अब, लेकिन वो जो 2 से 10 की जर्नी उन्होंने जो स्ट्रेट पॉइंट्स लिए, वंडरफुल मैच। जब भी स्कोरबोर्ड कहता है ना कि आप पीछे हैं तब भी मैच खत्म नहीं हुआ।

होता। अगर दो पे ही अगर दिमाग से बंदा हार जाए ना तो उसे कोई नहीं जीता सकता, लेकिन अगर दिमाग में है ना कि नहीं मुझे जीतना है तो दो क्या शून्य से भी बंदा आके लीड ले जाता है। आर्चरी की बात करूँ तो आर्चरी में भी हिस्ट्री बनी है। इंडिया की वुमेन रिकर्व टीम अंकिता भागत, कुमकुम मोहोड़ और कृति शर्मा ने साउथ कोरिया को 5-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। वुमेन्स रिकर्व टीम में इंडिया का फर्स्ट एशियन गेम्स गोल्ड आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑल आर धनुर्धरी टीम। और भी मैं आपको बताती हूँ लेकिन बहुत सारी इकट्ठी स्पोर्ट्स अपडेट नहीं, इस गाने के बाद और स्पोर्ट्स अपडेट बताती हूँ। मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं, बता दी हो गाने के बाद बताती हूँ।

खबरी तो देने आई हूँ मैं आपको, आरजे खुशी है आपके साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली प्रोग्राम में, और आप सुन रहे हैं ये 102.6 पर। मुझे पता है आप क्या सुनना चाह रहे थे, स्पोर्ट्स की इतनी सारी अपडेट हो गई और भाई हॉकी का नाम नहीं आया, तो लो जी हॉकी का नाम भी ले लेते हैं। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने चाइना को 1-0 से हरा कर गोल्ड मेडल जीत लिया कल, और मैच का ओनली गोल हुआ था 10th मिनट में, और ये स्कोर किया था लाल रेम सियामी ने। और इंडिया ने एशियन गेम्स वुमेन हॉकी में ये जो गोल्ड लिया ना, वो एक बहुत बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये टाइटल अपने नाम किया है। व्हाट अ डे फॉर इंडियन वुमेन इन स्पोर्ट्स। और जब गोल्ड मेडल सबको पहना के वो एक सॉफ्ट टॉय सा देते हैं ना, वो तो मेरे को बहुत ही क्यूट लगता है। ऐसा लगता है सारे प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स के फेस पे तो इससे ज्यादा बड़ी स्माइल आ गई है। एंड द बिग वन, आज स्पोर्ट्स कैलेंडर में एक और बिग डेट है, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशियन गेम्स मेन्स T20 क्रिकेट का गोल्ड मैच है। 10 बजे है भाई, अभी टाइमर लगा लो, अलार्म लगा लो। इंडिया ने सेमीफाइनल्स में श्रीलंका को डिफीट करके फाइनल में एंट्री ली, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में स्पॉट अपना सिक्योर किया, और अब गोल्ड मेडल के लिए इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। आप क्रिकेट फैन हैं तो 10 बजे का अलार्म लगा लीजिए, और अगर आपके घर में क्रिकेट को लेकर ऑलरेडी डिस्कशन शुरू हो गया है तो दिल्ली प्लीज मुझे मत ब्लेम करना, मैच तो 10 बजे है, गुड मॉर्निंग दिल्ली के बाद शुरू होगा। और क्रिकेट के बाद हॉकी फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है, इंडियन मेंस हॉकी टीम का गोल्ड मेडल फाइनल मलेशिया के अगेंस्ट है, और ये है 2:30 PM। तो सैटरडे का स्पोर्ट्स कैलेंडर काफी पैक्ड है, मॉर्निंग में क्रिकेट, आफ्टरनून में हॉकी, और बीच में अपना रेनबो स्टेशन। वीकेंड एंजॉय तो चल ही रहा है आप सभी का।

श्रेया घोषाल की आवाज में दिस ट्रैक वाज फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर। और अब वक्त हो गया है आज के गुड मॉर्निंग दिल्ली को रैप अप करने का। आज एक छोटी सी बात साथ ले जाएं, कभी स्कोरबोर्ड देख कर ना गिव अप मत कीजिएगा। सुजीत कल 2-9 से पीछे थे और मैच 10-9 पर खत्म हुआ। लाइफ में भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, गेम चल रहा है तो होप भी चल रही है। हैव अ ब्यूटीफुल सैटरडे दिल्ली, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, 10 बजे क्रिकेट देखने वाले हैं तो ब्रेकफास्ट पहले से ही बना लेना, नहीं तो चिक चिक शुरू हो जाएगी। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी, खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन। मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10, दिल के तराने गाने नए पुराने में आप इंजॉय करेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर कंटिन्यू रिचा के साथ।

AIR FM रेनबो पर समय हुआ है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की बहादुरी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी क्षेत्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है और कहा कि वैश्विक बागवानी केंद्र के रायल सीमा के किसानों का फायदा होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वे जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की चर्चा की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। G7 देशों ने तेल और डीजल की बड़ी कीमतों को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। G7 और सहयोगी देश अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल बाजार में तेल जारी करेंगे। पाकिस्तान सरकार और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेताओं के बीच आज फिर बातचीत होगी। वे कल भी मिले थे और इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च से पहले अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आज फिर से मिलने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस में कल शिक्षा के स्तर को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों ने 700 से अधिक स्कूलों को बाधित कर दिया है। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई है। एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुड्डा, लवलीन बोर गोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में भारत 17 स्वर्ण सहित 77 पदों के साथ अंक पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के इस भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं ऋचा। बने रहिए ऋचा के साथ 102.6 MHz पर।

प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। और मौसम का हाल तो भाई क्या कहें, अभी कुछ दिन पहले जिन लोगों ने सोचा कि ये सर्दी की शुरुआत है और अपने स्वेटर कंबल निकाल लिए थे, आपको बता दूं कि आपको वो एक बार फिर से रैप करके अंदर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी फिर से लौट कर आएगी एक बार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि कल जो है वो टेम्परेचर 36 डिग्री पहुंच गया था और पिछले साल अक्टूबर

अक्टूबर में एक भी दिन तापमान इस स्तर पर नहीं पहुंचा था। तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों तक गर्मी का असर बना रहेगा। अगले हफ्ते की शुरुआत अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की कमी आएगी, लेकिन शुक्रवार सुबह से ही क्योंकि तेज धूप रही और दिन चढ़ने के साथ धूप की चुभन बढ़ती गई और तापमान 36 डिग्री पहुंच गया, और इस वजह से आगे आने वाले दिनों में भी आपको गर्मी महसूस होने वाली है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि जो आने वाले कुछ बारिश के दिन थे, कुछ मीठी मीठी से सर्दियां आ गई थी, ये सर्दी की शुरुआत दोस्तों नहीं थी, बल्कि ये केवल एक सुकून था आपके लिए, कुछ दिनों के लिए आपको आराम करवाने की ईश्वर की एक साजिश थी शायद। कितनी खूबसूरत सी बात है ना कि मौसम जैसे बदलता है अपने रंग, वैसे ही हवाएं भी बदलने लगती हैं। और दिल्ली की हवाएं के लिए अभी कोई खास खुशखबरी नहीं है, क्योंकि सर्दियां शुरू ही होने वाली हैं, अभी कुछ समय बाकी है नवंबर आने में, और अभी से हवा की जो हालत है वो ख़राब होती जा रही है। और ऐसे में आप और हम भी एक सहयोग दे सकते हैं, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम समय समय पर अपने वाहनों का जो पोल्यूशन है वो चेक करवा के रखें। कोशिश करें कि कम से कम आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन कोई ना हो दिल्ली की पोल्यूटेड हवा में। तो AQI की वजह से एक बार फिर से दिल्ली NCR की हवा बिगड़ने लगी है, और पोल्यूशन की वजह से कई जगह बहुत ही सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। लेकिन आप और हम भी एक मिलकर अगर एक प्रयास करें और कोशिश करें कि हमारी हवा जो है वो सुरक्षित रहे, ताकि हम एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें, ताकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि ये हवा केवल हमें ज़िंदगी नहीं देती, केवल हमें सांस नहीं देती, बल्कि प्यार की दास्तां भी सुनाती है। नहीं यकीन होता आपको, अब देखिए इस गाने को सुनिए कि न केवल प्यार की दास्तां ये सुना रही है, बल्कि न जाने क्या क्या हवाएं बातें करती हैं ये भी बता रही है। ऋचा के साथ हैं आप, प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR 102.6 MHz पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।

0: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
1: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
0: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

जी हाँ, यह है आकाशवाणी रेनबो और इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट डोज आपको मिलता है बिल्कुल यहीं पर। और इस कार्यक्रम को आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर तो सुन ही रहे हैं, इसके अलावा आप चाहें तो न्यूज़ ऑन एयर की जो मोबाइल ऐप है ना, वो अब तक डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आप कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। तो फोन में रेडियो नहीं है इसलिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर मिस कर दिया, इसलिए इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, इसलिए ट्रैफिक अपडेट मिस हो गया, इसलिए मौसम का हाल नहीं पता लगा, इसलिए हम नहीं जान पाए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। ये सब बहाने नहीं चलने वाले हैं। न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर सर्च कर सकते हैं आप हमारे आकाशवाणी के लगभग सभी चैनल्स को, और साथ ही एफएम रेनबो दिल्ली के कार्यक्रमों को आप बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। तो अब जो अगली खबर आपके लेकर आई हूं ना, वो सुनने के बाद आपका आज का दिन ना बन जाने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कुछ के 13 नंबर अनलकी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 13 डेट को कुछ भी नहीं करना चाहिए, और कई सारे ऐसे ही सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट में भी आपने सुना होगा कि 13 डेट इज समथिंग विच इज

कलकल ने रेसलिंग में जीता 4th गोल्ड और 5वां गोल्ड आया 80 kg मेंस कैटेगरी के बॉक्सर अंकुश पंघाल की तरफ से। 6th गोल्ड की अगर करें बात तो विमेंस हॉकी में भारत ने चीन को हराकर दिन का 6th गोल्ड जीत लिया। 2013 जो डे है एशियन गेम्स का, वो इंडिया के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ और यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 6 गोल्ड इंडिया की झोली में आ गिरे। तो ऐसा जो ये शुक्रवार है एशियन गेम्स में, ये ऐसा बहुत दिन बाद आया है, लगभग 44 साल बाद भारत विमेंस टीम्स ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही भारत पदक तालिका में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। तो भारत के लिए ये एक ऐसी खुशी है, एक ऐसी कामयाबी है ना, जिसे हम सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए और साथ ही चीयर करना चाहिए अपने उन सभी के सभी खिलाड़ियों को जो इस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एशियन गेम्स में। मैं हूं ऋचा आपके साथ, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप।

जी हाँ, हमारे खिलाड़ी तो कर ही रहे हैं और आप भी कर सकते हैं। केवल उनके लिए प्रे कर उनका हौसला बढ़ाकर, उन्हें प्यार दिखाकर कि वो ढेर सारे हमारे लिए मेडल्स जीतें और भारत का नाम विश्व पटल पर एक बार फिर से छा जाए। मैं उरिचा आपके साथ, प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और कोशिश रहती है कि आप तक सभी जानकारी बिल्कुल सटीक पहुँच सके। और मेट्रो के बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन है, जैसे दिल्ली की लाइफ लाइन कहा जाता है, तो अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं और कल आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई, तो आज ऐसी सूचना है कि अभी तक मेट्रो के सभी गेट खोल दिए गए हैं और आप एंट्री एग्जिट बड़े ही आराम से कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है दिल्ली शहर के बारे में या आपके शहर के मौसम के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है कि आप व्हाट्सएप पर जाइए, 9868107070 इस नंबर को सेव कर लीजिए और उसके बाद आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो बताइए, क्योंकि देखिए अगर आप भी शेयर करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, मालूम पड़ेगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। वैसे एक खबर तो मेरे पास भी है आपके लिए, जो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और इस इवेंट को कामयाब बनाएं, क्योंकि जो ये मेरे पसंदीदा कवि का एक इवेंट है और यहाँ जाकर आपको हिंदी गीतों का हिंदी दिवस मनाया जाएगा और कारवां गीतों का, नीरज कार्यक्रम का नाम है। स्वर्गीय पद्मभूषण गोपाल दास नीरज जी की स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि हैं श्री माननीय SP सिंह बघेल जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से इस कार्यक्रम का जो इवेंट का इस कार्यक्रम का जो टाइमिंग्स है वो आपको बता देती हूँ कि आज ही संडे को शाम को 4 बजे आप जा सकते हैं। आपको पहुँचना कहाँ पर है, आपको पहुँचना है मावलांकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। शाम को आप पहुंच सकते हैं 6:45 पर, बिल्कुल सही समय पर पहुंच जाइएगा। कोशिश कीजिएगा 10 या 15 मिनट आप पहले ही पहुंचे ताकि आप आराम से अपनी सीट ले सकें। और इस कार्यक्रम को महाकवि गोपाल दास नीरज ट्रस्ट और फाउंडेशन ट्रस्ट आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में आपको हिंदी दिवस मनाया जाएगा, साथ ही आपको गीतों का कारवां सुनाया जाएगा। तो बहुत सारी उनकी लिखी हुई गज़लें, उनकी कविताएं, उनकी लिखी हुई कविताएं, उनके लिखे हुए कुछ ऐसी कृतियां आपको सुनने को मिलेंगी जो बहुत ही खास हैं, जो बहुत ही विशेष हैं। तो कल का दिन अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 4 अक्टूबर की तारीख आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखे, तो कल ये इस इवेंट को नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी दिवस कारवां गीतों का ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि मावलांकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है ये कार्यक्रम कल शाम 4 बजे। 6:45 पर इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी, लगभग 9 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इतना टाइम निकाल कर अपने लिए आएं और इसके अलावा जल्दी पहुंचें 10 या 15 मिनट, ताकि आप आराम से एंट्री ले सकें। तो इस कार्यक्रम में पहुंचें और साथ ही इंजॉय कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की का लिखी हुई कुछ कृतियाँ सुनते हैं, कुछ ऐसी रचनाएँ सुनते हैं, तो केवल आप साहित्य का आनंद नहीं ले रहे होते हैं, केवल आप कुछ कविताएं नहीं सुन रहे होते हैं, बल्कि आप जीवन के कुछ अनुभवों को सुन रहे होते हैं, आप कुछ ऐसी बातें सुन रहे होते हैं जो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होती है। और देखिए, एक के बाद एक बहुत ही काम की खबरें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। आप भी जाएं तो मुझ तक ट्रैफिक अपडेट पहुँचा सकते हैं 9868107070 पर।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ ऋचा। आपके साथ प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और कोशिश रहती है कि आप तक सटीक जानकारी पहुँचे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज मिलता है इसी कार्यक्रम में। तो एक ऐसी सूचना आपके लेकर आई हूँ जो शायद आपकी बहुत काम की है, और आज बात हम करने वाले हैं उन हाथों की जो सिर्फ काम नहीं करते बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी परंपराओं को आकार देते हैं। कभी लकड़ी को खूबसूरत फर्नीचर में बदलने वाले जो बड़े ही हैं, या लोहे को औजार का रूप देने वाले जो लोहार भाई हैं हमारे, कभी कभी मिट्टी से खूबसूरत बर्तन बनाने वाले कुम्हार हों, या कपड़े, आभूषण, जूतों से अपना हुनर का नया रूप देने वाले कारीगर। इन्हीं पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों के हुनर को मजबूत करने के लिए एक ऐसी योजना शुरू की गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो आखिर क्या है ये योजना? इस योजना का जो उद्देश्य है वो है पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों को उनके काम के लिए पहचान देना, प्रशिक्षण देना और आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, ताकि उनका हुनर और उनका व्यवसाय दोनों आगे बढ़ सकें। अब इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों को शामिल किया गया है, जिसमें बढ़ई, सोनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, मोची, नाई, धोबी, दर्जी जैसे कई पारंपरिक पेशे शामिल किए गए हैं। योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा। अब इससे उन्हें फायदा क्या होगा? इसके साथ ही कारीगरों को उनके कौशल को बेहतर बनाने के लिए बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग लेने का भी अवसर मिलेगा। साथ ही जब प्रशिक्षण खत्म हो जाएगा तब इन्हें सहायता राशि भी दी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्त, क्योंकि इसके बाद आपको मिलता है आगे जाकर रियायती ब्याज दर पर कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा। जी हाँ, काम को आगे बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को ये कोलेट्रल फ्री लोन भी दिया जाता है। इसके साथ ही आधुनिक औजार खरीदने के लिए टूल किट इंसेंटिव्स और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। यानी मकसद साफ है, हुनर को पहचान मिले, हुनर को सम्मान मिले, हुनर से रोजगार और आमदनी के नए अवसर भी बने। तो अगर आप या आपका परिवार में से कोई भी पारंपरिक कारीगर है, शिल्पकार है, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी को जरूर प्राप्त करें। योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों के लिए आप क्या कर सकते हैं? सरकार के आधिकारिक पोर्टल या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। याद रखिए कि हाथों का हुनर केवल पेशा नहीं है बल्कि हमारी विरासत है, और उसे भी सम्मान और सही अवसर की जरूरत है। तो जरूरी है कि आप भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे ज़रूरी है ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ये काम की बात है तो ज़रूर आप हमसे शेयर कर सकते हैं और भी ऐसी काम की जानकारी 9868107070 पर।

कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।

ये है आकाशवाणी रेनबो, कार्यक्रम का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ ऋचा आपके साथ, और एक ऐसी खबर आपको सुनाने जा रही हूँ कि जो आपको बहुत ही एक्साइट करेगी। अगर आप भी मेरी तरह रेलवे जर्नी के बहुत ही शौकीन हैं, तो आपको जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और बनिहाल रेलखंड पे ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए। वैसे आपको बता दूँ क्यों, क्योंकि ये एक बहुत ही ऊँचे से ब्रिज पर चलती है, और साथ ही पहले इसकी जो रफ्तार थी ना, वो केवल 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अनुमति दे दी गई है। साथ ही 111 किलोमीटर का जो लंबा यह रेलखंड है ना, इसका शुक्रवार को परीक्षण किया गया, और रेल मंत्री जी ने ये भी बताया है कि ये जो है ना, ये अब दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर ये ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलने वाली है। ट्रेन भारत के पहले केबल स्टेंट एनजी पुल को पार करती हुई ये ट्रेन दिखाई देगी। साथ ही रेलवे के अनुसार ये जो गति है, इस गति के बढ़ जाने से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल संपर्क परियोजना के तहत रेल परिचालन और भी सुगम होगा, यात्रा का समय भी कम लगेगा, यात्री तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल यात्रा कर सकेंगे। तो ये जो भी एक्सपीरियंस करेगा उसके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस होगा मुझे लगता है। और जो ये दिन रेल संपर्क के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा, तो ये एक ऐसा मोमेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ट्रेन ट्रैवल करना बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि पम्बन पुल की यात्रा के बाद ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना, जिसे लोग ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो अगर आप भी अपनी ट्रेन जर्नी के लिए एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा उपाय हो सकता है। क्या कहते हैं आप, है ना? तो मैं हूँ ऋचा आपके साथ, और ऐसी ही काम की खबरें आपके लाती रहूंगी। तो करना क्या है आपको, अगर आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं पर आपको ट्रैफिक दिख रहा है बहुत स्मूथ, या ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, दोनों ही इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। 9868107070 है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर को सेव कीजिए, व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज कीजिए, और साथ ही बता सकते हैं कि कैसा है आपके यहाँ के मौसम का हाल। जुड़े रहिए 102.6 मेगाहर्ट्ज़ ऋचा के साथ।

तो बहुत जगह पर मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे सर्दियां, कभी गर्मियां, कभी बारिश, समझ नहीं आता कि मौसम ने भला क्या लगा रखा है। ठीक ऐसे ही आज के कार्यक्रम में आपको बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और आप भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो अब कुछ ऐसी खबर भी मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। और देखिए, इस गाने में आप रैप सुन रहे थे, आपको पता है इंडिया में रैप कब आया? 1990s में। वैसे तो कहा जाता है कि 1990s में बाबा सहगल ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, लेकिन उसके बाद से 2000 में, 2010 में कितने सारे डिवाइन, नाइजी, यानी कितने सारे ऐसे रैपर्स हुए हैं जिन्होंने हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को बढ़िया रैप दिया है। और अब रैप केवल हिंदी लैंग्वेज में नहीं बल्कि पंजाबी में, बल्कि तमिल, तेलुगू, मलयालम, बंगाली, मराठी, कन्नड़ और हरियाणवी में भी देसी रैप्स आपको देखने को मिलते हैं। बाबा सहगल, बोहेमिया, हनी सिंह, बादशाह, डिवाइन, एमवी, बंटाई, रफ्तार, प्रदीप, कितने सारे नाम हैं जिन्होंने रैप कल्चर को ना एकदम बदल के रख दिया है ना। और मुझे तो रैप्स बहुत पसंद है, आपको अच्छा लगता है रैप? वैसे अगर बात करें कि कई सारे, आपको पता है कथक में भी कई सारे ऐसे बंद हैं जिन्हें रैप की तरह ही गाया जाता है और उनके डांस फॉर्म्स जो हैं वो भी उसी तरह किए जाते हैं। बहुत समय पहले किसी से मुलाकात हुई कथक डांसर, उन्होंने मुझे कहा कि जो रैप जो आज इतना फेमस है, दरअसल बहुत समय से हम उस पर नृत्य करते आ रहे हैं, हम उन पर डांस करते आ रहे हैं और उन्हें रैप की फॉर्म में ही उन गानों को बार बार बार गाया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसी तरह के उनकी तालबंदी की जाती है। तो देखिए कैसे हमारा जो इंडिया है वो इतना रिच है कल्चर में कि बहुत कुछ हम हमेशा अपना खुद के कल्चर को तो लोगों तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही हर एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अपने कल्चर के अकॉर्डिंग एग्री रहते हैं, है ना। और बिल्कुल ऐसा ही फ्लेक्सिबल होना भी चाहिए। तो अगर आप तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है इस बहाने के साथ कि आप रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं, तो न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम से आप तक पहुंचेगी और साथ ही पहुंचेगा ढेर सारा इंटरटेनमेंट भी।

अगर आप भी पार्कों में घूमने के शौकीन हैं और आपको लगता है कि सेहतमंद रहने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मॉर्निंग वॉक एंड प्लस डिनर के बाद की इवनिंग वॉक, लेकिन एक चीज़ है जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है और वो है वहाँ पर होने वाला अंधेरा, या आपको अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपके पार्क जो हैं वो सेफ नहीं हैं, तो इन पर सरकार ने काम करने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द ऐसे पार्कों को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही उनके इम्प्रूवमेंट पर काम भी किया जाएगा। तो बहुत जल्द ऐसा होगा कि शायद जो आपके क्षेत्र के जो पार्क हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। तो कई सारे ऐसे हाई रिस्क जोन दिल्ली में पार्क जो हैं वो मार्क किए गए हैं और इन सभी में सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे, साथ ही लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर सुविधा मिल सके और साथ ही जब वो इवनिंग वॉक पर जाएं या वो सुबह की अर्ली मॉर्निंग वॉक्स पर जाएं जब सूरज नहीं निकला होता है और अंधेरा होता है तब भी वो सेफ फील कर सकें। और कोशिश ही ये है कि आप सभी दिल्ली में रहते हुए बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पर रहने के लिए। पर ऐसे में आपको भी एक जिम्मेदारी निभानी है। कल आप जानते ही हैं कि कल 2 अक्टूबर था, इस दिन को हम स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कल का दिन खत्म हो गया लेकिन आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। ज़रूरी ये भी है कि आप अपना और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें, क्लीन रखें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और ये भी मार्क ज़रूर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि कभी भी गंदगी यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। अपनी कार में, अपने बैग में हमेशा एक पॉली बैग कैरी करें या एक पेपर बैग कैरी करें जहाँ पर आप सारी गंदगी इकट्ठी कर सकें। मैं जा रही हूँ स्टूडियो में, आ गई हैं हमारी जो नेक्स्ट प्रेजेंटर है खुशबू, वो आपको लेके जाएंगे एक नए सफ़र पे। तो मुझे अभी खेल दीजिए इजाज़त, चलती हूँ, मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। इंतज़ार कीजिएगा और अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए पिता की खास खबरें। G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर भारत ने वैश्विक व्यापार में असंतुलन दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करने पर जोर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। डेयरी संयंत्र की दूध प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर है। केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वे जहाज निर्माण और समुद्री क्षमता के मामले में भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में अहम भूमिका निभाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एयरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। अमेरिका में तेल की कीमत के रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चे तेल जारी करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया है। इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल्स में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा और एशियाई खेलों में भारत 17 स्वर्ण सहित कुल 77 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और अब आकाशवाणी पर मेरी वाणी आपको ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और यहाँ पर आप सुनेंगे बैक टू बैक बॉलीवुड के ट्रैक्स, और साथ ही 9:15, 9:30 और 9:45 थोड़ा ओल्ड इज गोल्ड वाले गानों का तड़का लगेगा। ऑब्वियसली 9:30 हमारी एशियन अपडेट्स जाएंगी, लेकिन उसके बाद या फिर उससे पहले थोड़ा आगे पीछे करके हम आपको तड़का दे ही देंगे ओल्ड इज गोल्ड की डायरी से एक प्यारा सा गीत सुनाकर। फिलहाल शुरू करते हैं प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ये सबसे पहला गाना हमारे प्रभु के नाम फ्रॉम द मूवी हनुमान अंश।

मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बेशक गाने में बोल रहे हूँ, लेकिन टाइम पास 2 o'clock हो चुका है, 9:15 और रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए लेकर आई हूँ किशोरदा की आवाज़ में ये गाना फिल्म परिचय से।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स का।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट में। आज की पहली अपडेट में मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल और मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। आज की सुबह बेहद सुहानी कह सकते हैं, बेहद खूबसूरत सुबह कह सकते हैं। भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। अभी अभी जस्ट जब हम आपसे जुड़े हैं उसी वक्त गोल्फ में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। जी हाँ, भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्फ का गोल्ड

0: मेडल जीत लिया है और वो भी जीता है किस खिलाड़ी ने, प्रणवी ने जीता है। जी हाँ, प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। एशियन गेम्स से पहले पदक की प्रबल दावेदारों में उनका नाम हालांकि नहीं शुमार था, लेकिन प्रणवी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए भारत के लिए महिला गोल्फ का पहला व्यक्तिगत जो सोना है, गोल्ड है एशियन गेम्स का, वो दिला दिया। ये उपलब्धि भारतीय गोल्फ के इतिहास में एक नया अध्याय कह सकते हैं। बिल्कुल साक्षी,
1: जरूर शाहिद। एंड अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दें कि इससे पहले जो गोल्फ के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड आया था वो शिव कपूर लाए थे 2002 में, तो यानी 24 साल का इंतजार आज जाकर समाप्त तो होता है विद दिस ब्यूटिफुल गोल्ड दैट प्रणवी उर्स हैज बॉट फॉर द कंट्री। एंड अलॉन्ग विद दैट, प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा ऑल्सो क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। चलिए आपको दूसरी तरफ भी लेकर चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ, जो आने वाली है आर्चरी की दुनिया से, जहां आज हिस्ट्री बन गई। कुमकुन महोद has created history. She became the first Indian women's recurve archer to win a gold medal at the Asian Games. जी हाँ, पहली महिला भारतीय आर्चर जिन्होंने गोल्ड दिलवाया एशियन गेम्स में भारत को। In a thrilling final, she beat her Korean opponent Oh Hee-jin via a shoot-off. India's final day at the Asian Games 2026 begins on a golden note. She had an extraordinary debut campaign for India at the Asian Games. She finished with 2 golds and 1 silver medal. दोस्तों मैं बात कर रही हूँ कुमकुम महोद की। And as part of the women's team, she won the first gold medal for India in this event. Her mixed team silver was also the first medal for India in that category. Ultimately, she became the first Indian woman to win a gold medal in a recurve इंडिविजुअल इवेंट। शाहिद
0: जी, बिल्कुल बात करते हैं कुश्ती की, जहां मैट पर उठा पटक जारी है। दो पहलवान जहां बाहर हो गए, वही तीन पहलवान अभी भी मेडल की रेस में बने हैं। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के नूरदान एतानवो को 12-1 के बड़े अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इससे पहले अमन सहरावत ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से हराया था। मुकाबले के पहले हाफ में अमन 8-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए 12 अंक जुटाए और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर मुकाबला अपने नाम कर लिया। उधर अंतिम पंगाल, भारत की सनसनी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उज़्बेकिस्तान की एसबोनसीवा साकिब जमाल को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। अंतिम ने इससे पहले आज की अपनी पहली जो प्री क्वार्टर फाइनल कुश्ती है उसमें कजाकिस्तान की सुग्याला ओमरीबेकोवा को 9-0 से शिकस्त दी थी, जबकि 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत के सागर जगलान को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारकर सामना करना पड़ा। वहीं सागर को ईरानी पहलवान जो मौजूदा चैंपियन है योनेस इमागोचोई ने 10-0 से हराया था। अब सागर उम्मीद करेंगे कि उनके जो विरोधी पहलवान है वो फाइनल पहुंचे और रेपेचेज खेलें। उधर 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जिस तरह मनीषा अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला हार गई, हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार तरीके से जीत दर्ज की थी।
1: जी, और टैक्वेंडो में आपको बता दें कि कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजिन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। ज्योति राज यादव नाउ रिमेन्स इंडियाज ओनली होप इन द स्पोर्ट एज शी गेट्स रेडी फॉर अ राउंड ऑफ 16 मैच। और इन द सेमीफाइनल उनका मुकाबला हुआ जू जिंगी ऑफ चाइना से। वही वुमेन 67 kg राउंड ऑफ 16 में ज्योति यादव, जिनका मुकाबला हुआ कन्नलक चुओनचोलिन से, वहां पर भी ज्योति यादव को हार का सामना करना पड़ा 15-4, 15-2 से, यानी 0-2 से शी लॉस्ट दैट राउंड। शी हैज दस बीन नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट आल्सो एंडेड विद दिस लॉस।
0: अगली खबर की तरफ चलूं, उससे पहले बता दूं कि दीपक पुनिया भी अभी भी बने हुए, उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता था, वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं ताइक्वांडो की बात करते हैं, महिलाओं के 67 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला जो था वो ज्योति का, जैसा कि अभी साक्षी ने बताया, उन्होंने जीत हासिल की है। जी हाँ, आज की जो शुरुआत हुई साक्षी बेहद शानदार रही, 2 गोल्ड आए। वहीं कुश्ती में 3 पहलवान अभी भी पदक की तरफ बढ़े हैं, यानी आने वाला जो अगला घंटा वो भी अब बेहद खास होने वाला है।
1: जी, एंड अ वेरी क्विक रैप अप ऑन हाउ द मेडल टेबल प्रेजेंटली स्टैंड्स एट द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। भारत इस समय है 5वें स्थान पर आज दिन की शुरुआत में। कुल उसके पास है 77 मेडल्स, जिसमें 17 गोल्ड, 25 सिल्वर, 35 ब्रॉन्ज है। लेट्स सी हाउ द डे एंड्स फॉर इंडिया। फॉर नाउ दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शाहिद आजमी साइनिंग ऑफ। हम आपके साथ एक बार फिर से सुबह के 10:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स एंड ऑल्सो एन अपडेट ऑन द इंडिया पाकिस्तान फाइनल क्रिकेट मैच ऑल सेट टू बिगिन।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: स्टूडियो क्लॉक 42 मिनट्स पास 9 और इस वक्त दिल्ली का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस और पूरे हफ्ते सूर्य देवता फुल चमक रहे हैं, कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 22।

This track was from the movie Cocktail 2. प्रीतम अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर और रेनबो की ओल्ड डायरी से आप सभी लिसनर्स के लिए ये गाना लेकर आई हूँ फिल्म शान से आशा भोसले मोहम्मद रफी किशोर दा की आवाज में।

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जुबिन नौटियाल की आवाज में ये ट्रैक चल रहा है रेनबो स्टेशन पर फ्रॉम द मूवी सन ऑफ सरदार। और रेनबो स्टेशन पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। तालेहा आ गई है स्टूडियो में विद द प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर जो आप सुनेंगे 10 से 11। इट इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम और आप इंजॉय कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ बॉलीवुड ट्रेल्स आएगा 11 से 12। SM शाहिद लेकर आ रहे हैं 12 से 1। तालेहा फिर आएंगी आपको सुनाने के लिए प्रोग्राम, एक वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम विच इज प्ले इट कूल। और शाहिद के साथ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपका फेवरेट यानी कि मेरा वाला सॉन्ग। वैसे मजा ही आ जाता है अगर आपके नाम के साथ रेडियो में आपका पसंदीदा अगर गाना बज जाए तो मजा आता है। एक से दो आप वो सुनेंगे। और इन केस आपको तालेहा का मतलब नहीं पता, आप स्टूडियो में खड़ी हैं तो मैंने पूछ लिया आपके नाम का मतलब क्या है, और इनके नाम का मतलब है पर्सन हु ब्रिंग्स शाइन सनशाइन टू समवन्स लाइफ। तो आपके अब प्रोग्राम में सनशाइन बिखरने वाली है और आरजे खुशी तो खुशियां देकर अब जा रही है और मिलूंगी आपको जल्दी ही। जाने से पहले इतना ही कहना चाहती हूँ कि सफलता जो होती है ना वो उन छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें बार बार दोहराया जाता है। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत। खुश रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन।

रफ़ी एंड आशा भोसले केम टुगेदर बिहाइंड द माइक्रोफोन. सो फ्रॉम द बादल ऑफ आउटसाइड टू द बादल इन आर म्यूजिक हियर्स मोहम्मद रफ़ी एंड आशा भोसले विद द ट्रैक कॉल्ड दीवाना हुआ बादल.

0: It's time for the Asian Games 2026 updates.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ दोस्तों इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 के। आज है आखिरी दिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो खेलों का, खास तौर से इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, व्हेन इट कम्स इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026, बिकॉज टुमारो द एशियन गेम्स कम्स टू इट्स फॉर्मल ऑफिशियल क्लोजर ऑल्सो। बट अगर आज की सुबह की बात करें तो बहुत अच्छी शुरुआत आज भारतीय खिलाड़ियों ने दी, खासतौर से गोल्फ को सबसे पहले मैं बताती हूँ, जहाँ प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाई क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा, द एंटायर टीम ऑल्सो देन वेंट ऑन टू गेट द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज एवर वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर डिड दैट इन 2002। यानी 24 साल के इंतजार के बाद आज जाकर वो इंतजार समाप्त हुआ एक इंडिविजुअल गोल्ड।

0: वर्ल्ड का गोल्फ में जो प्रणवी उर्स भारत के लिए एशियन गेम्स में लेकर आई। इसके साथ आपको ये भी बताएं, प्रणवी उर्स हेल्ड हर नर्व्स टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल गोल्ड मेडल फिनिशिंग द 4 राउंड कॉम्पिटिशन एट 15 अंडर पार। शी मेड पार ऑन द फाइनल होल एज इट सिंगापुर शैनन टैन एंड चाइनाज यिन रोनिंग हु फिनिश्ड ऑन 14 अंडर टू शेयर द सिल्वर मेडल। आदित्य अशोक एंड दीक्षा डागर सेलिब्रेटेड बाई डाउजिंग प्रणवी विद वॉटर ऑन द कोर्स आफ्टर अ मेमोरेबल विक्ट्री।
1: जी, अब एक और अच्छी खबर श्रोताओं को बताएं, नागोया में भारत की 70,000 की तीरंदाज कुमकुम अनिल मोहोद ने आज ऐसा निशाना साधा कि इतिहास बन गया। एशियन गेम्स में पहली बार किसी भारतीय महिला ने रिकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कुमकुम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में कोरिया की येजिन ओह को 6-5 से हराया। मुकाबला इतना करीबी रहा कि फैसला शूटआउट में हुआ, जहां कुमकुम ने 10-8 से बाजी मारकर सोना अपने नाम किया। स्कोर लाइन की बात कर लेते हैं तो कुमकुम ने 27-29, 29-29, 30-29, 27-28, 30-28 और शूटआउट में 10-8 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। और यह कुमकुम का इस एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। महिला टीम रिकर्व में स्वर्ण जबकि मिश्रित टीम में रजत पदक, अब व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। 17 साल की कुमकुम का यह एशियन गेम्स का जो पदक है उन्हें LA यानी लॉस एंजलिस ओलंपिक का टिकट भी दिला गया है।
0: Right, and now a quick update on cricket where the India versus Pakistan gold medal match is underway currently. India won the toss today and chose to bat first. Batting, India so far has put or rather made 75 runs for the loss of 2 wickets in 5.2 overs, the current run rate being 14.06 per over. India lost 2 quick early wickets of Vaibhav Suryavanshi at 15 and Sanju Samson at just 2 runs. But Abhishek Sharma, who is presently on 46 and 16 balls, and Shreyas Iyer, who has just come onto the ground and has made 3 runs in 4 balls, have been able to solidify and give India a steady start and momentum. Also, Abhishek Sharma presently is just 4 short of his half century. India definitely in a commanding position in the 6th over as of now in this match.
1: कुश्ती की बात कर लेते हैं। साक्षी, कुश्ती के अखाड़े से भारत के लिए शानदार खबर आई है। भारतीय पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 2 वर्ग के फाइनल में जगह बना ली, जबकि 2 पहलवान कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेंगे। महिला 53 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में अंतिम पंघाल ने शानदार वापसी करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मुकाबले में अंतिम शुरुआत में 0-1 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए कुछ ही सेकंड में 6-1 कर दिया और इस शानदार जीत के साथ अंतिम ने अपना पदक पक्का कर लिया। अब वो स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं अमन सहरावत अपनी ख्याति के अनुसार उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट उन्होंने हासिल किया। ताजिकिस्तान के अयाला बोलोसक्यूकी के खिलाफ अमन पहले पीरियड में 2-6 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिर में मुकाबला 14-8 से जीत लिया। उधर सागर जगलान ने शानदार जीत दर्ज की और पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल के रेपचेज मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेंगे। यहां पर इन्होंने 7-3 से जीत दर्ज कर ली। लेकिन एक और मुकाबले की बात कर लेते हैं। 97 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में दीपक पुनिया को सेमीफाइनल में करीबी मुकाबले में हार मिली। उज्बेकिस्तान के शोर्डेट्स के खिलाफ 9-8 से उन्होंने जो 8-9 से शिकस्त मिली थी, उसके बाद अब वो ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला करेंगे।
0: Right, and a quick update on the medal table. Presently, India is on the fifth position with a total of 79 medals, जिसमें 18 gold, 26 silver और 35 bronze medal हैं। जी हाँ, एक और gold medal भारत अपने नाम अभी कर चुका है, इसलिए हमारी position medal table पर अब 5वीं हो चुकी है। देखना होगा कि आज के दिन की समाप्ति तक भारत किस प्रकार से एशियन गेम 2026 में अपने खेलों के इस सफर की समाप्ति करता है और मेडल टेबल पर भारत कहां पर जगह गाएगा। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा एक बार सुबह 11:30 जुड़ेंगे विद ऑल द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: यू आर लिसनिंग टू द एशियन गेम्स 2026 अपडेट्स।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, यू आर ट्यून इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज। द शो इज कॉल्ड द मैचलेस म्यूजिक आर एंड इट्स टाइम फॉर अस टू ब्रिंग ऑन द वेरी नेक्स्ट सॉन्ग।

0: लता मंगेशकर देयर विद द ट्रैक कॉल्ड रहे ना रहे हम, अ ब्यूटिफुल मेलेडी. रोशन कंपोज द म्यूजिक, मजरू सुल्तानपुरी रोट द वर्ड्स, एंड लता मंगेशकर्स वॉइस गेव द मैजिक टू द सॉन्ग. टेकन इन फ्रॉम द 1966 फिल्म ममता, दिस वॉज द सॉन्ग कॉल्ड रहे ना रहे हम. एंड ऑन दैट नोट, इट्स टाइम फॉर अस टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं. आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो.
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं, और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
3: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है,
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है. मल्टीपल

0: पार्टनर्स मतलब एचआईवी का ज्यादा रिस्क?
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
2: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। योर ट्यून इन टू द मैचलेस म्यूजिक आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज विद योर होस्ट तालिया खान। Now it's time for our next song, and this song is like a sound for the summer, but there's a bittersweet story underneath. It's about two people spending the summer apart and promising to stay connected through letters. Brian Helen's 1962 version turned that simple idea into an enduring pop favorite. The song is called Sealed with a Kiss.

0: सुबह के 11 बज चुके हैं। पेश इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। जापान एशियाई खेलों में प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। पदक तालिका में भारत 77 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जिनमें 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से निर्वासित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियां बनाते समय जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जनभागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एर्केंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण GEC 3 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है और संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख तक कर दी है। ये देश घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो। और प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स का ये है समय और शाहिद आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर के। तो बॉलीवुड की ताजा तरीन अपडेट और आज क्या है अपडेट, कल रिलीज हुई फिल्मों की और बाकी भी बॉक्स ऑफिस अपडेट मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी बॉलीवुड ट्रेल्स, आप हैं शाहिद के साथ 102.6। देश का नंबर 1 रेडियो है ये, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ और ये है 102.6 आपका अपना रेनबो। कल था फ्राइडे और फ्राइडे को रिलीज होती हैं नई मूवीज और जो धमाकेदार एंट्री की है मूवी रिलीज हुई है ताजा ताजा वो है दृश्यम सीरीज की दृश्यम 3। और इस फिल्म ने रिलीज के बाद ही फर्स्ट डे में ही रिकॉर्ड कलेक्शन करके धूम मचा दी है, बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। रिकॉर्ड कलेक्शन किया है दृश्यम 3 ने पहले ही दिन का फर्स्ट डे कलेक्शन 46 करोड़ से भी ज्यादा का ऑल ओवर इंडिया, तो और तकरीबन 50 करोड़ तक का जो इसमें एडवांस बुकिंग के कलेक्शन की गई थी, तो इसका मतलब इसने की है धमाकेदार एंट्री। अजय देवगन स्टार ये फिल्म भी लग रहा है कि सुपरहिट होगी। हो सकता है जो ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं कि दृश्यम 3 इस साल की वन ऑफ द टॉप और बिगेस्ट हिट मूवीज में से एक साबित होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर जो और फिल्में पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी उनकी अपडेट यह है कि द वन रिलीज हुई थी लास्ट वीक 25 सितंबर को और इसका टोटल जो फर्स्ट वीक कलेक्शन अब तक हुआ है वो है तकरीबन 53 करोड़ के आसपास और नेट कलेक्शन जो है वो है 62 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ग्रॉस। तो यही बात हुई लास्ट वीक रिलीज हुई फिल्म दीवान की और कल एक फिल्म और रिलीज हुई है जिसका नाम है प्रेम कीटाणु। कॉलेज लाइफ पर बेस्ड एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कल रिलीज हुई और इसमें है जो सेंट्रल कैरेक्टर में वीर पहाड़िया और साथ ही अपार शक्ति खुराना, राकेश बेदी हैं बहुत ही एक अहम रोल में और साथ ही है इसमें आफिया सैयद। मैं आपको और भी कलेक्शन बताऊंगा जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी फिल्में लास्ट वीक और उससे पहले की, तो उनके कलेक्शन क्या क्या रहे, क्योंकि आज सैटरडे तो हम बात करेंगे कलेक्शंस की भी और जो ताज़ा अपडेट्स हैं बॉलीवुड की वो भी।

सितंबर महीने में जो फिल्में रिलीज हुई उनका कलेक्शन आपको बता देता हूँ कि बॉक्स ऑफिस पर किस किस फिल्म में कितना कितना कलेक्शन किया और कौन सी फिल्म रही हिट और कौन सी फ्लॉप। हनुमान अंश एक ऐसी फिल्म जो बहुत कम बजट से बनाई गई, बहुत ही शानदार फिल्म और स्टार कास्ट भी इसमें कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट, लेकिन उसके बावजूद फिल्म ने वो कलेक्शन किया है और वो कमाल दिखाया है बॉक्स ऑफिस पर कि बाकी सारी फिल्में उसके आगे फीकी नजर आती हैं। हनुमान अंश सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई है और इसका कलेक्शन जो हुआ है अभी तक का वो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 317 करोड़। कम बजट पर बनाई गई एक ऐसी फिल्म जिसने कमाल कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर। इसके अलावा मिर्जापुर द मूवी जो रिलीज हुई थी वो भी सुपरहिट साबित हुई और उसका कलेक्शन है अभी तक का 229 करोड़। इसके अलावा एक फिल्म आई थी दायरा, सिर्फ 6.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किया है रिलीज के बाद और ये फिल्म एक फ्लॉप साबित हुई। इस महीने अक्टूबर में दृश्यम 3 ने शुरुआत करी है एक शानदार फिल्म कलेक्शन के साथ, लेकिन इसके अलावा और भी काफी बड़ी फिल्में हैं अक्टूबर महीने में रिलीज होने वाली जिसका मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन आपको बताऊं कि पिछले हफ्तों में रिलीज हुई, सितंबर रिलीज हुई और फिल्मों में है धमाल 4, अपनी कॉमेडी सीरीज की चौथी फिल्म धमाल 4 भी बिलो एवरेज रही है और 167 करोड़ का इसने किया है बिजनेस, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी बहुत ज्यादा।

तो आगे बॉलीवुड टेल्स में आपको मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर महीने में और कौन सी बड़ी फिल्में होने वाली हैं रिलीज। आप बने रहे मेरे साथ, मेरा नाम है शायद, प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

बॉलीवुड ट्रेंड्स आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। अक्टूबर में जो रिलीज होने वाली है फिल्में, पहली शुरुआत जो हुई है वो ये दृश्यम 3 के साथ, जो बहुत ही शानदार इसने ओपनिंग की है फर्स्ट डे कलेक्शन, और ये फिल्म सुपरहिट साबित होने वाली है। मगर इसके अलावा कुछ और भी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं अक्टूबर में, जिनमें एक बड़ी फिल्म है उड़ता तीर, इस फिल्म का टाइटल है, जो रिलीज होने वाली है 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी ये फिल्म, लेकिन अब ये आगे बढ़ गई है, इसकी फिल्म को, इसकी रिलीज को डिले कर दिया गया है और अब ये रिलीज होगी 23 अक्टूबर को। उड़ता तीर स्टारिंग आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, राहुल बोस और राम कपूर इसमें है ये सेंट्रल कैरेक्टर्स में। उड़ता तीर के प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को चाहिए था कि उनको बिल्कुल क्लीन चाहिए सिनेमा हॉल्स और कोई भी फिल्म उसके टक्कर पर ना हो, ताकि इस फिल्म का पूरा पूरा रिस्पांस मिले। उड़ता तीर की बहुत तारीफ आ रही है इसके ट्रेलर को देख करके, और लग रहा है कि ये फिल्म भी हिट साबित होगी, और ये फिल्म है एक कॉमेडी थ्रिलर। इसके अलावा रिलीज होगी 16 अक्टूबर को नई नवेली, यामी गौतम इसमें सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रही है, और ये फिल्म है एक फैंटेसी हॉरर कॉमेडी। सोलह अक्टूबर को ही रिलीज होगी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम प्रहार, 16 अक्टूबर को, बायोपिक ड्रामा ये फिल्म है, और राजकुमार

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आगे होगा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम स्टम्प्ड और फिर वापस लौटेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ।
1: अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: 1 बजे से 2 बजे के बीच मैं मिलूंगा आपको मेरा वाला सॉन्ग के साथ, और आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मुझको 9868107070 पर अपनी अपनी रिक्वेस्ट गाने की। बॉलीवुड ट्रेंड्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। और आपको बता दूं मैं कि टी सीरीज के भूषण कुमार को जो है बॉलीवुड के रिचेस्ट पर्सनैलिटी रिचेस्ट सेलिब्रिटी के तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। आपको बताऊं कि उनके जो एसेट्स हैं वो 36,300 करोड़ रुपए नेटवर्थ है भूषण कुमार की। और इसके बाद ये पता लगता है कि हमारे के रिचेस्ट जो फिल्म स्टार हैं शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन समेत जो भी लोग हैं उन सबसे कहीं ज्यादा है। और ये भी रिपोर्ट है कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के कंबाइंड एसेट्स मिलाकर के भी उससे ज्यादा इनके अकेले के पास हैं। टी सीरीज के भूषण कुमार इज बीन डिक्लेयर्ड बॉलीवुड रिचेस्ट पर्सनैलिटी।

तो बॉलीवुड ट्रेल्स में शाहिद के साथ आज इतना ही। आपको मैं आगे मिलता रहूंगा अगले प्रोग्राम से भी, लेकिन अभी मिलूंगा आपको मैं 1 बजे मेरा वाला सॉन्ग के साथ। अभी नेक्स्ट शो होगा मेरा वाला सॉन्ग से पहले का शो, वेस्टर्न म्यूजिक का शो, प्ले इट कूल तालिहा खान के साथ।

0: That was Too Unlimited with the track called Get Ready for This. Now, since we are talking about sports, we talked about fitness, a lot of people around the world do take espresso as their pre-workout routine as well to keep them fresh. And we will be talking about many things around sport. We also have a message which is by M. Rajkumar from Trichy, who says that cricket and badminton is something which he played in his childhood days but never took it up very seriously. Thank you so much for writing in, M. Rajkumar. And we have got another message from Sanjeev Kumar from Haryana, who says thanks for playing the Waka Waka track by Shakira. Well, thank you so much for tuning in. And I also have a message by G.S. Gill from Patiala, and the track you have requested, we'll definitely take it up in a short while. But for now, you have to stay tuned because we are coming up with some updates. It's time now for the Asian Games 2026 update.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वक्त के सबसे अच्छे अपडेट्स, बड़े अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबले की। द T20 मैच दैट इज प्रेजेंटली ऑन फॉर द गोल्ड मेडल, इंडिया वन द टॉस, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक बहुत ही विशाल स्कोर 211 का 20 ओवर बनाया फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जिसमें दो बल्लेबाजों की बहुत अहम कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। उसमें एक थे अभिषेक शर्मा, हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स विच इंक्लूड 3-4-7 सिक्सेस, एंड द अदर वन वाज ईशान किशन, माय अपोलॉजीज, द अदर वन वाज तिलक वर्मा, हु मेड 51 एंड 22 बॉल्स। ईशान किशन की भी हम कह सकते हैं साझेदारी जो रही तिलक वर्मा के साथ वो बहुत ज़रूरी रही, क्योंकि उसी ने बूस्ट दिया तिलक वर्मा को हाफ सेंचुरी बनाने के लिए और साथ ही साथ भारत को एक बहुत ही सॉलिड टोटल पर फिनिश कराने के लिए। बदले में हमने देखा जब पाकिस्तान अभी बल्लेबाजी करने उतरी है तो उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में से 8 ओवर हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने सिर्फ 51 रन अभी तक बनाए हैं और 3 विकेट उनके जा चुके हैं। एंड वी कैन से दैट इट इज द अक्षर पटेल शो दैट हैज बीन सो फार ऑन, क्योंकि साहिबजादा परान को अक्षर पटेल ने कैच पकड़ के आउट किया, वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पे, मां सदाकत भी आउट हुए तो अक्षर पटेल की गेंद पे हुए, उस्मान खान भी जो इनके विकेट कीपर है उनको भी अक्षर पटेल ने ही आउट किया। तो एक तरीके से बापू शो इज ऑन राइट नाउ।
3: जी बिल्कुल, क्रिकेट में हम बिल्कुल गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन एक गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं जो सुबह आया। प्रणवी उर्स ने एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले में स्वर्ण पदक जीत लिया। जी हां, 23 साल की प्रणवी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी है। प्रणवी ने 15 अंडर 265 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने आखिरी होल पर शानदार संयम दिखाते हुए पार खेला और सिंगापुर की शैनन सुआन टिन टैन तथा चीन की 3 रुओंग को एक शॉट पीछे छोड़ दिया। इसके बाद महिला टीम स्पर्धा में भी भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर की भारतीय टीम ने 4 राउंड में कुल 14 अंडर 546 का स्कोर किया। चीन ने 22 अंडर 538 के साथ स्वर्ण और चीनी ताइपे ने 10 अंडर 550 के साथ कांस्य पदक जीता। वहीं पुरुषों की बात कर लेते, वीर अहलावत 6 स्थान पर चल रहे हैं।
2: जी, आश्री रिकर्व में भी आपको कुछ अपडेट्स दे दे, क्योंकि भारत की तरफ से धीरज बम्बा दिवारा और नीरज चौहान केम फेस टू फेस फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, और हमने देखा कि नीरज वाज एबल टू सिक्योर द ब्रॉन्ज मेडल इन हिज नेम। दिस वाज अ मैच दैट हैपेंड बिटवीन टू इंडियन शूटर्स, कैन वी से। सो धीरज स्टार्टेड विद एन 8 बिफोर नीरज शॉट अ 10, धीरज हिट अ 10 फॉलोड बाय अ 9 बाय नीरज, धीरज देन अगेन वेंट ऑन टू हिट अनदर 10 एंड देयर बाय द मैच वाज वन बाय नीरज 6-4 की रीडिंग पर टू secure the bronze medal in his name. आपको बता दें कि South Korea finished off with the gold in the men's individual recurve, defeating Japan's junior Nakanishi 6-2 in the final. As a result, we saw that Japan got the silver, while Bharat ke Neeraj Chauhan took the bronze medal.
3: जी, कुश्ती से भी हम दो पदक यानी दो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर सकते हैं। अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सेमीफाइनल में कमाल की वापसी करते हुए फाइनल का टिकट कटा लिया है। ताजिकिस्तान के आयाल बोलोस्कुबी के खिलाफ उनका जो मुकाबला था, अमन ने पहले पीरियड में 2-6 से, हालांकि वहां ट्रेल कर रहे थे, पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में भारतीय पहलवान ने ऐसा पलटवार किया कि मुकाबले का रुख बदल दिया। अमन ने दूसरे पीरियड में 12 अंक बटोरे और आखिरकार 14-8 से मैच अपने नाम कर लिया। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला बेहद सख्त होने की संभावना है क्योंकि उनके सामने डीपीआर कोरिया के चांग सॉन्ग हान होंगे जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर है। वहीं अमन की मौजूदा रैंकिंग 20। खैर जब बात पहलवान की हो और मैट पर पहलवान उतर जाता है तो कागज पे क्या लिखा वो धरा का धरा रह जाता है। वहीं महिला 53 किलोग्राम में अंतिम पंगहाल पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल में पहुंच गई हैं। उनके बारे में बताएं तो 53 किलोग्राम का खिताबी मुकाबला उनका सामना होगा 19 वर्ल्ड नंबर 19 की क्योंकि मोए से जापान की खिलाड़ी हैं। हालांकि यहां पर अंतिम पंगहाल मजबूत स्थिति में वर्ल्ड नंबर 1 अंतिम पंगहाल यहां पर गोल्ड मेडल जीत सकती हैं।
2: Right, and also a quick update from the world of volleyball, जहां Indian men's volleyball team finished 6th after losing their 5th and 6th place match to Thailand 3-2. India's campaign included a stunning fight back against Qatar, but a defeat to Pakistan ended their hopes of reaching the semi-finals. And as a result, भारत की men's volleyball team ने इस Asian Games के अंदर इस हार के साथ अपने इस सफर का भी यहां पर समापन कर लिया। और आपको ये बता दें, भारत आज क्योंकि भारतीय representation का Asian Games का last day, और officially भी हम बात करें तो majority of the games today get over in the ongoing Asian Games 2026. कल एक ही या दो मुकाबले रहेंगे, तो अब भारत अभी presently है 5वें स्थान पर मेडल टेबल पे 80 मेडल्स के साथ, जिसमें 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज है। और अगर भारत चाहता है कि वो चौथे स्थान पर समाप्त करे ongoing Asian Games 2026 में, तो उनको चाहिए कि वो उज़्बेकिस्तान ने, जिन्होंने अभी तक 20 गोल्ड कमाए हैं, उनके इन गोल्ड मेडल्स को पार करके कम से कम 22 या 21 या 23 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर सके। क्या भारत ये कर पाएगा, दिन की समाप्ति तक हमें पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ मोहम्मद शाहिद को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 1:30 बजे। थैंक यू।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
0: यू वर लिसनिंग टू द एशियन गेम्स 2026 अपडेट।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: द एशियन गेम्स हैव ऑलवेज बीन अबाउट मोर कॉम्पिटिशन। They bring together different cultures, different countries and people across Asia, reminding us how something as universal as sports can cross borders. And since these Asian Games are being held in Japan, today is the last day, we have a track. Let's travel to Japan together with an artist whose music has found listeners far beyond his own home country. The track is by Fujikaze and it is called Working Hard.

0: That was Celine Dion with the track called I'm Alive. And it's time for us to take a short break. But don't go anywhere. We'll be right back.
1: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार. सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर.
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू.
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ SR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है.
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो जो SR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: वेलकम बैक, यू ट्यून इन टू प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। दिस इज योर होस्ट तालेहा खान। वी टुडे आर टॉकिंग अबाउट

दोपहर के एक बज चुके हैं और पेश है एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। जापान एशियाई खेलों में प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। कुमकुम महोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर प्रणवी शरद उर्स को बधाई दी है। एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। पदक तालिका में भारत 80 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है, जिनमें 18 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जनभागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण GEC-3 को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि बढ़ाकर इस महीने की 31 तारीख तक कर दी है। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। ये 23 घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

102.6 ये देश नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो। यहाँ पर अब प्रोग्राम शुरू हो गया आपका फेवरेट शो मेरा वाला सॉन्ग। मेरा वाला सॉन्ग आपका फेवरेट शो है मैं जानता हूँ, और आज मैं ये शो करने के लिए आया हूँ आपके रूबरू, और आप मुझे

अपना फेवरेट सॉन्ग बता सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके। नंबर है 9868107070, जो आपको याद ही है 9868107070। तो मैं कर रहा हूँ आपके फेवरेट गानों के मैसेजेस का इंतजार, और फिर जल्दी जल्दी मैं आपको सुनाता हूँ जो आप सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं। बने रहे मेरे साथ रेनबो पर।

102.6 देश नंबर 1 रेडियो है ये, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग मेरे साथ। मेरा नाम है शाहिद, और यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला मेरी बात करते करते ही शुरू हो चुका था। जब तक मैंने अनाउंस किया उससे पहले ही मैसेजेस काफी आ चुके हैं आप लोगों के, तो मैं एक एक करके उन मैसेजेस को पढ़ता हूँ और फिर वो सॉन्ग निकालता हूँ उस मैसेज का जो सबसे पहले हमारे पास आ गया, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई। तो गुड आफ्टरनून ग्राम नाडाइल जिला बदायूं से, फिरोज खान, नूरी फिरोज, अरबाज खान, शहबाज खान, फिल्म नायक से कोई भी सॉन्ग चला दीजिए। थैंक्स, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, और मैं जल्दी आपके मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, मैं कोशिश

करूंगा सबको पढ़ सकूं और आपका फेवरेट सॉन्ग भी चला सकूं यहां पर। अब्बास हैं ये, और सॉरी क्या मैंने आपको ठीक पहचाना है? जी हाँ बिल्कुल, मेरा नाम शाहिद ही है, आपने ठीक पहचाना है, मैं अच्छा हूँ और आप भी अच्छे होंगे। फिल्म जब वी मेट से हम जो चलने लगे, प्रदीप सरोजा जनकपुरी नई दिल्ली से। थैंक यू आपके मैसेज के लिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे ही मैसेजेस को मैं शामिल कर सकूँ और किसी एक का ही जाहिर मैं सॉन्ग चला पाऊँगा, उसके बाद बाकी बाद में भी कोशिश करूँगा चलाने की। फिल्म शालीमार से इनकी रिक्वेस्ट आई है चलाने के लिए गाना आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। इस फिल्म से मन नहीं भरता। ओके, अनीता वर्मा है ये द्वारका दिल्ली से। उसके अलावा मैसेज है ये, नमस्ते जी, फिल्म खिलाड़ी 786 का ये गाना सुना दो, ओ बलमा राजेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार, ख्याला, विष्णु गार्डन से संजय मलकर, मिसेज मीरा, मयंक कुमार, पुष्पा कुमारी, केवल पार्क से आदर्श नगर से मैसेज कर रहे हैं। DRRJ जी, जीना सिर्फ मेरे लिए फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए, मैं बिल्कुल पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ आज आपके सारे फेवरेट सॉन्ग चला सकूँ, जितनी मुझे चलाने के स्पेस मिलेगा, वक्त मिलेगा। फिल्म दिल दे चुके सनम, बोल चांद छुपा बादल में रिक्वेस्ट कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, उत्तम नगर दिल्ली से। और इसके अलावा, नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ, दिल्ली सुल्तानपुर से। मुझे गाना गंगा जमुना सरस्वती मूवी का एक हिट सुनना है, चूड़ियाँ खनके खनकाने वाले आ गए। और इसके अलावा मैसेज है, गीत तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, दिल्ली रेडियो लिसनर क्लब से बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान अहमद, सूफिया नवाब, बल्ली मारान से। ओके, बल्ली मारान से, ठीक है। तो उसके अलावा एक और ये जो सबसे पहला मैसेज था, गुड आफ्टरनून RJ जी, गुड आफ्टरनून, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, करण अर्जुन से। और ये रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों की है, सबसे पहली रिक्वेस्ट यही हमारे पास आई थी जो मैंने सबसे आखिर में पढ़ी है। आप मैसेजेस लगातार मुझे करते रहें और मैं आपके फेवरेट सॉन्ग चलाने की पूरी पूरी कोशिश करता रहूँगा। जब भी जैसे ही आपके मैसेज आते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि पहला ही जो मैसेज आए वो मैं उठाऊं और उसका फेवरेट सॉन्ग चलाऊं। तो ये मैसेज बबलू कश्यप, जॉनी कश्यप, विपिन कश्यप, पिंटू दीवाना, संजय मलाकर, नवाब अहमद नई दिल्ली से, करण अर्जुन के इस सॉन्ग के लिए किया है इन्होंने रिक्वेस्ट। तो आप भी मैसेजेस लगातार करते रहें, 9868107070 है नंबर, अपना फेवरेट सॉन्ग बताएं। मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शायद के साथ, और आपके भी सॉन्ग में जरूर शामिल करूंगा, आप रिक्वेस्ट बताएं।

कर्ण अर्जुन का ये आप ही का यानी कि हमारे लिसनर्स का ही फेवरेट सॉन्ग मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया है और इसके बाद मैं और मैसेजेस लेता हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं आपके जो मैसेजेस हैं उनके जो रिक्वेस्ट हैं उन गानों की आपके हमारे शो मेरा वाला सॉन्ग के लिए उनको ज़रूर यहाँ चला सकूँ, जो मैसेज भी मुझे जल्दी पहले मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट हों। तो ये मैसेज है, मनीष मोहित अंशु कोई भी अपनी पसंद का सॉन्ग सुना दीजिए जिससे बुलंदशहर से ये मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर आपके और अपने फेवरेट ही यहाँ पर सुनाने की आपको कोशिश करूंगा। और ये मैसेज है रंजीत मस्ताना रायबरेली से, नमस्ते जी, नमस्ते, हाउ आर यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, मूवी हीना सॉन्ग देर ना हो जाए। और इसके अलावा मैसेज है राइट आप शाहिद पाजी हो, हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बहुत ठाठा है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारा शो सुन रहे हैं और आपकी तारीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज है सूफिया नवाब अरहान अहमद शबाना भारती वजीराबाद से, और ये मैसेज फिर से आया है एक बार और, आरजे शाहिद जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, गीत तुझको हुई ना खबर चोरी चोरी चुपके चुपके, ज़रूर मैं इन सबको आपके मैसेज को शामिल कर ही रहा हूँ और गाना भी मैं ज़रूर बजाने की कोशिश करूँगा आपके फेवरेट जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। और ये मैसेज है प्यार भरा नमस्कार, थैंक यू सो मच प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से भी, प्लेलिस्ट में कोई भी एक गीत सुनवा दीजिए, नरसिम्हा चाहे तुम जाओ जहां, फिल्म जान तेरे नाम, ये अखा इंडिया जानता है, फिल्म कुर्बानी, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, और बहुत सारे सॉन्ग्स इन्होंने एक ही मैसेज में भेज दिए हैं, पूरा पश्चिम का गाना, जंजीर का गाना, लावारिस का गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मैसेज के लिए जिसमें आपने बहुत सारे मुझे अपने फेवरेट सॉन्ग आपके फेवरेट सॉन्ग लिख करके भेजे हैं। मैं आपको बता दूँ इनका नाम, आपको बता दूँ मैं, गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, दिग्दर्शन गौड़

कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई का है ये मैसेज। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपके फेवरेट सॉन्ग यहाँ चला सकूं प्रयाग मेरा वाला सॉन्ग में। अयान खान छोटा घर मूवी से गाना सुनना चाहते हैं शाहदरा दिल्ली से। शाइस्ता खान, अल्फिया खान, गुलफाम खान। इसके अलावा नमस्ते जी, फिल्म तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी का ये गाना सुना दीजिए, चुरा के दिल मेरा। उमेश कुमार हैं ये, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार ख्याला से। और मैसेजेस बहुत सारे आपके यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, मेरा वाला सॉन्ग रब ने बना दी जोड़ी का कोई भी, किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। और ये मैसेज यश प्रकाश शिंदे मुंबई से, जूबी जूबी सॉन्ग फिल्म डांस डांस सुना दीजिए, आज की रिक्वेस्ट बर्थडे गर्ल आज आरजे गर्ल श्वेता शर्मा जी को समर्पित कर रहे हैं। अंदाज आपका मस्त मलंग, बातों में है जादू, दिल जीत लेती है आप। अच्छा ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे मैसेजेस के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सारे ही फेवरेट सॉन्ग चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सबकी ही रिक्वेस्ट को यहाँ पर शामिल कर पाऊँ। और ये था एक मैसेज अनीता वर्मा द्वारका दिल्ली से, शालीमार फिल्म से ये गाना सुनना चाहती हैं और मैंने ये इनके लिए सॉन्ग निकाला है। तो आप लोगों के भी मैं सॉन्ग यहाँ पर ज़रूर प्ले करूँगा, लेकिन जो रिक्वेस्ट पहले आ जाती है मैं उसको ही यहाँ पर चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये शालीमार का ये सॉन्ग।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका
1: चाय, गजब का स्वाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 102.6 देश नंबर 1 रेडियो एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद। अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। घड़ी में बज रहे हैं तो खैर के डेढ़। मेरा नाम है दोस्तों साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। और सबसे बड़ी खबर इस घंटे की ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा गोल्ड मेडल का T20 मुकाबला फाइनल्स, भारत ने उसमें अपना गोल्ड पक्का कर लिया है। जी हाँ, ऑफिशियल कन्फर्मेशन का बस इंतजार हो रहा है, एक गेंद बची है ऑफिशियली मैच की समाप्ति में। भारत ने जहां आज पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, व्हिच इंक्लूडेड टू वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बाय अभिषेक शर्मा हु मेड 61 एंड 28 बॉल्स एंड तिलक वर्मा हु मेड 51 इन 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया रीच टू 211। वहीं पाकिस्तान ने जब वो इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, उनको चाहिए थे 212 जीतने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जस्ट फेल शॉर्ट ऑफ अ फ्यू रन्स। एंड एज आई से दैट, India have brought home the gold medal in the Asian Games 2026. Huge congratulations to the Indian men's T20 cricket team. Pakistan ki pari unke nirdharit 20 over mein chasing 211. They got completely wrapped up for 192 runs. Shahid,
3: बिल्कुल शानदार तरीके से भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उम्मीद भी की जा रही थी भारतीय टीम गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान इतना संघर्ष करेगा शायद इतनी उम्मीद नहीं थी साक्षी, जिस तरह से पाकिस्तान ने खेला। लेकिन भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में पाकिस्तान को परास्त किया, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग।
2: जी ऑफ कोर्स, और 6 विकेट गवा के पाकिस्तान ने 20 ओवर में 211 रनों को चेस करते हुए 212 उनको जीत के लिए चाहिए थे। 192 रन्स में इनके पूरे 20 ओवर समाप्त हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे अहम किरदार जिसने निभाया, जिस खिलाड़ी ने, वो रहे हसन नवाज, जिन्होंने 51 गेंदों में 96 रन्स बनाए। उनको दो बार जीवन दान भी मिला, पहली बार उनका विकेट ड्रॉप हुआ था 4 रन्स पे, उसके बाद 59 रन्स पे अगेन ही वाज ड्रॉप्ड एंड देन ही वेंट ऑन टू मेक 96 रन्स, दी ओनली सोल इंपॉर्टेंट बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूटर, या बैटर कहना चाहिए हमें, बिकॉज उसके अलावा बाकी सब खिलाड़ियों से कुछ खास हो नहीं पाया। ओवरऑल अ वेरी वेरी सॉलिड डिस्प्ले बाय द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, जैसे शाहिद ने सही कहा, तीनों क्षेत्रों में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में आज।
3: जी बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया था। अब 3 गोल्ड मेडल और आस है आज के दिन में, जैसा अंतिम पंघाल है, अमन सहरावत है, इसके अलावा हॉकी टीम से। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल और आने वाले, लेकिन कुछ और मुकाबलों की झलक आपको दिखाऊं, बताऊं। जी हाँ, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का अभियान 6 स्थान पर समाप्त हो गया। 5वें और 6 स्थान के मुकाबले में भारत को थाईलैंड के हाथों 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और 5वें सेट तक खींचा। अगर सेट स्कोर की बात करें तो 25-19, 17-25, 25-21, 17-25 और 15-17 रहा। भारत ने 2 सेट जीते, लेकिन निर्णायक 5वें सेट में करीबी अंतर से हार गया।
2: जी, और अगर हम यहाँ पे रिकर्व के मैचेस की बात करें, आर्चरी में रिकर्व के, तो भारत के नीरज चौहान और धीरज बम्मा देवारा आज आमने सामने आए फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच, एंड उसमें हमने देखा कि नीरज चौहान बीट हिज फेलो कंपैट्रियट इंडियन धीरज बम्मा देवारा 6-4 इन द मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ब्रॉन्ज मेडल मैच टू क्लेम द ब्रॉन्ज मेडल। जी हाँ, ब्रॉन्ज मेडल घर में वापस आ गया, ये कहना चाहिए घर ही में आ गया भारत के, क्योंकि दोनों भारतीय आर्चर्स हम

0: आमने सामने आज यहाँ पर थे। धीरज फिनिश फोर्थ आफ्टर सेमीफाइनल डिपीट टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक और गोल्ड गया साउथ कोरिया का नाम, सिल्वर रहा जापान के नाम, ब्रॉन्ज आया इसमें नीरज के नाम।
1: जी रग्बी की बात कर लेते हैं, भारत छठे स्थान पर एशियन गेम्स में रहा रग्बी में। रग्बी सेवंस टीम का अभियान जो महिलाओं का था छठे स्थान पर समाप्त हो गया। पांचवें और छठे स्थान के मुकाबले में भारत को कजाकिस्तान से 0-20 से हार का सामना करना पड़ा। पहले हाफ में कजाकिस्तान ने 10-0 की लीड ली थी, बढ़त बनाई थी, और दूसरे हाफ में भी 10 अंक जोड़कर मुकाबला 20-0 से अपने नाम कर लिया।
0: जी और अब भारत की एक बार मेडल टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अब इस जीत के बाद इस गोल्ड मेडल के साथ जो भारतीय क्रिकेट टीम मेंस क्रिकेट टीम T20 के अंदर हमारे लिए लेकर आज आई अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत की जो गोल्ड है गोल्ड मेडल्स वो अब 19 हो चुके हैं। हमसे ऊपर है उज्बेकिस्तान चौथे स्थान पर इस वक्त, जिनके पास 21 गोल्ड मेडल है। यानी भारत को अगर उज्बेकिस्तान के साथ टक्कर में आना है, उनको रिप्लेस करना है चौथे स्थान पर, तो कम से कम हमें उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड के बराबर तो आना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत इस समय 5वें स्थान पर कुल मिलाकर 81 मेडल्स कमा चुका है, जिसमें से ऑफ कोर्स एज आई सेड 19 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सो ओवरऑल सो फार अपॉलॉजीज ओवर देयर, 18 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज, व्हिच मेक्स इट 80 मेडल्स इन टोटल फॉर इंडिया। यानी भारत को इस वक्त चाहिए कि वो उज्बेकिस्तान के साथ अगर बराबरी करना चाहता है तो उनको कम से कम 3 मेडल और कमाने पड़ेंगे। अब देखना होगा कि किस तरह से आज का दिन समाप्त होता है भारत के लिए। उम्मीद करते हैं कि भारत चौथे स्थान पर इस एशियन गेम्स में अपना सफर समाप्त कर पाए। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दोपहर के 2:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे। और अब आप सुन रहे हैं वही अपना फेवरेट शो मेरा वाला सॉन्ग शाहिद के साथ। तो मैसेजेस बहुत सारे आ चुके हैं और मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं किस किस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँ और किस किस को मैं माफ़ी मांगूँ किस किस से। तो सबसे पहले मैं दिल्ली से सुल्तानपुरी से जो मैसेज कर रहे हैं सुरेश पाल जी, मैं उनसे उनका मैसेज जो भेजा था उन्होंने, मैं पढ़ना चाहूँगा उनका मैसेज। आपने कहा है कि आपका फेवरेट सॉन्ग, मैं कोशिश करने के बाद भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसके अलावा ये बंधन जो प्यार का बंधन जो सॉन्ग चलाया, नाइस सॉन्ग, गुड आफ्टरनून शाहिद जी, कैसे हैं। मैं जानती हूँ आप कपूर वाले शाहिद नहीं हैं, पर एक गाना शाहिद का बजना ही चाहिए। डॉली हैं ये जिन्होंने मैसेज किया, थैंक यू आपके मैसेज के लिए, मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ करूँगा। आदाब है सर जी, फिल्म का नाम यंगिस्तान, गाने के बोल सुनो ना संगे मरमर, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम, अलीगढ़ से। हाय शाहिद कैसे हैं, प्लीज सॉन्ग सुनवा दो, मूवी है बंटवारा का कौन लागे, क्योंकि आज जेपी दत्ता का बर्थडे है। आपका बहुत बहुत थैंक्स होगा फ्रॉम रिया दिल्ली, थैंक यू रिया आपके मैसेज के लिए। और मैसेज दरअसल आ चुका था पहले ही जो मैंने निकाला, कविता का देवभूमि उत्तराखंड से, तुमसे मिले दर्द उठा उठा दर्द करारा, फिल्म दम लगा के हिस्सा हमारा गाना भी प्ले करा दीजिए। कविता है देवभूमि उत्तराखंड से, और क्योंकि पहले मैसेज आ गया था तो मैंने वो आपके लिए मैं निकाल करके चलाता हूँ सॉन्ग, और बाकी भी मैं आपके मैसेजेस की रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आप सुनते रहें 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो है आपका अपना रेनबो प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, आप हैं शाहिद के साथ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

102.6 देशी नंबर 1 रेडियो, आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग शाहिद आपके साथ। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेजेस का। बहुत अच्छा एक मैसेज आया है हर्षित और इनाया का, वो कहते हैं नमस्ते। नमस्ते जी, हमारा केवल नाम लेना ही काफ़ी है, इससे हमें बहुत खुशी होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से मैसेज का। आप जानते हैं कि मैं सबके मैसेज तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सबके रिक्वेस्ट को शायद पूरा ना कर पाऊँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज है अफरोज शेख, पता नेमवाज, सुपौल बिहार। हर किसी के दिल में एक लड़की का ख्याल रहता है, हाँ मैंने भी प्यार किया। ये कौन सा गाना है? तुम दिल की धड़कन में रहते हो, नाना करते प्यार, फिल्म धड़कन। दिल आशिकाना मूवी का सॉन्ग, प्रोग्राम में आपका स्वागत। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से। शुभ दिन रेडियो मित्र जी, ओखला संगम विहार दिल्ली से। रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। और इनका कहना है सॉन्ग के लिए एनी सॉन्ग्स, थैंक यू। मैसेज काफी देर से आया हुआ था, अब मैं पढ़ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून आरजे, आई एम जी एस गिल फ्रॉम पटियाला। प्लीज प्ले लवली सॉन्ग, डांस नंबर जब कॉकटेल 2 से। ये एक सॉन्ग इन्होंने बोला है, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि आपका मैसेज मैंने पहले ही आ चुका था। थैंक्स होस्ट आरजे शाहिद पाजी, नाम तो आप बोल दिए हैं, टाइम मिले तो सॉन्ग भी ऑन एयर कर देना जी। जब वी मेट का सॉन्ग हम जो चलने लगे। प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से। प्रदीप जी आपका मैसेज मैंने पढ़ दिया था और आपका सॉन्ग भी मुझे मैंने, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग्स

भी ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट आ रही है उनके कोशिश कर रहा हूँ कि सबके बजा सकूँ, तो आपके लिए भी मैं कोशिश करूँगा, मैं आपसे पक्का वादा नहीं कर पाऊँगा आज। हेलो शाही सर, कैसे हैं आप? प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बाजी। और अफशा खानम फ्रॉम धामपुर इसके बिजनौर उत्तर प्रदेश से। चलें, आप सब लोगों के जो मैसेजेस हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी हमारे पास समय है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी मैं आपके रिक्वेस्ट को पढ़ सकूं, आपके मैसेजेस पढ़ के सॉन्ग भी प्ले कर सकूं। तो अभी फिलहाल एक सॉन्ग जिसका मैंने कहा कि मैसेज पहले आ गया था, मैंने पहले ही निकाल के रखा था, तो ये सॉन्ग आप करेंगे एंजॉय कॉकटेल टू से।

एक मैसेज आया, काफी नाराज से दिख रहे हैं, कहते हैं कि हमारा गीत ना सुनाते हो ना मैसेज शामिल करते हो। तो कोई बात नहीं सर, मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया और गीत भी कोशिश कर रहा हूं मैं आपके निकालने की। नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से मैसेज करने वाले हैं जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म अनोखेदा, हाल क्या है दिलों का। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ आपकी रिक्वेस्ट, आपका मैंने मैसेज भी ले लिया है। एक मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून सर जी, मैं नवलूवरक फ्रॉम गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से, आज मुझे एक गाना सुनवा दीजिए, फिल्म बॉर्डर, जाते हुए लम्हे जरा ठहरो।

0: और ये है मैसेज बहुत सारे हैं एक ऊपर एक, तो मैं सबको नहीं ट्रैक कर पा रहा, लेकिन जो मेरे सामने मैसेज, मैं नाम कम से कम पढ़ देता हूँ। ये है पिंटू दीवाना, मुन्नी, प्रिंस, ममता, बबलू, कश्यप, नवाब, अहमद, भारती, संजय, मलाकर, मंगोलपुरी से। चलिए, जो नाराज थे पहले उनके ही मैंने सॉन्ग निकाल दिया है, तो प्ले करते हैं अनोखे अदा का ये ट्रैक।
1: है दिलों का न पूछो सनम आपका।

सो फाइनली मैंने आपका ये फेवरेट सॉन्ग प्ले कर दिया है, मैसेज पढ़ दिया है और आपकी शिकायत दूर कर दी है। और भी एक मैसेज है जिनका मैसेज तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका, उन्होंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट भेजी थी इस छोटे से शो के जिसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो प्लेलिस्ट पॉसिबल नहीं, लेकिन मैंने आपका सॉन्ग निकाल लिया है और आपने जैसे कहा कि प्लेलिस्ट भी देख लेते, हमने देख ली प्लेलिस्ट आपकी। और इतना लंबा मैसेज था इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं बता दूं आपका मैसेज, जैसे आपने कहना चाहा कि गोवा में बारिश ना होने के कारण गर्मी बहुत बढ़ गई है, बहुत धन्यवाद आपने ये जानकारी सब तक पहुंचाई। सौरभ तिवारी प्रगति नगर हरदोई से उत्तर प्रदेश, अपना टैक्सी भाई मुझे मालूम है समय बहुत हो गया है, मेरा सॉन्ग नहीं चल पाएगा, बस मेरा नाम ही ले लीजिएगा, आपका नाम मैंने ले लिया है, आप सॉन्ग एंजॉय करें, जो भी हम यहाँ आपके ही साथी जो हमें मैसेज करें हमारे लिसनर्स, उन्हीं के ही हम सॉन्ग यहाँ पर चला रहे हैं। सर आपका मैसेज मैं ज़रूर अब ले लेता हूँ, पहले मैं शायद नहीं ले पाया। नमस्कार, नमस्कार आपको भी। आज मेरी बहन शिप्रा संगल का जन्मदिन है, उसे विश कर दीजिए और कोई भी सॉन्ग चला दीजिए। तुषार गुप्ता मोदीपुरम मेरठ से, हमसे ही नाराज़गी है शायद आपको, बिल्कुल कोई नाराज़गी किसी से भी नहीं हो सकती, आप हमारे बहुत ही बेशकीमत आप हमारे लिसनर्स हैं। और आपने जैसे कहा कोई भी सॉन्ग, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आपकी बहन शिप्रा संगल के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये सॉन्ग जिसकी रिक्वेस्ट आई थी पहले जो मैंने बताया, ये भी हम आपकी प्लेलिस्ट में से निकाल कर प्ले कर रहे हैं।

हमारी जान, हमारा दिल, सब आपके नाम, हमारे जो फेवरेट लिसनर्स हैं और जो हमें मैसेजेस करते हैं इतने प्यारे प्यारे, तो उनके लिए हमारी जान, हमारा दिल, सब कुर्बान। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। और मैं सबके मैसेज तो नहीं पढ़ पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन और कोशिश भी मैंने की कि मैक्सिमम पढ़ सकूँ और मैक्सिमम सॉन्ग्स भी आपके फेवरेट प्ले कर सकूँ। आज विविध भारती का 69 ईयर्स स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। सॉन्ग दिल का आलम, आशिकी, चंद्रपाल कश्यप हैं ये मंगलपुरी दिल्ली से। भारत विविध भारती का 69वां स्थापना दिवस, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और आपके सभी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए। और आपने मैसेज किए, हमें अपने फेवरेट सॉन्ग बताया, और एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा संयम भी रखें और बार बार अगर आप मैसेज करेंगे बैक टू बैक तो फिर वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, मैसेज चाह करके भी हम शायद पढ़ ना पाएं।

तो आपके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चलाए हुए आपकी पसंद के गाने पसंद आए होंगे। अब आ गई दीपिका भटनागर लेकर के प्रोग्राम आपका फेवरेट आशियाना। आप उनके साथ रहें, एंजॉय करें, और हम आपसे यहाँ मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। तो शायद साइन ऑफ नाउ, सुनते रहें रेनबो

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोपहर के 2 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने जापान एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान 6 विकेट पर 192 रन ही बना सका। एशियाई खेलों में प्रणवी उर्स ने गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कुमकुम मोहोद ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने व्यक्तिगत गोल्फ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने पर प्रणवी शरद उर्स को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 81 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है, जिसमें 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल है। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में कहा कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि बढ़ाकर इस महीने के 31 तारीख तक कर दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर यहाँ इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। आशियाना ये खूबसूरत सा नाम सुनकर ही कितना सुकून सा मिलता है ना। हम सभी जब थक हार कर अपने आशियाने में पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि दिन भर की थकान कहीं गुम हो गई है। आशियाने में रिश्ते होते हैं, रिश्तों में अपनापन होता है, और जब अपनापन मिलता है, जब अपने आसपास होते हैं, तो जो सुकून मिलता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। अब जब बात आशियाने की, रिश्ते की, अपनों की आई है, तो बातें तो बहुत सारी हो सकती है। बस इन्हीं बातों को ज़रा आगे बढ़ाएंगे, किस बारे में बात करूंगी बताऊंगी आपको। फिलहाल के लिए इस गाने के साथ

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका आपके साथ है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना। वेल, आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। और आज के इस वक्त में हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड वायरल होता रहता है। कई जो ट्रेंड्स जब सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल अच्छी बात है, या ये होना चाहिए, या इस पर पहले क्यों नहीं हमारा ध्यान गया। और कुछ ट्रेंड्स को देखकर लगता है कि ये तो बस यूं ही फिजूल है। ऐसा ही एक लव्ज आपने जरूर आजकल सुना होगा, वो है सेल्फ लव। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन हाँ, इसकी अहमियत पर बात करना शायद अब शुरू हुआ है। अब बहुत से लोगों को अभी भी ऐसा लगने लगा है कि ये सेल्फ लव सिर्फ एक ट्रेंड है। सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार करना, खुद को चाहना। अब सेल्फ लव का चलन आजकल बहुत बढ़ गया। आपको सोशल मीडिया पर अक्सर दिखता होगा, चूज योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, प्रोटेक्ट योर पीस, ऐसे सेंटेंसेस आपको कभी किसी पोस्ट के कैप्शन में दिख जाते होंगे, तो कभी कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आते होंगे। पर क्या सच में सेल्फ लव जरूरी है या फिर एक ट्रेंड है? अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं इस बात पर सभी के, और इसी बारे में आज यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आपसे बात। तो बस बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस गाने के बाद।

0: जी, चाहना, खुद को चाहना, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी में अपने अपनों को प्यार देना। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं जिस बात से मैंने बात शुरू की थी वो क्लियर कर देती हूँ कि सेल्फ लव कोई ट्रेंड नहीं है, सेल्फ लव ज़िंदगी की असली ज़रूरत है। अब खुद से प्यार करने का मतलब क्या है, चलिए ये समझ लेते हैं। तो देखिए, खुद से प्यार करना यानी कि जैसा हम अपने अपनों के लिए या जो हमारे करीब होते हैं उनके लिए करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कितना ख़ास महसूस करवाने की कोशिश करते हैं ना, कि उन्हें हमसे कोई शिकायत ना हो, उनकी पसंद का खाना बना दें, उनकी पसंद की जगह पर उन्हें ले जाएं, उनसे उनके दिल का हाल पूछें, उनसे उनकी बात करें। क्यों? क्योंकि हम उनसे करते हैं बहुत प्यार। ठीक उसी तरीके से करना चाहिए खुद से प्यार। पर खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अपनी पसंद का खाना खाना, अकेले घूमना या खुद को गिफ्ट देना नहीं है। और सेल्फ लव, कई बार लोग इसे इस तरीके से गलत समझ लेते हैं कि सेल्फ लव जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में बाकी किसी से प्यार ही मत कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, उन रिश्तों से आप जो प्यार करते हैं वो अपनी जगह है, पर ये सेल्फ लव जो है ना, इसकी भी एक बहुत खास जगह है। कैसे और क्यों कर रहे हैं इसी पे हम बातें। आकाशवाणी FM रेनबो पर प्रोग्राम है आशियाना, आपके साथ मैं हूं दीपिका।
1: सच

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: है चुलबुलापन जिसकी हर बात में, घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे,
2: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
1: पताका चाय गजब का स्वाद।
3: मंगल भवन मंगल हारी
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
8: ठीक है।
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप हैं दीपिका के साथ, और प्रोग्राम आप यहाँ इस वक्त सुन रहे हैं आशियाना।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 पर ताजा अपडेट के साथ। घड़ी की सुई में 2:30 बज गए हैं और आज की सबसे खास बात है कि गोल्ड मेडल की हैट्रिक लग गई है। जी हाँ, 3 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक जीत लिए हैं, लेकिन आने वाले 1 घंटे में कुछ और पदक भारत की झोली में आ जाएंगे। उसी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। कुश्ती के मुकाबले शुरू होंगे और अगले 1 घंटे में 3 बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। कुश्ती के मैट पर भारत का शानदार प्रदर्शन, जैसा मैंने बताया, जारी है। भारत के 4 पहलवान पदक की दौड़ में बने हैं, जिनमें से 2 पहलवान स्वर्ण पदक के लिए और 2 कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने सेमीफाइनल में तजाकिस्तान के आयाल बेलुस्की को 14-8 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब अमन के पास स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। अमन सहरावत का फाइनल मुकाबला DPR कोरिया के चांग सॉन्ग हान से होगा, जो पुरुषों के 57 किलोग्राम की वर्ल्ड रैंकिंग पर टॉप पर है। वहीं मौजूदा रैंकिंग अमन की बात करें 20 है। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम का जो भार वर्ग है, वहां अंतिम पंघाल शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल पहुंच गए। अंतिम की नजर अब स्वर्ण पदक पर होगी। सेमीफाइनल का मुकाबला अंतिम ने 6-1 से जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी, अब वह स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। अंतिम पंघाल जो विश्व रैंकिंग के पहले पायदान पर है, खिताबी मुकाबला उनका होगा, उनके सामने होंगी 19 नंबर की जो विश्व रैंकिंग है, जापान की क्वे का मोए, उनसे सामना होगा, जो 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट। हालांकि उन्होंने गोल्ड मेडल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। वहीं 2 और मेडल आने वाले जिनके बारे में बता दूं। दूसरी ओर 74 किलोग्राम में जो फ्री स्टाइल का मुकाबला सागर जगलान रिपेचेज मुकाबले में उज्बेकिस्तान के राजमबेक जमालबो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई। कांस्य पदक का मुकाबला कुछ देर बाद उनका शुरू होने वाला। जबकि 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया हालांकि सेमीफाइनल मुकाबले में हार गए थे, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मुकाबला जीतने का भी मौका। हालांकि सेमीफाइनल मुकाबला बेहद करीबी था, 8-9 से दीपक पुनिया को शिकस्त मिली थी। यानी अमन सहरावत, अंतिम पंघाल, इसके अलावा सागर जगलान और दीपक पुनिया, इन चारों से पदक की भारत को उम्मीद है।
3: जी, और अब बात कर लेते हैं कि आज का दिन भारत के नजरिए से कैसा रहा। तो सबसे पहले द बिग न्यूज ऑफ द डे दैट केम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। आपको याद दिला दें कि एशियन गेम्स 2026 में सबसे पहला स्वर्ण पदक हमारे लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर आई थी T20 के मैदान में। और अब आज आखिरी दिन पर द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट टीम हैज ऑल्सो डिफीटेड पाकिस्तान एंड वन आज द गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ हमारे एशियन गेम्स के उसमें कंटेंजेंट के अंदर, 2 गोल्ड लेकर आया भारत के। आपको बताएं कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करके टॉस जीता था, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्होंने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 211 बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स बाय इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा एट द टॉप। एंड देन लेटर पाकिस्तान जब उसको चेस करने आई तो 192 पर पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस कमिंग ओवर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस थैंक्स टू हसन नवाज हु वाज एबल टू मेक 96 इन 51 बॉल्स। उसमें हसन नवाज को 2 बार जीवन दान भी मिला, इसी वजह से पाकिस्तान शायद 192 तक पहुंच गया, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट ऑफ द नीडेड रन्स टू चेस द टारगेट। ओवरऑल अगर बात करें तो आज भारत का दिन किस तरीके से रहा। दिन की शुरुआत दोस्तों हमने देखी होती हुई गोल से। यहां पर प्रणवी उर्ज ने आज हिस्ट्री बना दी बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। ये 24 साल बाद हुआ था, क्योंकि इससे पहले गोल्ड गोल्फ में, अगर इंडिविजुअल गोल्फ में कभी आया था तो वो 2002 में था, जब शिव कपूर हमारे लिए वो गोल्ड लेकर आए थे। और उसके बाद हमने आर्चरी में देखा, अगेन हिस्ट्री गेटिंग क्रिएटेड टुडे, जहां पर कुमकुम महोद ने भी आज गोल्ड मेडल जीत कर हिस्ट्री बना दी आर्चरी के अंदर, जहां इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर ने आज एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड जीता। वहीं आर्चरी रिकर्व में भी आज हमने अपने नाम एक मेडल कर लिया। दैट मीन्स आर्चरी ओवरऑल बहुत अच्छा गया, बिकॉज नीरज चौहान वॉज फेस टू फेस विद ऑफकोर्स इंडियन धीरज, जो उनके सामने थे धीरज बुम्बा देवारा, एंड नीरज चौहान ने धीरज को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। सो ओवरऑल अ गुड डे फॉर द इंडियन आर्चर्स एंड डेफिनेटली अ गुड डे इफ यू लुक एट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया।

0: ऑल्सो शाहिद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एशियन गेम्स का क्या लास्ट डे है इंडियन पार्टिसिपेशन का?
1: जी बिल्कुल, लास्ट डे अभी कई मेडल आने बाकी है, कोई भी मुकाबला जीत सकता, कोई भी खिलाड़ी मुकाबला हार सकता, ऐसा ही एक मुकाबला हारी है एक खिलाड़ी फुजिनामी जो 9 साल तक लगातार अजेय थी, 9 साल तक कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी, 155 मुकाबला उन्होंने लगातार जीता था। 57 किलोग्राम वर्ग में उत्तर कोरिया की विश्व पदक जो रजत पदक विजेता खिलाड़ी है इल सिन सोन, उन्होंने उनके जो रथ का जो घोड़ा था लगातार अजय जो रथ पे सवार थी पिनफॉल करके उनको शिकस्त दी। आपको ये भी बता दूं इसी खिलाड़ी ने आज भारत की जो खिलाड़ी मनीषा उसको हराकर 155वीं जीत दर्ज की थी, लेकिन 156वीं जीत दर्ज नहीं कर पाए दोस्तों। और क्या कुछ घटित होता, क्या रिकॉर्ड्स बनते हैं आने वाले अगले घंटे में आपको बताएंगे जब हम आपसे मुखातिब होंगे 3:30 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो। आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना, और बातें हो रही हैं कि कितना ज़रूरी है सेल्फ लव। क्या ये ट्रेंड है या फिर ज़रूरी है, इस बात को देखिए। मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। और जैसे मैंने कहा था कि अक्सर सेल्फ लव को लोग इस तरीके से मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि इसका मतलब ये है कि बस अपने आप से प्यार कीजिए, किसी और से प्यार मत कीजिए। तो नहीं दोस्त, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं, वो करने की जगह आप खुद को भी तवज्जो दीजिए। दूसरों को खुश करते करते खुद को मत भूलिए। अपनी ज़रूरतों को सबसे आखिर में मत रखिए। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में अंतर भी होता है। क्या होता है बताऊँगी इस गाने के बाद।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है आपकी दोस्त दीपिका। प्रोग्राम है आशियाना, बातें हो रही हैं कितना जरूरी है ये सेल्फ लव, किस तरीके से कई बार हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं इसे, लेकिन असल में ये बहुत जरूरी है। पर यहाँ देखिए, एक चीज मैंने कही थी अभी कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर आप अगर अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, आपको देनी ही चाहिए, क्योंकि हम अक्सर दूसरों के बारे में सोचते हैं, बेशक वो दूसरे आपके अपने ही हैं, लेकिन जैसे आप उनके बारे में सोचते हैं वैसे कई बार अपने आप को भी सबसे ऊपर रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पर हर बार खुद को ही सबसे ऊपर रखना, हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरे को क्या फील हो रहा है क्या नहीं फील हो रहा है, उसे किस बात से खुशी मिल रही है या किस बात से सामने वाला नाराज हो रहा है, उसे किस बात से फर्क पड़ रहा है, इससे फर्क ही ना पड़ना, ये सेल्फिशनेस है। बहुत अंतर है दोनों में। सेल्फ लव जरूरी है, सेल्फिशनेस बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि होनी ही नहीं चाहिए। अपनी खुशी का ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे की खुशी की इम्पोर्टेंस समझना और ये समझना कि जैसे हम खुश रहना चाहते हैं वैसे उसकी भी खुशी बहुत ज़रूरी है, ये भी समझना है।

सेल्फ लव में जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? खुद को खुश रखने की कोशिश बेशक बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि हर दिन हम खुश नहीं रह पाते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, पर कभी ज़रूरत होती है खुद को वक्त देने की, अपनी गलतियों के बावजूद खुद को एक नया मौका देने की, हर किसी की उम्मीदों पर खरा ना उतरने पर भी खुद को दोषी ना मानने की, और कभी कभी बिना किसी वजह के खुद को आराम देने की, क्योंकि आप ये सब डिजर्व करते हैं और आपको ये सब समझना है और करना है अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए। अपने अपनों के लिए भी आप कुछ तभी ही कर पाएंगे जब आप अंदर से खुश होंगे। आकाशवाणी FM रेनबो, दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं आशियाना, या यूं कहूं प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे थे आशियाना, क्योंकि अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते एक बार फिर से वही कहूंगी जहां से की थी शुरुआत, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। प्यार बांटिए, प्यार कीजिए, रिश्ते निभाइए, लेकिन इस सब के बीच खुद को प्यार करना, खुद को वक्त देना, खुद की ज़रूरतों को ख्याल रखना भी बिल्कुल सेल्फिश होना नहीं है बल्कि बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात के साथ दीपिका इस शो में आपसे इजाज़त ले रही है, पर 4 बजे आपके साथ दोबारा मैं जुड़ूंगी। 3 बजे यहां आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तो दीपिका को दीजिए इजाज़त।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, जहां सेहत से जुड़ी हर उलझन का मिलता है सटीक समाधान। आज इस कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं मैं, आपकी रेडियो दोस्त काजल। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। और आज के हमारे इस खास फोन इन प्रोग्राम का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है। आज के इस खास विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, जो नई दिल्ली के RML अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स विभाग में प्रोफेसर कंसल्टेंट और हेड हैं। डॉक्टर राहुल, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें आपसे आज जानेंगे हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: तो चलिए शुरू करते हैं सेहत का सफर कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, यानी हड्डियों के बेहतर पोषण के लिए क्या करें। हड्डियां हमारे शरीर का ढांचा बनाती हैं, जिससे हम सीधे खड़े हो पाते हैं। तो जब हड्डी शरीर में इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। तो डॉक्टर, आपसे सबसे पहले ये जानेंगे कि हड्डियों की मजबूती के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल्स क्या हैं?
2: बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और ये बहुत ही जरूरी है हम सबको जानना, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट चीज होती है हड्डियां हमारे शरीर के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है उनका न्यूट्रिशन, अगर हड्डियों को न्यूट्रिशन ही नहीं पहुंचेगा, हड्डियों तक ताकत ही नहीं पहुंचेगी, तो हड्डियां मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए न्यूट्रिशन, जिसके बारे में हम आगे और ज्यादा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, और अगर कोई भी अगर आपको तकलीफ होती है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, अभी तुरंत एक मैसेज भी आ गया है, जिसमें एक श्रोता है हमारे जो पूछ रहे हैं कि हेलो डॉक्टर राहुल, आई वांट टू फाइंड आउट हाउ शुड आई टेक केयर ऑफ माय बोन्स सिंस आई एम मेनोपॉजल एंड आई एम ए थायराइड पेशेंट एज वेल।
2: जी हाँ, इन्होंने लिखा है इन महिला ने कि मेनोपॉजल है और थायराइड की बीमारी है।
1: जी, जी।
2: तो जब हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं, तो उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, और एक बुढ़ापे में जाके जब हड्डियां महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की कमजोर हो जाती हैं। तो इनको, क्योंकि मेनोपॉज अगर हो गया है और थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो मेनोपॉज में, जब मेनोपॉज होता है महिलाओं में, तो जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी होने के कारण की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है, और जब हड्डियों में से कैल्शियम निकलने लग जाता है तो धीरे धीरे करके हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, और इसी को पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। थायराइड की अगर पेशेंट है, तो उसमें भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो उससे भी हड्डियों पे और जोड़ों पे प्रभाव पड़ता है। अगर वजन बढ़ जाएगा तो जोड़ों पे प्रभाव पड़ेगा, आगे जाके जोड़ जल्दी खराब हो जाएंगे। तो इनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी बोन्स का ध्यान रखें, अगर मेनोपॉज हो गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिले और अपना चेकअप कराएं अगर कोई भी प्रॉब्लम है। तो भी अगर नहीं है तो भी एक बार जरूर जाके क्या खाना पीना है और क्या टेस्ट अभी वो करवा सकती हैं इस उम्र में, ताकि आगे जाके उनको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो।
1: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, आप कौन हैं बताइए, अपना नाम बताएं।
3: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं ग्राम नंगोला आपूर्ति से बात कर रहा हूँ।
1: जी नमस्कार, आपका सवाल
3: मेरा है। मेरा सवाल ये है कि हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए अपने खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए।
2: अमित जी, आपकी उम्र कितनी है?
3: सर, मेरी उम्र

0: साल है।
1: 36 साल की उम्र है, ठीक है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी इस समय आपके लिए है कि आप खान पान, आपने पूछा है हड्डियों के लिए, तो आपको कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे हड्डियों के लिए। और कैल्शियम, अगर आप, सभी को पता है कि मिल्क, अनमिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, केले, अंडे, इन सब चीजों से आपको कैल्शियम खूब अच्छी मात्रा में मिल जाता है। विटामिन डी आपको थोड़ा कम मिलता है, सी फूड वगैरह में मिलता है, अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन है तो मिल सकता है, नहीं तो प्राकृतिक रूप में सनलाइट एक्सपोजर से हमें विटामिन डी हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, हमारी स्किन बना लेती है, तो वो वहां से मिल जाता है। और प्रोटीन्स के लिए आपको अपने खाने में, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आसान है, अगर वेजिटेरियन है तो भी आप खूब सारी दालें, सोयाबीन, इन सब चीजों की, मिलेट्स, इन सब चीजों की अगर खाने में प्रयोग करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी।
2: सर, व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है पारुल का, जो गुड़गांव से हैं और पूछ रही हैं कि आई वांट टू नो व्हाट डाइट एंड व्हाट प्रिकॉशंस शुड वुमेन इन देयर 50s शुड टेक।
1: ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि महिलाएं 50 साल की उम्र में होती हैं तो मेनोपॉज या तो शुरू हो गया होता है या चल रहा होता है, तो इस उम्र में बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे पहले भी मैंने बताया, कि इनको अपना प्राइमरीली एक विटामिन डी का टेस्ट करा लेना चाहिए, एक बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, और इनको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए खूब। अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी का एक्सपोजर अगर कम है तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और प्रोटीन बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ी सी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सिर्फ टहलना, वॉकिंग इज नॉट सफिशियंट। अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको अपनी मसल्स भी मजबूत करनी पड़ेंगी, और वो सिर्फ आपको थोड़ा मसल्स को स्ट्रेस देकर ही हो पाता है। तो वेट बेयरिंग, थोड़ा हल्के फुल्के वेट से शुरुआत कर सकते हैं, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करने से मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, तो इन टर्न हड्डियां भी स्ट्रांग हो जाएंगी।
2: ओ डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बात बताई, और क्यों ना एक गाना सुन लें।
1: जी हाँ, बिल्कुल।

0: डॉक्टर साहब, गाना आपको कैसा लगा?
1: बहुत ही बढ़िया गाना था।
0: तो आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जिसमें आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशन, और आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आया है, ये आयुष है अशोकनगर दिल्ली से, पूछ रहे हैं कि विटामिन डी इंडिया के लोगों की कितनी होनी चाहिए और इसके वैल्यूज क्षेत्र पर डिपेंड करते हैं क्या, और बोन्स डेंसिटी का पता कैसे लगाया जाए।
1: विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होती है तो वो हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। हम चाहे जितना मर्जी कैल्शियम रिच डाइट ले लें या हम कैल्शियम की टैबलेट्स खा लें, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी होगी तो वो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। तो इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो अलग अलग लैब्स के अलग अलग वैल्यूज होती हैं। कुछ लैब्स में 30 से ज्यादा हो तो नॉर्मल होता है, कुछ लैब्स में 75 से ज्यादा हो तो नॉर्मल होता है। तो वो अलग अलग लैब्स पे अलग अलग तरीकों से जिससे वो टेस्ट करते हैं उस पे निर्भर करता है। और इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट होता है, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन। ये एक एक्सरे के प्रकार का टेस्ट होता है जिससे कि हड्डी कितनी मजबूत है उसका हमें अंदाजा हो जाता है। एक्सरे जितना रेडिएशन नहीं होता है, बहुत कम होता है, और ये बहुत जरूरी टेस्ट होता है, ना कि सिर्फ जानने के लिए कि हड्डियां नॉर्मल हैं या थोड़ी सी कमजोर हैं या बहुत ज्यादा कमजोर हैं, बल्कि ऑल्सो जिन लोगों का हम हड्डियां कमजोर होने का इलाज कर रहे होते हैं उनका हर साल हम ये टेस्ट करा के देख सकते हैं कि हमारे इलाज से क्या हड्डियां, उन जो बीएमडी डेक्सा स्कैन में का जो स्कोर है वो बेटर हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिससे कि बहुत आसानी से हो जाता है, 5 मिनट में हो जाता है और हड्डियों की मजबूती के बारे में पता चल जाता है।
0: एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: जी, मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: अच्छा जी, अपना सवाल पूछें।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: पर मेरा पूछना ये है कि जैसे आपने विटामिन डी की अभी बात भी की है, तो सर्दी के मौसम में विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसको लेने के लिए क्या करें, मेडिसिन लें या क्या करें?
1: जी आपने बिल्कुल सही बताया, बारिश के मौसम में और सर्दियों में जब धूप बहुत ज्यादा नहीं होती है, बादल रहते हैं या सर्दी रहती है, तो सनलाइट ही नहीं होगी तो हमारे स्किन कैसे बनाएगी विटामिन डी को? तो उसके लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी का टेस्ट करें। खून की जांच से पता चल जाता है कि विटामिन डी आपका कितना है, कम है या नॉर्मल है या ज्यादा है। ज्यादातर लोगों का अर्बन पॉपुलेशन में शहरों में कम ही होता है, करीब 80-90% लोगों का कम पाया जाता है, क्योंकि हम लोग कभी धूप में जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो सिर्फ सर और चेहरा और गर्दन और हाथ एक्सपोज होते हैं, बाकी सब कपड़ों से ढके रहते हैं। रूरल पॉपुलेशन में लोग खेतों में काम करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती रहती है तो विटामिन डी भी बनता रहता है। तो सर्दियों में अगर आपने टेस्ट करा लिया है और आपका विटामिन डी कम पाया गया है तो बहुत ही आसान है। आजकल बहुत सप्लीमेंट्स आ गए हैं जो कि टैबलेट के फॉर्म में भी हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी हैं, सिरप्स भी आते हैं और इंजेक्शंस भी आते हैं। तो वो आराम से अगर हम एक कैप्सूल भी विटामिन डी की 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स की हफ्ते में एक बार लेंगे 2 महीने के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे विटामिन डी आ जाता है, और उसके बाद महीने में एक बार अगर हम लेते रहेंगे उसको तो वो मेंटेन रहता है।
0: सर, एक श्रोता हमसे व्हाट्सएप से जुड़ रहे हैं जिनका नाम रविंदर पाठक और आशा पाठक है। ये नीदरलैंड से पूछ रहे हैं कि बोन में कटकट की आवाज आती है, इसकी क्या वजह है? ये अपने पति के लिए पूछ रही है क्योंकि उम्र

0: 65 ईयर्स है, 65-65 साल की उम्र में अगर जोड़ों में से आवाज आ रही है, खासकर घुटनों में, तो वो आर्थराइटिस की तरफ ले जाता है हमें कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही होगी, क्योंकि जब जोड़ का कार्टिलेज अंदर खराब हो जाता है, वो रफ हो जाता है, अनइवन सरफेसेस हो जाते हैं, तो काफी फ्रिक्शन होता है और अंदर जो स्मूथनेस होती है वो चली जाती है, तो जो मूवमेंट होते हैं उससे आवाज आती है, जो कि सुनाई चाहे ना दे, लेकिन अगर जोड़ के ऊपर हाथ रख के हम मूवमेंट करें तो फील जरूर होती है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में क्रेपिटस बोलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनको उम्र की वजह से जो अर्थराइटिस हो रही है वही हो रही है।
1: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति, अपना नाम बताएं।
2: दीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, अपना सवाल पूछे।
2: हाँ, मेरा पूछना है कि ऑस्टियोमेलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
0: आपने पूछा ऑस्टियोमेलाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में अंतर, दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस पे तो हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे हैं, जो कि हड्डियों का कमजोर होना होता है, उसके कारण भी हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस भी अभी डिस्कस किया है। ऑस्टियोमेलाइटिस जो है, जो आपने पूछा है, वो बोन के इन्फेक्शन को बोलते हैं। अगर हड्डी में इन्फेक्शन हो जाए किसी वजह से तो उसको हम लोग ऑस्टियोमेलाइटिस बोलते हैं। और हड्डियों का जो कमजोर होना होता है, चाहे मेनोपॉज के बाद हो महिलाओं में या ओल्ड एज में दोनों महिलाओं और पुरुषों में हो, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं।
1: सर, जैसे कि अभी हम धूप की बात कर रहे थे, तो हम अक्सर सुनते हैं कि बिना विटामिन डी के शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं कर पाता। कहा जाता है कि धूप से विटामिन डी ले, तो इसका सही समय और तरीका क्या होता है?
0: हाँ, आजकल इंडिया में अगर धूप आ रही है और तो सबसे जो सही समय है वो 11 बजे से 1 बजे या 11 बजे से 2 बजे का बीच का समय होता है, जिसमें कि अगर आधा घंटा भी, इस ड्यूरेशन के बीच में आधा घंटा भी कोई अगर बाहर धूप मिल जाती है स्किन को, तो वो उस दिन के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बना लेता है। ये रोज करना पड़ेगा, रोज पर डे के हिसाब से ही बनती है। शरीर हमारा ज्यादा नहीं बना लेगा कि कल के लिए भी बना ले, परसों के लिए भी बना ले, ऐसा नहीं होता है। वो उस दिन के लिए जितनी जरूरत है उतनी बना लेगा स्किन। तो ऐसा फिर रोज किसी को करना पड़ेगा कि रोज आधे घंटे स्किन धूप का एक्सपोजर हो, तो ही आपकी रोज के रोज विटामिन डी बनता रहेगा।
1: जी, एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं।
3: जी, मेरा नाम ओम कुमार है। मैम जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी कॉल स्वीकार करी है।
1: शुक्रिया आपका। अपना सवाल पूछें।
3: जी डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी, मैं कहना चाह रहा था कि जब मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरे जो हाथों पैरों की हड्डी है इनमें दर्द रहता है जी। तो जैसे कि मतलब घूमने जाता हूँ तो पैर जो घुटने हैं उनमें दर्द हो जाता है थोड़ी दूर चलने में, तो इसका कोई उपाय बताइए जी।
0: आपकी उम्र कितनी है?
3: जी 14 है।
0: 14? 14 साल के हैं आप?
3: जी जी।
0: 14 साल में आपको अगर सुबह उठकर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। और आपके ये जोड़ का दर्द थोड़े समय के बाद ठीक हो जाता है क्या, कुछ घंटों के बाद?
3: मतलब हाँ, जैसे कुछ सिकाई विकाई करते हैं या वैसे पेन नहीं आते हैं।
0: तो आपके जो लक्षण हैं ये हम बिल्कुल
3: टिप, घर में घूमता हूँ वैसे जब तो सही रहता है, लेकिन जब बाहर ज्यादा दूर के लिए चलता हूँ तो जब होता है।
0: हाँ जी, तो देखिए ये जो लक्षण आपके हैं इतनी कम उम्र में ना, ये एक बीमारी होती है जिसको जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। आपको ये हो सकती है, आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिले और वो आपके कुछ टेस्ट होंगे, खून की जांचें होंगी, और उससे फिर वो कंफर्म होगा कि आपको वो बीमारी है कि नहीं है।
1: सर, जैसे कि इनकी उम्र 14 साल बता रहे हैं और इन्हें दिक्कत है, तो हड्डियों के लिए बचपन से ही किस तरह के खान पान पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये हमेशा मजबूत रहें, इन्हें बेहतर पोषण मिले?
0: हम लोग के ह्यूमन बीइंग्स में जो हड्डियां होती हैं ये बचपन से लेकर करीब 22-25 साल तक की उम्र तक एक पीक बोन मास तक पहुंचती हैं। जो हड्डियां धीरे धीरे लंबे होते हैं, लड़के जो होते हैं 18 साल की उम्र तक ग्रोथ होती है, लड़कियों की 16 साल की उम्र तक होती है, तो हड्डियां लंबी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो पीक बोन मास पहुंचता है किसी का, वो करीब करीब 22-25 साल की उम्र तक का पहुंचता है। तो ये शुरू का जो पीरियड है बचपन का और यंग एज का, 25 साल से पहले का, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें हम अपनी बोन्स को मजबूत कर रहे हैं। जितनी हम एक तरीके से हम अपनी तिजोरी में पैसा जमा कर रहे हैं, जो कि आगे की उम्र में वही खर्च होता रहे, रहेगा धीरे धीरे, तो इसलिए जितना ज्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना ज्यादा आपकी हड्डियां देर से जाके कमजोर होंगी, उतना ज्यादा वो चलेगा।

0: तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है बचपन में, खासकर आजकल, क्योंकि बच्चे आजकल के सब फोन पे खेलते रहते हैं या टीवी में गेम्स खेलते रहते हैं या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। जो हम लोग के बचपन में जैसे हम लोग बाहर जाके खेलते थे, धूप में खेलते थे, आउटडोर स्पोर्ट्स आजकल बहुत कम हो गए हैं, बच्चे खेलते नहीं हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है उनका खेलना, उनको पेरेंट्स को उनको घर में नहीं बिठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई बाहर जाके खेलो, धूप में खेलो, कोई बात नहीं, धूप में खेलेंगे, जितना दौड़ेंगे कूदेंगे उतनी उनकी मसल्स स्ट्रांग होंगी, बोन्स मसल स्टिमुलेट होंगी, बोन्स स्टिमुलेट होंगे ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जितना ज्यादा कैल्शियम और प्रोटीन पहुंचेगा डाइट में, दूध दही पनीर, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडे, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोटीन्स देना, कैल्शियम देना, और ऑल्सो टू मॉनिटर कि उनका वाइटामिन डी तो नहीं कम है। अगर धूप में खेलेंगे तो वैसे ही कम नहीं होगा, धूप में बनता ही रहेगा उनका वाइटामिन डी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग खूब खेलें, खूब अच्छा खाए पिए, कैल्शियम और प्रोटीन से रिच खाना पीना खाएं। इससे क्या होगा कि उनकी पीक बोन मास बहुत अच्छी रहेगी, और आगे की उम्र में जब उनका मिडिल एज होगा या ओल्ड एज होगा तो उनको ये हड्डियां कमजोर होने की समस्या नहीं होगी।
1: जी, तो बचपन में बहुत ज्यादा ध्यान देने
0: बहुत ही
1: की
0: ज्यादा जरूरी है।
1: सर, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम कहते हैं सबसे जरूरी है, तो एक सामान्य वयस्क को, एडल्ट को, रोजाना कितने कैल्शियम की जरूरत होती है और इसके बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत क्या हैं?
0: प्राकृतिक स्रोत तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है, मिलेट्स जैसे रागी है इसमें बहुत होता है, मखाने हैं इनमें बहुत होता है, फ्रूट्स में होता है जैसे केला है इसमें, और नॉन वेजिटेरियन फूड में भी होता है कैल्शियम। तो ये तो बहुत जरूरी है। अब सब निर्भर करता है कि वो अगर ग्रोइंग एज है तो थोड़ा ज्यादा बच्चों को दूध ज्यादा देना चाहिए, 2-3 ग्लास तो कम से कम रोज के दिन पीने ही चाहिए, 500 मिलीग्राम ऑन एन एवरेज है जो कि रोज हम लोग को लेना ही चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या डिलीवरी के बाद लैक्टेटिंग मदर है तो उनको 1000-1500 मिलीग्राम तक भी रोज हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं।
1: जी, एक सवाल पूछ रहे, केडी त्रिपाठी हैं ये, इनकी उम्र 76 ईयर्स है, ये रांची से पूछ रहे हैं कि व्हाट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम इज बेटर फॉर मी, सम डॉक्टर से कैल्शियम कार्बोनेट, सम से कैल्शियम सल्फेट।
0: कैल्शियम एक्चुअली कई आते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी आता है, कैल्शियम साइट्रेट भी आता है, कुछ लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट सूट करता है, कुछ लोगों को साइट्रेट सूट करता है, बट कैल्शियम साइट्रेट जो है वो बेहतर माना जाता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन बेटर है।
1: जी, और ये एक और सवाल है, ये पूछ रही हैं, 6 महीने इन्होंने अभी, लैक्टेटिंग मदर है ये, बच्चे को दूध पिला रही हैं, 6 महीने का इनका बच्चा है, तो ये इनका पूछना है कि मैं अपना दूध पिलाती हूँ तो क्या उन बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे? ये नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार से पूछ रहे हैं कि अगर कोई प्रसूता अगर 6 महीने अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और नौकरी पेशा महिलाओं को क्या सलाह आप देंगे?
0: तो अगर ये महिला अपना दूध पिला रही है, जो कि हर महिला पिलाती ही है, तो ये बहुत जरूरी है। आजकल एंटीनेटल क्लिनिक्स में भी जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनको विटामिन डी तब से शुरू कर दिया जाता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी शुरू कर दिए जाते हैं, और ये सिर्फ तभी के लिए नहीं है कि जब तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए, डिलीवरी के बाद भी ये बहुत जरूरी है कि मदर को भी और चाइल्ड को भी, दोनों को ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद भी विटामिन डी के ड्रॉप्स लेने चाहिए, और महिला को भी अपना कैल्शियम का बढ़ाना पड़ेगा सप्लीमेंट, क्योंकि उनके शरीर को शुरू में तो बच्चे को बनाना था तो ज्यादा चाहिए था, और अब क्योंकि वो लैक्टेशन है, वो दूध पिला रही है बच्चे को, तो उस वजह से भी उनको कैल्शियम की जरूरत ज्यादा है।
1: डॉक्टर साहब, एक गाना सुन ले।
0: हाँ जी, हाँ बिल्कुल।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवार। बेहद शानदार अमन सहरावत ने प्रदर्शन किया, ओलंपिक मेडलिस्ट ने आज क्या कमाल की कुश्ती लड़ी है। पीछे होते हैं, आगे होते हैं, इस तरह से लगातार उठा पटक के बाद ये फाइनल मुकाबला गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आया। 57 किलोग्राम की कुश्ती थी। अमन सहरावत ने एशियन गेम्स के जो आज का फाइनल मुकाबला था शानदार स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की फ्री स्टाइल की 57 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल की शुरुआत अमन के पक्ष में रही, उन्होंने मुकाबले में 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन विश्व चैंपियन हान चोंग सोंग ने जोरदार वापसी की और स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया। मुकाबला जो था निर्णायक मोड़ तक पहुंचा और आखिरी मिनट में अमन पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहीं पर अमन ने अपनी असली ताकत दिखाई। मुकाबले में करीब 1 मिनट बाकी रहते ही उन्होंने शानदार टेकडाउन लगाया, चोंग सोंग को नीचे गिराकर अंक हासिल किया और देखते ही देखते स्कोर 11-7 पहुंच गया। इसके बाद अमन ने अपनी बढ़त कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इससे पहले अमन का दिन सिर्फ फाइनल तक पहुंचना ही नहीं था, उन्होंने जो आज मुकाबले जीते वो कमाल के मुकाबले थे। उन्होंने इससे पहले जापान के यामातो ओगावा को 20-9 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया और क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के नुरदाद एतानोव को 12-1 से मात दी। सेमीफाइनल में अमन ने जबरदस्त वापसी की और ताजिकिस्तान के एयाल बोलेस्वेस्की के खिलाफ राउंड में जो पहला राउंड था 2-6 से पीछे होने के बावजूद उन्होंने अगले राउंड में 12 अंक बटोरते हुए 14-8 से जीत दर्ज कर ली। और आज का मुकाबला क्या शानदार मुकाबला था। यहां पर अमन ने दिखाया क्यों ओलंपिक मेडलिस्ट, अमन ने दिखाया क्यों वो चैंपियन की कुश्ती लड़ते हैं, क्यों एक चैंपियन पहलवान है। क्योंकि पीछे जब होते हैं वहां से चिंता की लकीर जरूर कोच के चेहरे पर थी, चिंता की लकीर भारतीय दर्शकों पर थी, लेकिन जब वापसी करते हैं तो बैक टू बैक पॉइंट हासिल करते हुए मुकाबले को जीत लेते हैं और भारत के जो झोली है उसको स्वर्ण पदक एक और झोली डाल देते हैं, भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 20 तक पहुंचा देते हैं। साक्षी
1: जी शाहिद, थैंक यू सो मच एंड वी गिव यू अ क्विक अपडेट आल्सो नाउ एज टू हाउ हैज द डे बीन सो फार फॉर इंडिया एंड ऑफ कोर्स जो आज के दिन में अब घटित होने वाला है द इंपॉर्टेंट बिग गेम कमिंग अप इन हॉकी, जहां हम देखेंगे इंडिया इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट मलेशिया इन द गोल्ड मेडल मैच। में बात कर रही हूं भारतीय मेन हॉकी फाइनल मैच का। आपको याद दिला दे कल भारतीय महिलाओं ने डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना को 44 साल बाद इनफैक्ट कल हरा कर 44 साल बाद भारत को एक बार फिर से गोल्ड मेडल दिलवा दिया एशियन गेम्स के मैदान में। और आज उम्मीद करेंगे कि भारतीय मेन मलेशिया को हराकर वो गोल्ड हॉकी में भारत के नाम करवाए। अ क्विक रैप एट हाउ द डे वेंट सो फार फॉर इंडिया आल्सो वी विल हैव अ लुक। सो फार इट्स बीन अ वेरी एक्शन पैक्ड डे फ्रॉम एन इंडियन एंगल। इन आर्चरी 17-year-old कुमकुम मोहत प्रोड्यूस्ड रिमार्केबल परफॉर्मेंस टू विन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व गोल्ड मेडल। हर विक्ट्री मार्क्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द वुमेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। एंड हम इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि इंडिया आल्सो सिक्योर्ड अनदर आर्चरी मेडल इन द मेन्स इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट। नीरज चौहान डिफीटेड कंपैट्रियट धीरज बम्बा देवरा 6-4 इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच आफ्टर बोथ इंडियंस हैड फॉलन शॉर्ट इन द रिस्पेक्टिव सेमीफाइनल्स। धीरज हैड अर्लियर लॉस्ट 3-7 टू साउथ कोरियाज ली वुसियोक व्हाइल नीरज वेंट डाउन 1-7 अगेंस्ट जापान्स जूनियर नाकानिशी। और फाइनली दो भारतीय आर्चर्स आमने सामने आए जिसमें बाजी मार गए नीरज अपने पक्ष में और उन्होंने वहां से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। गोल्फ में भी एक हिस्टोरिक मोमेंट आया जहां प्रणवी उर्ज वन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले गोल्ड मेडल। शी फिनिश्ड द 4-round कॉम्पिटिशन एट 15 under par 1 stroke ahead of China's Jin Ruong and Singapore's Shannon Tan. And finally, जैसे अभी आपको शाहिद ने रेसलिंग के बारे में बताया, क्रिकेट के अंदर आज हमने स्वर्ण पदक हासिल किया है पाकिस्तान को हरा कर ओवरऑल इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, बोथ द इंडियन वुमेन एंड मेंस टीम गेटिंग अस द गोल्ड इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026।
0: एक और कुश्ती का नतीजा सामने आया, हालांकि कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं रहा है। भारत के सागर जगलान को पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के नुरकोस कैपनाओ के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ सागर का एशियन गेम्स में जो अभियान था चौथे स्थान पर समाप्त होगा। यहां उम्मीद की जा रही थी कि सागर जगलान भारत के पदकों की जो संख्या वहां इजाफा करेंगे, लेकिन अभी दो कुश्ती बाकी है, अंतिम पंघाल की कुश्ती बाकी, दीपक पुनिया की कुश्ती बाकी। यहां उम्मीद करेंगे कम से कम यहां पर अंतिम पंघाल जो खिताबी मुकाबला लड़ेंगी, स्वर्ण पदक का मुकाबला लड़ेंगी, वहां उम्मीद है वो एक और स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। वहीं दीपक पुनिया कांस्य पदक का मुकाबला लड़ेंगे, उम्मीद करेंगे वहां भी वो कामयाब हों।
1: जी एंड बिफोर वी रैप अप, आई क्विकली गिविंग यू अ मेडल टेबल काउंट आल्सो। भारत इस समय 5वें स्थान स्थान पर है। कुल मिलाकर 82 मेडल्स, 20 गोल्ड, 26 सिल्वर, 36 ब्रॉन्ज के साथ भारत और मलेशिया का गोल्ड मेडल का मुकाबला हॉकी में अब शुरू होने जा रहा है। देखेंगे अगर यहां से भारत जीता तो एक और गोल्ड भारत के नाम होगा एंड वी स्टैंड टाइड इन दैट केस विद उज्बेकिस्तान। लेकिन उसके लिए हमें 70 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी देखने के लिए कि क्या भारत ये स्वर्ण मेडल जीतता है इस मुकाबले में कि नहीं। फिलहाल के लिए मुझे साक्षी मांडवाल और मेरे साथ मोहम्मद शाहिद आजमी को दीजिए इजाजत। हम आपके साथ जुड़ेंगे 1 घंटे बाद 4:30 विद द लाइव अपडेट्स वंस अगेन।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 अपडेट्स।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज का विषय है बोन्स एंड न्यूट्रिशंस और इस विषय पर आज आप सबके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर राहुल आपसे जानना चाहेंगे कि बढ़ती उम्र में घुटनों के दर्द या जोड़ों के दर्द की शिकायत आम है तो आहार में ऐसा क्या शामिल करें जो जोड़ों के कार्टिलेज को बनाए रखने में हमारी मदद करे।
5: जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारा जो हड्डियों के आखिर में जो एंड में जो चीज होती है वो कार्टिलेज होती है तो दो हड्डियां कार्टिलेज के साथ ही एक जोड़ बनाती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कार्टिलेज में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हम जिंदगी भर उस पे चलते हैं घुटनों पे तो कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। अगर किसी को बचपन में कोई या यंग एज टाइम पे घुटने की कोई चोट लग गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो तो जोड़ और जल्दी खराब हो जाता है उनका कार्टिलेज। तो अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि खान पान कैसे रहना चाहिए और एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, इसके अलावा अगर खासकर कार्टिलेज की बात करें तो इसके लिए हम लोग को जो चाहिए होता है वो होता है कोलेजन। कोलेजन से ही कार्टिलेज बनता है तो अगर कोलेजन का ही अगर आपको खान पान ज्यादा चाहिए तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड में फिशेज में बहुत कोलेजन पाया जाता है, खासकर सी फूड में, सी फिशेज में और सी के जो अंदर के प्लांट्स होते हैं उनमें भी बहुत कोलेजन होता है। वेजिटेरियंस के लिए कोलेजन जो वेजिटेरियन टाइप का कोलेजन होता है वो उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता है तो उसके लिए वो लोग आजकल कोलेजन सप्लीमेंट्स आ गए हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। इस सिर्फ कोलेजन ही लेने से कार्टिलेज आपका ठीक नहीं रहता। मैं तो अभी भी कहूंगा कि जो एक्सरसाइजेज हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो बहुत ज्यादा कामयाब होती हैं। उससे काफी हद तक आपके जो बदलाव आ रहे हैं घुटनों में, कार्टिलेज खराब हो रहे हैं, वो थोड़ा टल सकता है।
3: एक सवाल व्हाट्सएप पर अनूप कुमार पूछ रहे हैं रांची से। इनकी उम्र 54 साल है और ये 37 साल से बीपी शुगर के पेशेंट हैं और ये पूछ रहे हैं कि स्टिफनेस इन बोन्स, फाइंड डिफिकल्टीज वॉकिंग, तो ये पूछ रहे हैं प्लीज टेल रिलीफ प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस और इवन क्योर।
5: 54 साल की उम्र है और अगर इतने सालों से इनको ये बीमारियां हैं और अभी बता रहे हैं कि उनको स्टिफनेस आ रही है जोड़ों में और उनको दर्द भी रहता है तो इसका मतलब कि इनको आर्थराइटिस जो है थोड़ी सी जल्दी आ रही है। इतनी कम उम्र में तो नहीं आनी चाहिए बट अगर आ रही है तो वो आर्थराइटिस जरूर हो सकती है। ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिले, वो देखेंगे कि कहाँ पे दर्द है, कैसा दर्द है, किस वजह से दर्द है, कुछ एक्सरे उनके कराने पड़ सकते हैं जिससे कि पता चल जाएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस किस स्टेज की है और उसका इलाज शुरुआत में ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज में एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो देते हैं जो कार्टिलेज को खराब होने से रोकती हैं जैसे कि हमने भी बात करी कोलेजन वगैरह की और कुछ कुछ चीजें उनको मॉडिफाई करनी पड़ेंगी कि सीढ़ियां अवॉइड करें, जमीन पे बैठना अवॉइड करें, इंडियन टाइप बाथरूम यूज करना बंद कर दें या कम कर दें और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है सिम्टम्स बढ़ते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कुछ घुटनों में, अंदर जोड़ों में इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं चाहे स्टेरॉइड का हो चाहे विस्को सप्लीमेंट्स हो, उससे भी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर थोड़ा सा पार्ट कोई घुटने का खराब है तो कुछ ऑस्टियोटमीज होती हैं, कुछ ऑपरेशन होते हैं जिससे कि घुटने का जो टेढ़ापन है उसको सीधा किया जा सकता है, अलाइनमेंट सही किया जा सकता है तो घुटना और देर तक चल सकता है। और जब लास्ट में बहुत ही ज्यादा घुटना खराब हो जाता है और किसी चीज से कोई आराम नहीं मिल रहा होता है, तो फिर जोड़ बदलने का ऑपरेशन टोटली रिप्लेसमेंट करने से आराम मिल जाता है।
3: सर, जैसे हमने अभी बात की ऑस्टियोपोरोसिस

0: की, तो ये होता क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, जैसे हम समझ पाएं कि अब ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो चुकी है और लोग समय रहते इसकी जांच कैसे करा सकते हैं?
1: ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हड्डियों का कमजोर होना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ महिलाओं की मेनोपॉज की बात करी और ओल्ड एज की बात करी, बट ऑस्टियोपोरोसिस पहले भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है। कई बीमारियां हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कुछ लोग हैं जिनको दौरों की बीमारी है, तो उसकी जो दवा चलती है दौरे रोकने के लिए, उससे भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। उसका साइड इफेक्ट होता है हड्डियों को कमजोर करना। कई लोग हैं जिनको एस्थमा है या और कोई क्रॉनिक डिजीज है जिसके लिए उनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स की वजह से भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ मेनोपॉजल लेडीज में या ओल्ड एज में हो, वो यंग एज में भी, यंग लोगों में भी हो सकती है अगर उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हों तो। इसलिए और सबसे कॉमन लेकिन जो है वो यही है, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस और सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है वो, जैसे पहले भी बताया, बोन मिनरल डेंसिटी डेक्सा स्कैन, इससे बिल्कुल श्योर शॉट पता चल जाता है कि हड्डियां कितनी नॉर्मल हैं या थोड़ी सी कमजोर हैं, जैसे कि ऑस्टियोपेनिया, या बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस। जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं तो बहुत छोटी सी ही चोट से हड्डी टूट सकती है, तो इसलिए हमें वो चीज प्रिवेंट करनी है। और ये प्रिवेंटेबल डिजीज है और ये बहुत ही साइलेंट डिजीज है, पता भी नहीं चलता है कि आपकी धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो शुरुआत होती है किसी को कमर का दर्द, किसी महिला अगर वो 50 प्लस लेडी है, उनको कमर का दर्द होना शुरू हो जाएगा, कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, झुक कर काम नहीं किया, कोई वजन नहीं उठाया, लेकिन धीरे धीरे दर्द आना शुरू हो गया है कमर में। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ हमें हिंट देता है कि इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो रही होगी। और अगर वो नेग्लेक्ट की जाए उस समय, उनका टेस्ट ना करें, उनका ट्रीटमेंट ना करें, प्रिवेंट ना करें ऑस्टियोपोरोसिस का होना, तो आगे जाके सारी ही हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आमतौर से सबसे कॉमन हड्डियां जिसका हम टेस्ट करते हैं वो है रीढ़ की हड्डी, हिप की बोन, कूल्हे की हड्डी और कलाई की हड्डी। यही तीन हड्डियां हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन भी हैं फ्रैक्चर्स के लिए। ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स जो होते हैं, हड्डियां कमजोर होने के जो फ्रैक्चर होते हैं, वो यही तीन हड्डियों के होते हैं गिरने से। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमें यंग पॉपुलेशन को भी, उनका भी टेक केयर करना है कि उनको भी कहीं ये सारी बीमारियां ना हो जिनकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं।
0: और सर, कि ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, क्या हड्डियों की सेहत पर इसका भी प्रभाव पड़ता है? और ये कहते हैं कि शरीर से कैल्शियम को कम कर सकती है, क्या ऐसा होता है?
1: अगर बहुत मात्रा में, देखिए, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। तो बहुत ज्यादा कोई चाय पियेंगे, बहुत ज्यादा कॉफी पियेंगे और बहुत ज्यादा अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी डाइट कम हो जाएगी, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, डेफिनेटली बोन हेल्थ को भी फर्क पड़ेगा उसमें। लेकिन हाँ, कभी एक दो कप दिन में पीने से कोई नुकसान नहीं है।
0: जी जी सर, ये भी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर गए और कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। ओवरडोज या गलत तरीके से सप्लीमेंट लेने की क्या नुकसान भी हो सकते हैं?
1: बिल्कुल होते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि विटामिन डी जो है, हमारे शरीर में ना दो प्रकार के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उसमें जम जाता है जाके, उसमें जमा हो जाता है जाके। तो विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो विटामिन डी भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, शरीर को जरूरत नहीं है उसकी, तो वो फैट में जमा हो जाएगा। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन बी और सी, अगर ये कभी ज्यादा भी हो जाते हैं तो, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल हैं, वो यूरिन से निकल जाते हैं बाहर हमारे शरीर से, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे ब्रेन के अंदर का प्रेशर बढ़ सकता है, आई बॉल्स बाहर निकलने जैसी लग जानी शुरू हो जाती हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए कभी भी अपने आप ये सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए केमिस्ट के पास जाकर, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो गए आपको तो उसको फिर शरीर से निकालना भी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए अगर किसी को लेना भी है तो पहले टेस्ट जरूर करा लें कि उनका विटामिन डी कम है या नॉर्मल है, और उसके बाद ही डॉक्टर के सलाह से ही ये सप्लीमेंट्स भी लें।
0: जी, और एक गाना सुन ले क्या?
1: जी हाँ।

0: आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राहुल खरे। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को जोड़ों और हड्डियों में ज्यादा दर्द क्यों महसूस होता है और इससे बचने के लिए डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए?
1: ये तो बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों को जोड़ों की तकलीफ होती है उनके दर्द आमतौर से सर्दियों में बढ़ जाते हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि सर्दियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो हमारी जो खून की नलियां हैं शरीर में, जो खून ले जाती हैं शरीर के वेरियस पार्ट्स में, तो वो सिकुड़ जाती हैं, उनका डायमीटर कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है। अब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो जितने भी हमारे केमिकल्स जो पेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं जो जोड़ों पे दर्द का एहसास दिला रहे हैं, दर्द हो रहा है जिनकी वजह से, वो उतने धुल के निकल नहीं पाते हैं और दर्द ज्यादा होता है। और भी इसमें और भी कारण है कि लोगों को सनलाइट नहीं मिलती है और विटामिन डी की कमी से भी दर्द होता है लोगों को मांसपेशियों में, जोड़ों में। तो इसका खान पान में तो ये है कि आप गर्म खाना खाएं, सेहतमंद खाना खाएं, बैलेंस्ड डाइट लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, जितना हो सके उतना धूप में रहें और विटामिन डी के नहीं तो सप्लीमेंट्स ले लें अगर कमी है, और सिकाई और एक्सरसाइज। सिकाई करना, जोड़ों पे सिकाई करेंगे, गर्माहट पहुंचेगी तो अपने आप खून का प्रवाह बढ़ेगा, ब्लड फ्लो वहां पे उस जगह बढ़ेगा। मालिश करें, उससे मसल्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है, अगर बाहर ठंड में नहीं जाना है, पोल्यूशन भी हो जाता है शहरों में, तो घर के अंदर ही एक्सरसाइजेस करें, लेकिन करें जरूर। तो इन सब चीजों से उनको सर्दियों में जो दर्द बढ़ जाता है उसमें राहत मिलेगी।
0: सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम

0: है
1: एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून।
1: राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही, 48 वर्ष मेरी उम्र है। मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि किसी पेशेंट को हड्डियों की बीमारी है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर जो है ग्लूटियस एमिशिया है, कैसे पता चले। दूसरा सवाल मेरा कि जो आपने कहा कि विटामिन ई धूप से मिलता है और उसकी सप्लीमेंट टैबलेट या मेडिसिन भी आती है, तो अब मेरा पूछता ये रहेगा अगर विटामिन डी के लिए धूप में बैठे या इसकी सप्लीमेंट ले या दोनों ही आप एडवाइस करेंगे। कैल्शियम के लिए जो आपने कहा कि केला दूध बेहतर रहेगा, तो केला और अंडे में से आप किसे तवज्जो देंगे, अहमियत ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
2: तो इन्होंने पहला तो मैं नहीं सुन पाया, इनका क्लियर नहीं था प्रश्न। दूसरा इन्होंने पूछा था कि विटामिन डी में धूप में बैठें या विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। तो विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें या धूप में बैठें, ये सब कुछ निर्भर करेगा उनके विटामिन डी टेस्ट के रिपोर्ट पर। अगर उनका विटामिन डी बहुत कम है तो हम उन्हें इंजेक्शन लगा सकते हैं, अगर कम है, बहुत कम नहीं लेकिन कम है, तो हम उनको ओरल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। और अगर उनका नॉर्मल है विटामिन डी, तो फिर तो उनको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। धूप में जहां तक हो सके लोगों को बैठना चाहिए, खेलना चाहिए, धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी भी होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं पॉसिबल है, बारिश का मौसम है, सर्दियां हैं, धूप ही नहीं निकल रही, या आपका काम ऐसा है कि आपको घर के अंदर ऑफिस के अंदर ही बैठ के करना पड़ता है, तो अलग से समय निकाल के धूप में बैठने की जरूरत नहीं है, आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो।
0: सर ये दूसरा सवाल पूछ रहे थे कि अंडा या केला दोनों में से क्या बेहतर है।
2: दोनों में ही अच्छा मात्रा है कैल्शियम का, और अंडा लेंगे तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा साथ में, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है।
0: जी जी सर, क्रैश डाइटिंग का आजकल तेजी से वजन घटाने की कोशिश का हड्डियों की मजबूती पर क्या विपरीत असर पड़ता है?
2: ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि बहुत ही एकदम खाना कम कर देते हैं वजन घटाने के लिए, तो इससे तो काफी मुझे लगता है कि नुकसान ही होता है, क्योंकि आप एकदम से खाना पीना बंद कर देते हैं, फास्टिंग होती है या बहुत ही सिलेक्टिव खाना खाते हैं, तो इसका मतलब कि प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट तो पहुंच नहीं रही। हर प्रकार का जो न्यूट्रिशन होना चाहिए शरीर को चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, ये सब तो नहीं पहुंच रहे हैं, तो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने कोई एक प्रकार का ही खाना खा रहे हैं या आप बिल्कुल खाना कम कर दिया है, तो आपके अंदर सारी चीजें कम पहुंच रही हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी, ये कहीं ना कहीं जरूर ही हड्डियों पे और जोड़ों पे भी प्रभाव डालता है, और इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। खाना पीना कम करेंगे, वजन कम हो जाएगा तो मसल मास भी कम हो जाएगा, और मसल मास कम होएगा तो मसल्स ही अगर स्ट्रांग होती हैं तो स्टिमुलेट करती हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो अगर मसल मास भी कम होगा तो भी वो इनडायरेक्टली हड्डियों को कमजोर करेगा।
0: जी सर, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
3: जी मेरा नाम कुशागर कंठ है।
0: जी अपना सवाल पूछें।
3: जी मेरा ये सवाल है कि विटामिन डी के साथ विटामिन के टू अपने शरीर के लिए लेना जरूरी है एक बार में कि अलग अलग यूज कर सकते हैं?
2: देखिए विटामिन डी आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, विटामिन के टू, ये सब कुछ हो ना हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सिंपल विटामिन डी अगर सनलाइट एक्सपोजर से बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप डाइटरी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, सी फूड खा रहे हैं, फिश वगैरह ले रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, और अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सिंपल विटामिन डी सप्लीमेंट जो होता है वो आपको उतना भी काफी है। आजकल क्या हो रहा है, बिकॉज सब कंपनीज को अपना अपना सामान बेचना है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं, जस्ट टू बी डिफरेंट, अपने आप को डिफरेंट प्रोडक्ट बना के, वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज्यादा है, और आप चाहे के टू के साथ लें या ना लें उसे खास फर्क नहीं पड़ता।
0: सर एक मैसेज आ रहा है, इफ यू कुड गिव द पब्लिक जस्ट 3 प्रैक्टिकल पीसेज ऑफ एडवाइस फॉर कीपिंग देयर बोन्स हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, व्हाट वुड दे बी?
2: अच्छा, तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने ज्यादातर इन सब चीजों का डिस्कशन कर ही लिया है कि आपको डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी, चाहे डाइट से हो, चाहे सनलाइट से हो, चाहे सप्लीमेंट से हो, और प्रोटीन्स, ये आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपका शरीर का वजन होगा उतना ही आपकी हड्डियों पे और जोड़ों पे लोडिंग होगी और वो कहीं ना कहीं आपको आगे तकलीफ देंगे। और तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करके मसल्स को

0: स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑर्थोपेडिक्स में, बोन्स जॉइंट्स की प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक आधे से ज्यादा तकलीफ तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही ठीक हो जाती हैं। काफी बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज बताते हैं। पेशेंट्स अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं मेडिसिन खाने के पार्ट में, लेकिन अगर वो एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो वो देखेंगे कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म के लिए उनको एक्सरसाइजेस ज्यादा हेल्प करेंगे बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, ना कि मेडिसिंस।
1: और सर अब आखिरी सवाल ये है कि थायराइड और डायबिटीज या पेट संबंधी समस्याओं के मरीजों में हड्डियों की कमजोरी का खतरा ज्यादा क्यों होता है?
0: थायराइड प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, चाहे थायराइड कम हो, ग्लैंड कम थायराइड स्किन हार्मोन बना रही है या ज्यादा बना रही है, हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में ही बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में वजन भी बढ़ता है, वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होती है, मोटापा आ जाता है, वेट बढ़ जाता है, तो हड्डियों पे और जोड़ों पे भी फर्क पड़ता है। लोडिंग ज्यादा होती है तो जोड़ जल्दी खराब होते हैं। अगर होगा तो ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बना, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होगा तो बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। और डायबिटीज में तो ये फर्क पड़ता है कि अगर किसी को कोई भी थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाए हड्डी के आसपास, और अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो हड्डी में भी इन्फेक्शन हो सकता है। जिन लोगों के हड्डियां टूट जाती हैं उनमें भी अगर उस आदमी को डायबिटीज है तो वो जुड़ने में भी ज्यादा समय ले लेती हैं। उनको नॉर्मल टाइम जो उस हड्डी को जुड़ने में लगता है उससे ज्यादा समय लग जाता है अगर किसी को डायबिटीज है तो।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने डॉक्टर राहुल खरे से जाना कि हमें अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत रखना है, यानी हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राहुल खरे, आपका इस कार्यक्रम में आने और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से संबंधित किसी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा मेल एड्रेस है health@delhi.com। आज बस इतना ही। अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। अपना और अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हर दिन दोपहर 3 बजे से जरूर सुनिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर शाम के 4 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा

देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति का भंडार। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। ये थे अब तक के AIR मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल, पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है, जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है, लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है।
एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है, जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदि हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है। ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें, तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं, जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना, भूख न लगना, हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज ये है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है, तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद जरूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार, अपनापन मिल रहा है, तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है, तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य आपके बच्चे

या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाएं कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डालें। नियमित रूप से उसे बात करते रहे ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोबारा आपके साथ जुड़ चुकी हूं। मैं दीपिका लेकर हाजिर हूं प्रोग्राम अल्फा जैन, जहां आज यानी कि सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। लेकिन ये डिटॉक्स थोड़ा सा अलग तरीके का भी है, क्योंकि डिटॉक्स का मतलब बहुत सारी चीज़ों से होता है। सिर्फ अक्सर डिटॉक्स की जब बात चलती है तो हमें लगता है डाइटिंग मतलब है इसका, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालना मतलब है इसका, मतलब हम इसे हेल्दी वाले वे में देखते हैं, बस गलत नहीं है वो भी। लेकिन डिटॉक्स के बहुत सारे मतलब होते हैं, और जब वीकेंड हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को मेंटली डिटॉक्स करें, ताकि एक आने वाले नए हफ्ते के लिए आप पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो सके। तो चलिए, करूँगी ढेर सारी बातें आपसे यहाँ पर। मैं इस प्रोग्राम में पूरे 5 बजे तक बना रहेगा आपका और मेरा साथ। फिलहाल के लिए करते हैं इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत।

0: नहीं है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग FM रेनबो दिल्ली पर। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम है अल्फा जैन, जहाँ सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। वेल, सैटरडे संडे जब भी आता है चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर आता है, वो जो वीकेंड वाला फील है कि अब छुट्टी है, मतलब दो दिन। पर वीकेंड, छुट्टी, ये सारी बातें हम करते हैं, रेस्ट भी देते हैं खुद को, पर क्या हमारे दिमाग को भी छुट्टी नहीं चाहिए? क्या हमारे दिमाग को भी वीकेंड नहीं चाहिए? क्या हमारे दिमाग को भी रेस्ट नहीं चाहिए? ये बात हम शायद ही कभी सोचते हैं, क्योंकि वीकेंड पर कोई काम नहीं करेंगे ये हम तय कर लेते हैं। मैं ऑफिस तो है नहीं, बाकी मैं घर के काम भी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं रेस्ट करूँगी, खुद को आराम दूंगी, ताकि अगला हफ्ता जो है वो अच्छे से मैं काम कर पाऊँ। पर जितना ज़रूरी आपके शरीर को आराम देना है, आपकी बॉडी को रेस्ट देना है, उतना ही ज़रूरी आपके दिमाग को रेस्ट देना भी तो है ना। तो फिर हम दिमाग को वीकेंड देने के बारे में क्यों नहीं सोचते? दिमाग में तो हमारे सैकड़ों थॉट्स वीकेंड को भी रहते हैं, इसने ये कह दिया था, उसने वो कह दिया, ये करना है, ये क्यों नहीं किया। नहीं नहीं नहीं दोस्त, दिमाग का भी वीकेंड होना चाहिए। एक वीकेंड पर जैसे आप अपनी बॉडी को आराम देते हैं, वैसे ही जरा दिमाग को भी वो वीकेंड वाली छुट्टी देकर देखिए, आपको खुद अंतर महसूस होगा।

0: अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों, मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी। घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और हम लेकर आ गए आपके लिए अभी के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। आज का दिन ऑलमोस्ट समापन पर है, खासतौर से अगर हम बात करें भारतीय नजरिए से कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी किस किस इवेंट के अंदर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रेसलिंग के अंदर एक बाउट और बचा है और अभी हमारा हॉकी का फाइनल मुकाबला चल रहा है, लेकिन ये फाइनल मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है दोस्तों, बिकॉज इंडिया इज अप अगेंस्ट मलेशिया इन द मेंस हॉकी फाइनल्स फाइटिंग फॉर द गोल्ड मेडल। यस, एंड इंडिया ऑलरेडी हैज लीड ऑफ 1 goal ओवर मलेशिया, द प्रेजेंट स्कोर लाइन रीडिंग 2-1। जी हाँ, और अभी फर्स्ट क्वार्टर अभी इनफैक्ट

0: ओवर भी नहीं हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर में अभी 2 मिनट बचे हुए हैं और भारत ने अगर हम बात करें तो माफी चाहूंगी, फर्स्ट क्वार्टर थर्ड क्वार्टर इंपैक्ट अभी चल रहा है एंड भारत 2-1 से मलेशिया से अभी बढ़त बनाकर आगे चल ही रहा है। वी विल हैव टू सी हाउ दिस टर्न्स आउट। भारत की तरफ से आपको बता दो कि 11वें मिनट में हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि जुगराज सिंह ने भी पीसी को कन्वर्ट करके भारत के नाम 2 गोल करवाए थे। वहीं पर अगर मलेशिया की बात करें तो शैलो सिल्वरस ने मलेशिया को 1 गोल करवाया। द मैच इज स्टिल ऑन, वी विल हैव टू सी हाउ दिस गोज टुवर्ड्स द एंड, बट शायद डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लीड
1: बिल्कुल 2 गोल्ड मेडल भारत के पक्ष में आ सकता है। हॉकी की जैसा आपने बात की, भारत यहाँ पे लीड पे, दूसरा जो आपने बताया कुश्ती के मुकाबला एक बाकी, जी हाँ उस मुकाबले में भी अंतिम पंगाल अगर जीती थी तो भारत के खाते में गोल्ड आ जाएगा। लेकिन हाँ एक पदक भारत के खाते में जरूर जुड़ा है ब्रॉन्ज मेडल की शक्ल में। भारत के दीपक पुनिया ने एशियन गेम 2026 के पुरुषों के फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम वर्ग में जो कांस्य पदक का मुकाबला था वहाँ कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इस मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को कड़े मुकाबले में 2-1 से हराया। दीपक ने शुरुआत में 2-0 की बढ़त बनाई लेकिन बाद में उन्हें पैसिविटी के कारण 1 अंक गंवाना पड़ा और अंतिम क्षणों में उन्होंने संयम बनाए रखा और 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस कांस्य के साथ दीपक पुनिया ने लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने हांगझोउ 2023 में रजत पदक हासिल किया था। इससे पूर्व सेमीफाइनल में जैसा कि दीपक पुनिया ने प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के सरजोद पोनेवा के हाथों 8-9 से हार गए थे जिस वजह से उन्हें कांस्य पदक का मुकाबला खेलना पड़ा।
0: जी एंड सम गुड न्यूज ऑल्सो बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट डे इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 व्हेन इट कम्स टू सीइंग आर इंडियन प्लेयर्स आर इंडियन एथलीट्स रिप्रेजेंट इंडिया इन डिफरेंट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू इन द स्पोर्टिंग अरीना। सो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ गुड नोट वेयर वी हैड आर इंडियन गोल्फर प्रणवी उर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। दिस केम आफ्टर अ 24-year-old लॉन्ग वेट। द लास्ट टाइम एन इंडियन वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ वॉज शिव कपूर 2002 में। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि हमारी गोल्फ की महिलाओं की टीम ने भी इन द टीम इवेंट, मैं बात कर रही हूँ अदिति अशोक दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स की, उसमें भी उन्होंने भारत को आज सिल्वर मेडल दिलवाया है। आर्चरी की बात करें तो कुमकुम महोद ने भी शी आल्सो मेड इंडिया प्राउड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स रिकर्व आर्चर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। इन अ थ्रिलिंग फाइनल शी बीट हर कोरियन ओपोनेंट ओ येजिन बाय अ शूट ऑफ एंड देयरबाय वी सॉ हर ब्रिंगिंग द कोवेटेड गोल्ड क्रिएटिंग हिस्ट्री फॉर इंडिया।
1: जी एक और कांस्य पदक भारत के खाते में आते आते रह गया है। सागर जगलान अपना कांस्य पदक का मुकाबला हार गए, वहीं अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। जहां अमन ने फाइनल में उत्तर कोरिया का हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। मुकाबले की शुरुआत में अमन 4-1 की बढ़त बना ली थी लेकिन चोंग सोंग ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर 7-6 अपने पक्ष में कर लिया और आखिरी मिनटों में मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया। लेकिन दबाव के इस पल में अमन ने शानदार टेकडाउन लगाकर मुकाबले का रुख पूरी तरह से पलट दिया और स्कोर 11-7 करके गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया।
0: जी और आर्चरी के अंदर ही आपको ये भी बता दे कि हमने देखा कि कैसे 2 भारतीयों का भी आज एक मुकाबला हो गया फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। मैं बात कर रही हूँ नीरज चौहान और धीरज बम्बा देवारा की, जिसमें नीरज चौहान ने धीरज को 6-4 से मेंस इंडिविजुअल रिकर्व में हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल भारत का ही नाम रहा क्योंकि 2 भारतीय थे। द गुड न्यूज और द बेस्ट पार्ट वॉज दैट इट केम बैक टू एन इंडियन एंड इन दिस केस दिस वॉज नीरज। एंड उसके बाद वी हैव टैक्वांडो के अंदर भी, जहां कशिश मलिक हैज बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026। इन द वुमेन्स 67 kg राउंड ऑफ 16 एंड टैक्वांडो ज्योति यादव आल्सो लॉस्ट टू कानालक चोनकोलिन 0-2 एंड देयरबाय भारत की कैंपेन इस स्पोर्ट के अंदर आके खत्म हो गई।
1: जी बिल्कुल, और भारत अब जो मेडल टेबल उसके चौथे पायदान पे पहुंचने के बेहद करीब है। देखना होगा क्या वहां पहुंच पाता। उज्बेकिस्तान के 21 गोल्ड भारत के 20 गोल्ड है, अभी 2 गोल्ड भारत के पक्ष में आ सकता है कुश्ती और हॉकी से। देखना होगा अगले एक घंटे में क्या कुछ घटित होता है, तस्वीर साफ हो जाएगी जरूर बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 5:30 बजे की अपडेट तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की अपडेट्स।

दीपिका के साथ हैं आप प्रोग्राम अल्फा जैन में आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है। बात हो रही है कि क्यों मिलना चाहिए दिमाग को भी वीकेंड की छुट्टी, जो अक्सर हम नहीं देते हैं क्योंकि हमारा शरीर थक जाता है और हम उसके सिग्नल्स को समझ करना रेस्ट करने की सोच लेते हैं कि नहीं बहुत थकान हो रही है, बॉडी एक हो रहा है या नहीं, अब तो बस बिल्कुल हम थक गए हैं, वीकेंड पे तो कोई काम करने की उम्मीद करना ही मत हमसे। गलत नहीं है ये, आपकी बॉडी को रेस्ट की बेशक ज़रूरत होती है, पर जब आप दिमाग को रेस्ट नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर भी आपकी बॉडी पर आता है। दिमाग ये सिग्नल आपको नहीं भेज पा रहा है कि वो थक गया है, लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेशक महसूस कर पाएंगे कि आपका माइंड भी टायर्ड फील कर रहा है और उसको भी रेस्ट चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि वीकेंड पर आप इधर उधर के थॉट्स को दिमाग से निकालें। अगले वीक ऑफिस में क्या होगा, कौन क्या कहेगा, पिछले वीक क्या हुआ था, घर पर क्या होगा, इससे बात क्यों नहीं हुई, इससे बात क्यों हुई, बहुत सारी जो बातें हैं इन्हें ज़रा दिमाग से साइड कर दें। बल्कि मैं आपको एक सच बात बताऊं, वीकेंड पर हम दिमाग को छुट्टी देना तो दूर की बात, हम दिमाग को और एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं क्योंकि वो बातें जिनको हम शायद वीकडेज में कम सोच पाते हैं, हम उन्हें भी वीकेंड पर सोचते हैं और अपने दिमाग को और काम पर लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। आपके दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, उसे भी मिलनी चाहिए वीकेंड वाली ये छुट्टी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ और प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां पर मैं कह रही हूं कि दिमाग को भी मिलनी चाहिए वीकेंड की छुट्टी। जो वीकेंड वाला फील है वो दिमाग को भी तो मिलना चाहिए, ताकि दिमाग को भी वो रेस्ट मिल सके जो एक्चुअली वो डिज़र्व करता है। और पता है क्या, ये बातें हमें तब समझ में नहीं आती जब हम रेगुलर बेसिस पे जो चीज़ें कर रहे हैं वो करते रहते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर इसका असर दिखना शुरू होता है, तब हमें लगता है कि हाँ, शायद हमें पहले समझने की ज़रूरत थी, हमने पहले नहीं समझा। क्योंकि सोमवार को दिमाग को आप कहते हैं चलो काम पर लगते हैं, मंगलवार को फिर वही हाल, बुधवार को भी, शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी, और शनिवार रविवार, तब हम कह देते हैं कि चलिए आराम मिलना चाहिए, लेकिन वो आराम दिमाग को नहीं मिलता, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते ही नहीं हैं जिससे हमारा दिमाग रेस्ट मोड पर जाए। कभी फ़ोन को साइड पर रखिए, कुछ देर बिना काम करके बैठिए, दिमाग में कोई थॉट मत आने दीजिए, अपने पसंदीदा गाने को सुनिए, अपने दोस्त से मिलिए किसी, या फिर एक प्याली चाय के साथ खुद को वक्त दीजिए। समझिए कि आपका दिमाग भी कोई मशीन नहीं है, उसे भी कभी कभी कहना पड़ता है आज कोई काम नहीं, आज सिर्फ आराम। तो इस वीकेंड एक छुट्टी अपने दिमाग के नाम भी, क्योंकि फ्रेश माइंड के साथ ही तो लगेगा आपको मंडे थोड़ा सा आसान।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, लेकिन अभी वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, इस प्रोग्राम में यानी कि अल्फा जैन में आपको देनी होगी मुझे इजाजत। जरूर कहूंगी एक बार फिर से कि दिमाग को भी मिलना चाहिए वीकेंड, इस बात का आप रखिए बहुत ख्याल और फिर देखिए आपको खुद अंतर महसूस होगा। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी सीमा, लेकर आएंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। मैं फिलहाल जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6। दिस इज आरजे दीपिका साइनिंग ऑफ।

और आप सुनते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी

व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वायुसेना दिवस के पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में प्रत्येक देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति का भंडार। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। इसके लिए ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान का समन्वय किया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल्स में भारत का मुकाबला मलेशिया से जारी। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी पे आ गई है, बिल्कुल आपकी अपनी पसंदीदा, जी आपकी दोस्त सीमा। और जैसे कि प्रोग्राम सैटेलाइट्स, सिटी की खबरें, आप, हम और बहुत सारी बातें तो होने ही वाली हैं साथ ही साथ, क्योंकि जब भी हम मुलाकात करते हैं तो बातें तो होती ही हैं, है ना। लेकिन उससे पहले बात करें, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, अक्सर क्या होता है ना, हम हमेशा नाराज़ रहते हैं, खुद से नाराज़ रहते हैं, दूसरों से, और हमेशा हम यही सोचते रहते हैं, यार मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, उसके पास थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा ही है, है ना। अक्सर हम उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, वो अनगन्यत चीज़ें जो जीवन में हमें बिना मांगे मिल गई हैं। भगवान ने हमें इतनी अच्छी, जो कहते हैं ना, शरीर दिया है, सांसें दी है, परिवार दिया है, खाना दिया है, सोच दी है, और इतने खूबसूरत सी जो छत दी है, इतना परिवार साथ मिला है जो आपको अपने का, ये सब चीज़ें क्या हमें बिना प्रयास के नहीं मिल गई हैं? इसके लिए तो हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करे, है ना, लेकिन हम उसके लिए थैंकफुल होते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। हम उन चीज़ों के पीछे भागे चले जा रहे हैं जो शायद अभी हमारे पास है नहीं, या फिर दूसरों के लिए पास है तो हम उसको लेकर थोड़ी सी टेंशन में है। इसलिए हमें क्या करना है, जो कुछ भी मिला है उसको सिर्फ अपना अधिकार समझकर एक तरीके से भोगना नहीं है, उसके प्रति हमें क्या करना है, कृतज्ञ होना है, थैंकफुल होना है। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसके लिए हमें एक पल रुककर, जी हाँ एक पल रुककर ज़रूर सोचना है कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है, क्या मैं ये डिजर्व करता था, है ना। तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना है, भगवान को ज़रूर थैंकफुल रहना है, हमें थैंकफुल रहना है उन सब लोगों के लिए जो आपके आज यहाँ तक पहुँचने में आपके साथ हैं। तो चलिए, और कहीं इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम खो तो नहीं गए हैं, कहीं हम लापता तो नहीं हो गए हैं? कोई बात नहीं, लापता हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, ठिकाने पर हम लेकर आएंगे आपके। हमारा ठिकाना तो एक ही है, आकाशवाणी FM रेनबो पर, और प्रोग्राम सिटी लाइट्स सीमा के साथ।

चलिए, आपके लापता होने की बिल्कुल गुंजाइश तो हम होने नहीं देंगे। सब चीज़ों का हमें पता रहता है, अता पता रखते हैं हम आपका, और कब कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, सब पता रहता है हमारी मैडम को। चलिए मैं आपको बताऊँ, सिटी लाइट सुन रहे हैं और सिटी लाइट्स में बात करते हैं हम, पूरी पूरी सिटी की बात करते हैं। कुछ खास अगर हमें मालूम हो तो हम वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि नमो भारत में ट्रिप पास की सुविधा अब शुरू हो गई है। नमो भारत ट्रेन में रोज़ाना सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने एक बड़ी राहत दे दी है, और NCRTC ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूजर्स के लिए ट्रिप पास की नई सुविधा जो है शुरू कर दी है। लगभग क्या होता है कि लगभग 1 लाख के करीब, 1.1 लाख के लोग लगभग रोज़ाना यात्रा करते हैं नमो भारत से, जिनमें से बड़ी संख्या में उन लोगों की है जो तय रूट से रोज़ आते जाते हैं, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उन्हें डेली जाना होता है ना। तो ऐसे में क्या है कि रोज़ रोज़ लाइन में लगना, टिकट खरीदना और रिचार्ज का, ये सब से अगर टेंशन फ्री होना है ना, तो हमारे पास है ना आइडिया, बिल्कुल। तो इसीलिए आपके पास क्या है, अब आपको ये सब लाइन का झंझट ख़त्म कर दिया है और इसके लिए आपको नमो भारत ट्रिप पास सुविधा शुरू हो गई है। तो बिल्कुल बिना देर के आपको क्या करना है, शुरू हो जाना है। और अगर अभी तक आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा खबर नहीं है तो खबर रखनी है, पता लगाना है किस तरह से अगर आप डेली आ रहे हैं जा रहे हैं तो पास बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमने आपकी एक प्रॉब्लम तो कहना सॉल्व कर दी है, और पहले कभी नहीं पता था, आज ही पता चला है। चलिए कोई बात नहीं ना, आज ही पता चला है तो पता तो चल गया ना। मैंने कहा ना मैं हूँ ना, फिर टेंशन नहीं लेनी आपको, मैं हूँ, आपको हर बात की खबर बताती रहूँगी। प्रोग्राम सिटी लाइट्स।

जी हाँ, कुछ तो होगा ही, और जबकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कुछ कुछ ना हो भला कैसे हो सकता है। और ढेर सारी खबरों के साथ बने रहिए, सुनते रहिए आपका अपना सिटी लाइट्स।

और चांद का इंतज़ार है ना, और हमें इंतज़ार है कि अगली खबर क्या होगी। और मुझे लगता है कि आपको भी इसी बात का इंतज़ार होगा कि अब सीमा क्या बताने वाली है। जी आपको बताएंगे कि सी बच्चों के लिए ख़ासतौर पे मैं बताना चाहती हूँ, जो बच्चे तैयारी करते हैं ना CUT एग्ज़ाम्स की, उनके लिए बताते हैं हम आपको। CUT अंडर ग्रेजुएट 2027 के पैटर्न में भी अब कुछ चेंजेस होने वाले हैं, और अगर अभी तक आपने इस बारे में नहीं सुना है या कुछ इस बारे में प्रिपेयर नहीं हो तो आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि 2027 में जो CUET का एग्ज़ाम उसमें कुछ बदलाव होंगे। और कुछ कहते हैं ना सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कुछ समस्याएं जो देखने को आ रही थी उनमें सुधारों की समीक्षा की जा रही है, और इसे लेकर कई सारी बैठकें भी हो गई हैं, और इसके लिए 20 अक्टूबर के आसपास जो NTE की जो परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। और CUT UG जो प्रोग्राम है जिसमें 63 पेपर्स से अगले वर्ष घटाकर इन्हें 37 कर दिया गया है, और इसमें 13 लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड और टेस्ट भी होगा, और 23 डोमेन सब्जेक्ट शामिल होने वाले हैं। और इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या जो सब्जेक्ट्स की जो संख्या है क्या उसे कम किया जाना चाहिए या नहीं, और क्या बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स अधिकतम 5 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं, या कई जो स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग दिनों में परीक्षा देने के लिए अलग अलग आना पड़ता है, क्या एक ही दिन में कुछ एग्ज़ाम्स कराए जा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं जो कि चल रहे हैं, जिनके सुझाव और जिनके सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं, और ख़ासतौर पे 5 विषय चुनने का विकल्प दिया जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। और अगर हम बात करें कि JEE मेंस के लिए आवेदन 20 अक्टूबर के बाद होने वाले हैं, अगर आप JEE मेंस के लिए भी आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप जो उसका JEE मेन के पहले सेशन की परीक्षा 22 जनवरी में शुरू होने का जो लक्ष्य है, और इसके लिए आवेदन जो आप कर सकते हैं 20 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं। और CBT मोड में ही एग्ज़ाम होगा जैसे कि आपको पता ही है, और सभी एंट्रेंस टेस्ट CBT मोड में की जाने की चर्चा है। और चर्चा ये क्या है, आपको पता ही है कि आजकल सारे एग्ज़ाम्स CBT मोड में ही होने लगे हैं, तो हमें प्रिपेयर होना है उसके लिए और तैयार रहना है। और अब तैयार रहना है आपको एक बहुत सी सुंदर से गीत के लिए, क्योंकि आपकी सिटी लाइट्स में मैं हूं ना आपके साथ सीमा, और एक बहुत अच्छा गीत, और इसके बाद एक खास बात भी है मेरे पास, वो बताऊंगी इस गाने के बाद।

0: और अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद शाहिद आजमी। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए शाम के 5:30 बजे के लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। और दोस्तों, आपको इस अपडेट को शुरू करने से पहले बता दें कि भारत का सफर एशियन गेम्स 2026 के अंदर आकर अब ऑफिशियली समाप्त हो चुका है। जी हाँ, भारत के सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स अब यहाँ पर आकर समाप्त हो गए हैं आज। और चलिए आपको सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर देते हैं आज के दिन की, जिसपे आज भारत ने अपने एशियन गेम्स का सफर समाप्त किया, वो है एक मीठे से गोल्ड मेडल के साथ। जी हाँ, जो कि आया हॉकी में, जहां भारत ने मलेशिया को 5-1 से आज हरा दिया। एंड दिस इनफैक्ट मार्क्स अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, लेट्स नॉट फॉरगेट, एंड दिस इज बैक टू बैक एशियन गेम्स गोल्ड मेडल फॉर द इंडियन मेंस हॉकी टीम। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट दैट द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गॉट अस द गोल्ड यस्टरडे बाय डिफीटिंग द डिफेंडिंग चाइना 1-0, and as a result, this is for the first time when both the men and women's hockey team have gone on to win the gold in the Asian Games. A lot of records being broken out there, milestones being set. Also, with this win, now India have booked a place for the LA 2028 Olympics, the big one. Quickly taking you down through the journey of who scored the goals for India. Harmanpreet Singh scored the goal in the 11th minute, penalty corner conversion. Then Jugraj Singh in the 23rd minute. Hardik Singh, Sheila Nand Lakra, and finally in the 57th minute, Harmanpreet Singh once again came back.

0: बैक टू कन्वर्ट अ पेनल्टी कॉर्नर। मलेशिया की तरफ से शीलो सिल्वरियस ने सिर्फ इकलौता गोल स्कोर किया। 5-1 से भारत ने जब मलेशिया को हराया, पहले क्वार्टर में 1-1 की बराबरी हो गई थी। दूसरे हाफ टाइम में हमने देखा कि भारत ने एक और गोल से बढ़त बनाई। थर्ड क्वार्टर में भारत ने फिर से एक और गोल से बढ़त बनाई और फाइनली लास्ट क्वार्टर के अंदर भारत ने 2 गोल मार के 5-1 से मलेशिया को आज हरा दिया।
1: बिल्कुल हरा दिया। और यहाँ पर एक पदक की और उम्मीद थी अंतिम पंघाल से कि गोल्ड लाएंगे, लेकिन वो गोल्ड से चूक गई। कुश्ती में भारत के लिए अंतिम पंघाल ने आज की अंतिम कुश्ती लड़ी और रजत पदक जीत लिया। महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में जो फाइनल मुकाबला था अंतिम को जापान की मोए क्योका के हाथों 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में अंतिम 0-2 से पीछे चल रही थी, लेकिन दूसरे पीरियड के शुरुआत में उन्होंने एक अंक हासिल कर वापसी की कोशिश की। हालांकि क्योका ने इसके बाद टेक डाउन करके मुकाबले के अंतिम क्षणों में 4 अंक बनाते हुए अपना जो गोल्ड मेडल था अपने पक्ष में कर लिया। अंतिम पंघाल ने एशियन गेम्स में अपना यह दूसरा पदक जीता। इससे पहले हांगझाऊ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जापानी पहलवान ने आज दिखाया वो शानदार डिफेंस कर रहे थे। हालांकि पहला हाफ दोनों पहलवान डिफेंसिव कुछ अंदाज में खेल रहे थे, रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ जब दूसरा हाफ शुरू होता वहां अगर कोशिश करती है अंतिम पंघाल पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन जापानी पहलवान ने सिर्फ रक्षात्मक वहां पर कुश्ती लड़ी बल्कि पॉइंट भी हासिल किए थे। अगर बता दूं जैसा साक्षी ने बताया भारत का अभियान खत्म हो गया है, तो भारत का जब अभियान खत्म हो गया तो इसी समय कुश्ती का भी अभियान खत्म हो गया और अंतिम जो मुकाबला था वो कुश्ती का ही मुकाबला था। जहां अब बता दें भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल में 3 भारत ने पदक जीते, ग्रीको रोमन में 2 और महिला कुश्ती में भारत ने 1 पदक हासिल किया। अगर पदक विजेताओं की बात कर ले तो अमन सहरावत ने यहाँ गोल्ड मेडल जीता, जबकि सुजीत कलकल ने भी गोल्ड मेडल जीता, यानी दोनों गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल कुश्ती में। वहीं पर नितेश और अंतिम पंघाल ने रजत पदक हासिल किया। नितेश ग्रीको रोमन के पहलवान अंतिम पंघाल इसके साथ साथ रजत पदक हासिल करती, जबकि दीपक पुनिया फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीतते हैं, जबकि सुनील कुमार ग्रीको रोमन में कांस्य पदक हासिल करते हैं। यानी 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज के साथ भारतीय कुश्ती का अभियान खत्म हो गया। पिछले अगर एशियन गेम्स की तुलना करें तो इस बार उससे बेहतर प्रदर्शन, हालांकि महिलाओं ने कुछ हद तक निराश जरूर किया है।
0: जी, एंड द हाईएस्ट इवेंट और शुड वी से द इवेंट दैट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स फॉर इंडिया वाज एथलेटिक्स, जिसने कुल मिलाकर 24 मेडल भारत को दिलवाए हैं इस एशियन गेम्स 2026 में, जिसमें से 1 गोल्ड आया, 9 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज मेडल। जो गोल्ड मेडल आया था, लेट्स नॉट फॉरगेट इट वाज द बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ गर्ल्स आउट देयर। वुमेन्स 4x400 मीटर रिले के अंदर आया था, जहां भारतीय वुमेन एथलीट्स ने हिस्ट्री रच दी। पहली बार 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत को गोल्ड दिलाकर उसके बाद सिल्वर दिलाने में हमने देखा गुलवीर सिंह मेंस 10,000 मीटर में, गुलवीर सिंह मेंस 1500 मीटर में भी सिल्वर लाए, सर्वेश मेंस हाई जंप में लेकर आए, मेंस जैवलिन थ्रो में यशवीर सिंह थे, मेंस लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर थे, मेंस मैराथन में सावन बरवाल, मेंस शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह थूर और वुमेन्स लॉन्ग जंप में एन सी सोजर भारत के लिए सिल्वर मेडल्स लेकर आए। वहीं ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो मेंस 4x400 मीटर रिले के अंदर भारत की टीम ने ब्रॉन्ज जीता। कुल मिलाकर जो ब्रॉन्ज मेडल्स भारत को मिले थे आर्च एथलेटिक्स के अंदर दोस्तों, वो रहे 14, जिसमें हमारे हैं गुलवीर सिंह, तेजस्विन शंकर, रोहित यादव, सीमा हरिता इन वुमेन्स 200 मीटर, पारुल चौधरी इन वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस, प्राची विद्या रामराज, पारुल, पूजा बरानिका, इलांगजोवन और मनप्रीत कौर। ये डिटेल्स हम लेकर आपके लिए और आएंगे, लेकिन आपको एक गुड न्यूज ये भी दे दे कि भारत ने अब एशियन गेम्स का सफर अपना फिलहाल के लिए 5वें स्थान से 4थे स्थान पर अभी अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, इंडिया प्रेजेंटली स्टैंड ऑन द 4th स्पॉट विद द टोटल ऑफ 85 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 21 गोल्ड मेडल्स, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। मोर ऑन दिस वील ब्रिंग टू यू इन द नेक्स्ट लाइव अपडेट एट 6:30। थैंक यू सो मच फॉर नाउ फॉर ट्यूनिंग इन। दिस इज मी साक्षी मांडवाल एंड मोहम्मद शहीद आजमी सेइंग गुड बाय फॉर नाउ।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 की ये ताजा अपडेट।

0: एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम सिटी लाइट्स में। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम बात करेंगे कुछ खास, और कुछ खास बात में कुछ खास लोग भी तो होने चाहिए ना हमारे बीच। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज कुछ खास बात क्या है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, पद्म भूषण से सम्मानित महाकवि श्री गोपाल दास नीरज के सुपुत्र से। जी हाँ, क्या कुछ खास बात होने वाली है और क्या कुछ खास बात वो हमें बताएंगे आज इस कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: सभी श्रोताओं को आपके जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं उनका, और सभी को जो है प्रणाम करता हूं। जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसे कि आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आपको अपने कार्यक्रम में लेकर, और मैं बताना चाहूंगी हमारे सभी श्रोताओं को कि हमारे बीच स्वर्गीय श्री महाकवि गोपाल दास नीरज जी के सुपुत्र मृगांक प्रभाकर जी मौजूद हैं, और आज वो हमें बताने वाले हैं कुछ खास बारे में। तो सर, हम ये जानना चाह रहे हैं, कुछ कार्यक्रम की चर्चा हो रही है हिंदी दिवस के ऊपर, तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ खास बात है इस कार्यक्रम की?
1: बिल्कुल, देखिए हिंदी दिवस तो खैर निकल गया, लेकिन हिंदी दिवस पर एक पखवाड़ा चलता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए कारवा गीतों का नीरज करके कार्यक्रम कल मावलंकर हॉल में संडे को शाम 6:30 बजे से प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। और इसमें एंट्री पहले बता दूं फ्री है, पहले कोई भी आ सकता है इसको, और जो संगीतकार, जो गीतकार और संगीतकार इसको सुनना चाहते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा विषय इसमें ये था कि ये नीरज साहब के जीवन पे उनकी करुणा, उनका संघर्ष, उनके दर्शन पे नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वो एक मैंने करीब स्क्रिप्ट लिखी है, करीब 100 पेज की स्क्रिप्ट है, उसको 8 सेक्शंस में विभाजित किया गया है। उनका संघर्ष कैसा है, नीरज को नीरज क्यों कहते हैं, उनका भावुक इटावी से नाम कब बदला उनका, नीरज साहब को 8वीं क्लास में फेल हुए तो क्या हुआ, फिर उसके बाद उनके जो प्रेम पत्र थे वो कैसे पढ़े जाते थे, नीरज साहब की मुंबई की यात्रा कैसी रही, देव साहब से उनकी मुलाकात कैसे हुई, और रंगीला रेत का गाना जब लिखा गया तो देव साहब ने उनकी कैसे कागज उनका फेंक दिया और उनको कैसे चैलेंज दिया लिख के, जो खत तब जब उन्होंने लिखा तो शंकर जयकिशन के जो प्रोड्यूसर जो साथी थे भाटिया साहब, उन्होंने नीरज साहब को गाड़ी गिफ्ट की। ये सारे प्रसंगों को अगर आप सुनना चाहते हैं, और इन सारे प्रसंगों को मैंने संगीतबद्ध किया है, और आप आ सकते हैं इसमें, 21 गाने नीरज साहब के हैं, उनकी 40 कविताएं हैं, जो आप उनकी लाइव प्रेजेंटेशन देख सकते हैं इस कार्यक्रम में आके। बहुत खूबसूरती से इसे जो है संगीतबद्ध किया गया, और खास बात यह है कि ज्यादातर प्रोफेशनल सिंगर्स मुंबई से आए हैं इसको कार्यक्रम को मैं भाग लेने के लिए। उनके जो है सुंदर जो है कंठ से आप गीत सुन सकते हैं नीरज साहब के। नीरज साहब ने 150 से ज्यादा फिल्मों में 150 से ज्यादा गीत लिखे, और कई गीत ऐसे हैं जो लोगों को नहीं मालूम, तो वो सारे गीतों को हम कोशिश करेंगे कि आप तक उनको, सारे श्रोताओं को पहुंचाया जाए। तो एक बहुत खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है, बहुत खूबसूरत शाम है। एक समय जब नीरज साहब जीवित थे तो उनके नाम पे एक शाम हुआ करती थी, आज की शाम नीरज के नाम, तो कल मैं कह सकता हूं तो आज की शाम नीरज के नाम तो जरूर है। कल की शाम कारवा गीतों का नीरज के नाम, उसमें सिग्नेचर सॉन्ग आप जरूर सुनने का मिलेगा नीरज साहब का, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: क्या बात है। और इस वक्त हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, मुझे ही इतने अच्छा फील आ रहा है, और ऐसा इतना उत्साह हो रहा है कि इस कार्यक्रम को जरूर देखने जाएं। और जैसे कि नीरज साहब की अनकही कहानियों को एक संगीतमय तरीके से प्रस्तुत करने की ये जो इवेंट है, अगर जैसे आपने बताया कि उनके जीवन में इतने सारे प्रसंग रहे, अगर उनमें से कोई एक प्रसंग हमारे श्रोता आज सुन ले तो?
1: बिल्कुल, मैं जरूर, ऐसे कई सारे प्रसंग हैं जो मैं आपको कल, आप जब मिलेंगे सब लोग तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन एक आध प्रसंग मैं सुना देता हूं। नीरज साहब का पहले एक दोहा सुना देता हूं, क्योंकि उसके बिना जो है बात अधूरी रह जाएगी। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य और कवि होना सौभाग्य है। तो जितने भी कल श्रोता जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि उस रसधारा में डूबे। और एक प्रसंग मुझे याद आता है कि बहुत समय पुरानी बात है, नीरज साहब इटावा कवि सम्मेलन पाठ करने गए थे, तो जब वहां से लौट रहे थे तो रास्ता जो है, जीप से लौट रहे थे तो रास्ता ड्राइवर ने अलग ले लिया, तो गाड़ी मुरैना होती हुई आई थी जो ग्वालियर में है, और मुरैना बहुत फेमस था दस्यु गृहों के लिए। नीरज साहब को पकड़ लिया गया, और पकड़ा भी किसने, उस समय के जो है बहुत बड़े दस्यु सम्राट हुआ करते थे डाकू मान सिंह ने उन्हें पकड़ लिया। तो नीरज साहब से कहा कि तुम्हारे लोगों के जेब में जितने भी पैसे हैं वो सब निकाल के हमें दीजिए। तो नीरज साहब ने कहा साहब मैं तो कवि आदमी हूँ, कवि सम्मेलन पढ़ने गया था तो वहां से लौट रहा था, कुछ पारिश्रमिक जो कुछ पैसा थोड़ा बहुत मिला है उससे मेरा घर परिवार चलता है। बोला हम कैसे मान लें कि तुम कवि हो। तो नीरज साहब ने दो चार उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई तो तुरंत उसी सम्राट बोलते यार क्या नगमा गूंजता है तुम्हारे कंठ से, और पुरस्कार में 51 रुपए भी नीरज साहब को दिए। तो ऐसी तमाम कही अनकही कहानियां हैं जो मैं एक एक करके सुनाऊं। मृत्यु से मृत्यु दूत से

0: जैसा आपका कैसे संवाद हुआ, और उस पर एक पूरी कविता लिखी है, चलता हूं मैं भी चलता हूं। तो इस तरह की तमाम जो है प्रसंग हैं, देव साहब से उनकी कैसे मुलाकात हुई, और वो सारी चीजें मैं एक एक करके आपको हम सुनाएंगे। काफी एंकर्स हैं उसके अंदर, वो सुनाएंगे, और जो गाने गाने के लिए आ रहे हैं, गायक जो आ रहे हैं वो मुंबई से आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक स्तरीय प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जरूर आइए, मेरा सबने निवेदन है आप लोगों से।
1: जी बिल्कुल, ज़रूर आएंगे। और इस वक्त हमारे श्रोता जितने भी सुन रहे हैं, एक बार हम उन्हें फिर से याद दिला देते हैं कि कल शाम यानी कि 4 अक्टूबर को शाम 7 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। 6:45 तक आप अपना वहाँ पे सीट बुक कर लीजिए, बैठ जाइए, और ये मावलंकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में ये प्रोग्राम होने वाला है। और हिंदी दिवस कारवा गीतों का नीरज, ये बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है, और आज हमारे बीच उनके सुपुत्र मृगांक प्रभाकर जी मौजूद हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर आज इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं?
0: बिल्कुल, देखिए नीरज साहब के मुझे तो शेर याद हैं, मुझे और कवियों को भी शेर याद हैं। कभी कभी मैं मन में सोचता हूँ कि बादलों से सलाम लेता हूँ, बादलों से सलाम लेता हूँ, वक्त के हाथ थाम लेता हूँ, और मौत भी मर जाती है पल भर के लिए जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ। तो वो जिंदा जो जिंदा दिली नीरज साहब के पास थी, जब मैं हाथों में जाम लेता हूँ, वो जिंदा दिली कैसी आई? वो नीरज को बेसिकली, मैं नीरज साहब को मैं बेसिकली करुणा का कवि मानता हूँ। ना जन्म कुछ ना मृत्यु कुछ, बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। तो कहाँ से वो दर्शन, वो कैसे जाम में उतरता है, वो कैसे प्रेम पत्र में, उनके गीत आप सुनेंगे तो सब रोमांटिक मेलोडी सुनाई देंगी। रंगीला रे सुने प्रेम प्रा, शोकियों में गोला जाए फूलों का शबा। तो ये नीरज साहब का ये दर्शन, पूरा दर्शन है, जो प्रेम में भी बीता, वो करुणा में भी बीता, वो और भावों में बीता चला गया। तो मैंने कोशिश की है कि हर विधा से उनके हर रूप को मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। इससे पहले मैंने मुंबई में भी प्रोग्राम किया था, बहुत मुझे अपार उसमें जो है लोगों का प्रेम और स्नेह मिला। तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं अपने जो दिल्ली के लोग हैं उनके बीच में ये प्रोग्राम प्रस्तुत करूं और दिखाऊं कि नीरज साहब क्या लिख के गए हैं 77 साल तक, वो किस तरह से चीजों को लिखते रहे, किस तरह से उनका साहित्य में योगदान था, वो ही मैंने संगीतबद्ध करने की कोशिश की है। सबसे निवेदन है कृपया जरूर जो मुझे सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यूं समझिए नीरज साहब का पुत्र आपसे कह रहा है कि आप आइए और नीरज साहब के साहित्यिक जो यज्ञ है उसमें सब मिलके हम आप आहुति देंगे। तो सबने निवेदन है जरूर आइए प्रोग्राम में।
1: जी जरूर जरूर जरूर, और बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए, और इतना आपने हमें कहते ना उत्साहित कर दिया है कि मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों की तरफ से मुझे तो एक प्रॉमिस करना होगा कि हमारे दिल्ली वाले वहां जरूर आने वाले हैं, और इस शाम का, इस गजब सी शाम का बहुत ही लुत्फ उठाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये तो कितनी खूबसूरत सी बात हो गई है, और जैसे कि हमने बताया कि नीरज साहब की बात करी हमने, नीरज साहब की एक कहते ना कि यशस्वी कवियों में से एक है, और हृदय की गहराइयों से वो लिखते थे, और वो जो कविताएं होती थी वो सच में हमें छूती थी। तो आइए उन्हीं कविताओं में से कुछ कविताओं की जो बातें हुई हैं वो उन्हें हम फिल्मों में भी देख चुके हैं, गानों का रूप ले लिया उन कविताओं ने, तो उन्हीं कविताओं में से एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत बना जो आज भी सबकी जुबान पर है।
2: फूलों का शबा, उसमें फिर

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम सिटी लाइट्स में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सीमा। चलिए अब वक्त तो बहुत तेजी से आगे दौड़ रहा है, हमें भी तो वक्त के साथ दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दौड़ते दौड़ते आपको मैं ज़रूर ही बताऊंगी कि जो आजकल आपको पता है कि कॉलेजेस में भी युवाओं के वोटर लिस्ट में नाम किस तरीके से जल्दी आ जाएं, इसके लिए भी कैंप लगाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में भी युवा वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए जो चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग है, उन्होंने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में स्पेशल कैंप लगाए हैं और लगाए जा रहे हैं और आगे भी लगाए जाएंगे। और लास्ट वीक भी कुछ कैंप लगे थे, और साथ ही 7 और 8 अक्टूबर को भी सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में कैंप लगाए जाएंगे। 4 और 11 अक्टूबर को भी सभी मतदाता केंद्रों पर सभी कैटेगरी के वोटर्स के नाम जोड़ने के लिए कैंप लगेंगे। यानी कल की बात कर रही हूँ मैं, कल भी आपके पास वक्त है। अगर अभी तक आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा है तो आप ज़रूर उसे अप्लाई करिएगा। और आपको बताएं कि बूथ BLO जो होते हैं फॉर्म भरने में आपकी मदद करेंगे, और आपके जो फॉर्म्स जो सबमिट हो गए हैं, SIR से जुड़े सवालों के जवाब, ये सभी आप आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जानकी देवी कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय, और इसके अलावा महारानी बाग में IIT मंगोलपुरी, ITI जहांगीरपुरी, इन सब जगह पे कैंप लग रहे हैं। और हालांकि लिस्ट में शामिल कुछ कॉलेजेस जैसे कि DU के इरविन कॉलेज और माता सुंदरी कॉलेज कैंप में नहीं है, ठीक है, नहीं है। और बहुत सारे SIR के शेड्यूल्स में भी बदलाव किया गया है। और अगर 30 अक्टूबर तक के अगर जो भी कोई इश्यूज़ हैं तो 30 अक्टूबर तक आप उन इश्यूज़ को देख सकते हैं, और उसके लिए आपको नोटिस भी मिलेगा, और नोटिस पे निपटारा 30 नवंबर तक हो जाएगा, और आखिरी जो वोटर लिस्ट है वो 4 दिसंबर को जारी हो जाएगी। अगर अक्टूबर 2026 या उससे पहले 18 साल की उम्र आप पूरा कर रहे हैं तो आप फॉर्म 6 के ज़रिए अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो कैंप मैंने बताया जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं, इन कैंप्स में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगे, BLOs आपको वहाँ पे मिलेंगे, और क्या, अब हम नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे बाद कौन मिलेंगे, हमारे बाद वीर दमन मिलेंगे। जी हाँ, वीर दमन मिलेंगे हमारे बाद मैसेज मसाला मिक्स में, और इस ट्रैक के साथ साथ पता है लाई तो बहुत सारी खबरें थी मैं, आय हाय टाइम को पता ही नहीं चला कहाँ चला गया इतना सारा वक्त। आपके साथ वक्त बिताना इतना अच्छा लगता है ना कि पता ही नहीं चलता है समय कहाँ चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मुलाकात करूँगी आपके साथ, बहुत जल्द आऊँगी आपके पास, और ढेर सारी बातों का सिलसिला यूँ ही शुरू करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मस्त रहिए, हंसते रहिए, और मुझे याद करते रहिए। तब तक सीमा को दीदी जी इजाजत आपके प्रोग्राम।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में प्रत्येक देश के पास गोला बारूद, विमान परिचालन प्रणाली, समिति, रसद आपूर्ति का भंडार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। होमुज जल डमरू मध्य में

कुवैत के ध्वज वाले टैंकरों पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया। एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वहीं क्रिकेट में भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये तो थे अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर धवन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स। तो एक बार फिर जुड़ जाइए दिल से दिल तक आकाशवाणी FM रेनबो पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर धवन। और दोस्तों, आज आपको इंतजार होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक लेके आए हैं। तो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही सिंपल है। टॉपिक ये है दोस्त कि अगर आपको कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़े, जी हाँ, इफ यू हैड टू डिक्लेयर ए पब्लिक हॉलीडे व्हाट वुड बी लाइक, कौन सा हो सकता है? अगर आपको कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित करना हो तो वो क्या होगा, कौन सा होगा और क्यों होगा? जी हाँ, कोई होता है ना, आज तो ये पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए था, ये इस दिन तो छुट्टी होनी ही चाहिए, पूरी हर तरह से पूरा सब कुछ छुट्टी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज सब छुट्टी में होने चाहिए, लेकिन वो दिन कौन सा होना चाहिए? अब ये मत कहिएगा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन आपके, यानी कि आपके जन्मदिन वाले दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। ये ऐसे होने लग गया तो पूरे साल के 365 दिन ही पब्लिक हॉलीडे हो जाएगा दोस्त, क्योंकि हर रोज़ किसी ना किसी का तो जन्मदिन होता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा दिन होना चाहिए आपके हिसाब से जिस दिन पब्लिक हॉलीडे भी होना चाहिए। ऐसा कोई दिन वैसे तो होता ही है, 2 अक्टूबर है अभी था कल, और 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे कई त्यौहार हैं हमारे देश में जो पब्लिक हॉलीडे होते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा दिन है जो पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए आपके हिसाब से। जल्दी से लिख के भेजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070। फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत गीता और उसके बाद आपके मैसेजेस का सिलसिला चलेगा, और जो बारिश होगी ना मैसेजेस की वो तो मैं जानता ही हूँ, झमाझम बारिश होगी हमारे स्टूडियो में। और फिलहाल आपके लिए ये खूबसूरत ट्रैक एंजॉय कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।

दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज का टॉपिक है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़े, आपको अगर डिक्लेयर करना पड़े तो वो कौन सा दिन होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपका जन्मदिन जो है वो पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्त। पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए कोई, जैसे आपने कह दिया कि आज फादर्स डे है उस दिन होना चाहिए, कोई कहता है लेज़ी डे है जी, आज काम करने का मन नहीं है, तो आज हमारा होना चाहिए जी भाई, आज तो पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा दिन पब्लिक हॉलीडे आपके हिसाब से होना चाहिए। जल्दी से लिख के भेजिए 9868107070 हमारा नंबर है, अपने नाम और शहर के नाम के साथ भेजिएगा।

और बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमारे साथ। डॉक्टर विकास धिकाव रोहिणी दिल्ली से लिखते हैं कि गाने अच्छे चल रहे हैं, शाम का मौसम सुहाना है, एफएम रेनबो का सफ़र है, सोने पे सुहागा लगता है, अगर संभव हो तो कोई एक बढ़िया सा गाना सुना दीजिए। गाने तो सभी बढ़िया हैं दोस्त, गाने आपके पसंद के होने चाहिए, है ना, आपकी पसंद के ही गाने चला रहे हैं हम। और राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं गुड इवनिंग और कहते हैं कि आज हमारे प्रिय विविध भारती जी से की सेवा शुरुआत हुई थी और एफएम रेनबो के माध्यम से मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आकाशवाणी को, तो थैंक यू सो मच और आपकी शुभकामनाएं हम ज़रूर पहुंचा देंगे। विविध भारती के जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़े तो आप कौन सा वो पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहेंगे, जल्दी से लिखकर भेजिए। 9868107070 हमारा नंबर है और आपसे जानना चाहता हूँ, जल्दी से लिख के भेजेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और देर से लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपका मैसेज तो हम शामिल कर ही लेंगे। नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से कह रहे हैं कि जी हमारी हाजिरी भी लगा दीजिए, आपकी भी हाजिरी लग गई है जी, आप भी हाजिर है। और किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, उनकी भी हाजिरी लग गई है, उनको भी अटेंडेंस लग गई है मेरे। और अगला मैसेज हमें भेजा है सोनू ने बिजनौर से, लिखते हैं मेरे हिसाब से पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए वैलेंटाइन डे, इससे बेहतर रहेगा कि ये पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। भाई ऐसा क्यों होना चाहिए ये भी तो लिख के भेजिए ना, रीज़न क्यों आपके हिसाब से होना चाहिए। और अगला मैसेज हमें भेजा है नवाब अहमद भारती ने बल्ली मारा से, दिखते हैं अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मैं चाहूँगा जिस दिन मेरी शादी हो उस दिन पब्लिक हॉलीडे रहे, सब मेरी बारात में नाचें गाएं धूम मचाएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये भी एक पिक्चर आई थी भाग मिल्खा भाग में, उसमें भी ऐसे ही था कि दोस्त वो कहते हैं कि जिस दिन मैं अवार्ड जीत के आऊँ ना उस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, तो आपने भी कहा कि जिस दिन मेरी शादी हो उस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। खैर वो तो पूरे देश के लिए गर्व की बात थी, लेकिन आपकी शादी हो रही है ये भी आपके लिए गर्व की बात हो सकती है। पब्लिक हॉलीडे क्यों होना चाहिए, क्योंकि सब शामिल हों इसलिए। क्या बात है, बहुत खूब। और आम पब्लिक हॉलीडे परिवार के साथ मस्ती का दिन माह में एक शुक्रवार को होना चाहिए, जिस दिन जिसे एक दिन छुट्टी मस्ती का और बचे दो हॉलीडे घर परिवार के काम के रिजर्व होंगे। अनिल शर्मा सरता विहार से लिखते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, एक जो है फ्राइडे का दिन महीने में वो पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, जिससे हम पब्लिक अपने जो परिवार वालों के साथ है वो स्पेंड कर सकें और बाकी घर के काम काज के लिए सैटरडे और संडे हम रिज़र्व कर सकें। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्होंने, ये भेजा है मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान और अब्बान अब्बासी ने, लिखते हैं कि हमारे हिसाब से फादर डे होना चाहिए पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि अपने बच्चों की कामयाबी खातिर हर रोज़ जद्दोजहद में लगे रहते हैं पिता। और बिल्कुल सही कहा, ये अपर कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से उन्होंने मैसेज भेजा है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही फरमाया। और पिता के लिए एक दिन तो होना ही चाहिए, उनके नाम के लिए एक पब्लिक हॉलीडे। आज के टॉपिक पे संबंधित मेरा जवाब यही है कि जिस व्यक्ति की ज़रूरत हो तब अवकाश लें, वरना सार्वजनिक अवकाश बंद होने चाहिए। क्या बात है, राष्ट्रीय पर्व पर होने वाले अवकाश को लोग पिकनिक के रूप में इस्तेमाल करने लगे हैं, इसका मूल अवधारणा से सरोकार नहीं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, देहरादून से आलोक पवार और मिनी, इन्होंने तो जी सारे पब्लिक हॉलीडे ही बंद करवा देने हैं। तो चलो हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना है, कोई बात नहीं, आप भी लिख के भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर नहीं आपके पास, अरे नोट कीजिए ना, मैं बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, नोट कर लिया ना। अब जल्दी से मैसेज भेजिए अपने नाम और शहर के नाम के साथ, और तब तक ही आप सॉन्ग को एंजॉय कीजिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए तो जिंदगी में रंग भर दे।
7: मेरी जैसी मेरी अपनी पताका,
6: पताका चाय, गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। कभी कभार हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग हमारा भी हो जाता है दोस्त। और दोस्त, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है टॉपिक। आज का टॉपिक जो है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आपको डिक्लेयर करना पड़े तो वो कौन सा होगा। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब समय है एशियन गेम्स 2026 की अपडेट का।
9: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
10: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ दोस्तों साक्षी मांडवाल। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद आजमी और हम लेकर आ गए हैं शाम के 6:30 बजे की लाइव अपडेट्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026। आप सबको बता दें कि भारत का ऑफिशियली जो सफर था 2026 के एशियन गेम्स में अब आकर समाप्त हो चुका है। जी हाँ, ऑल द इवेंट्स हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड फॉर द इंडियन कंटिंजेंट इन द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड विद दैट इंडिया हैज फिनिश्ड देयर प्लेस ऑन द फोर्थ स्पॉट इन द मेडल टैली। जी हाँ, चौथे स्थान पर भारत ने अपना सफर मेडल टेबल पे खत्म किया है। कुल मिलाकर भारत के पास है 85 मेडल्स, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। द डे स्टार्टेड फॉर इंडिया टुडे ऑन अ स्वीट नोट। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास गोल्ड आया गोल्फ से, जहां पर एक रिकॉर्ड या हिस्ट्री भी बनी। उसके बाद आर्चरी से आया, फिर क्रिकेट ने हमें दिया और फाइनली हमें हॉकी ने गोल्ड देकर दिन की समाप्ति भी करी। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट रेसलिंग में भी हमें आज एक गोल्ड मिला है। इस सब के बारे में तो शायद आपको बताएंगे, बट मैं आपको एक सरसरी नजर से लेकर चलती हूँ कि मेडल टेबल के अंदर जो हमारे मेडल्स आए हैं वो किस इवेंट में कितने कितने आए। आर्चरी के अंदर हमने पाए हैं टोल कुल मिलाकर 9 मेडल्स, इसमें से 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। एक ऐसा ये स्पोर्ट रहा जिसमें सबसे ज्यादा मेडल्स भारत ने कमाए अपने लिए, 24 टोटल। बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज। क्रिकेट में महिलाएं और पुरुष दोनों ने ही T20 क्रिकेट के अंदर 2 गोल्ड भारत को एशियन गेम्स में दिलवाया। गोल्फ में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर। हॉकी में 2 गोल्ड, महिलाएं और पुरुष दोनों ने भारत को अब की बार गोल्ड मेडल दिलवाया। कबड्डी में 2 गोल्ड, कुराश में 1 ब्रॉन्ज, मिक्स मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज, सेलिंग में 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, सेपेक्टक्रो में 1 ब्रॉन्ज, शूटिंग में कुल मिला के 15 मेडल, 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज।
11: जी, और आज 3 स्वर्ण पदक एक ही दिन में आए। सबसे पहले बात करेंगे तीरंदाजी की। कुमकुम अनिल मोहोद ने महिला रेकर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में कुमकुम ने कोरिया की ओएन जिन को 5-6 के यानी 6-5 से कड़े मुकाबले में शिकस्त दी। और हॉकी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया, स्वर्ण पदक जीत लिया। यहां पर मलेशिया को 5-1 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। महिलाओं ने भी खिताब अपने नाम किया, पुरुषों ने खिताब अपने नाम किया। यानी जिस तरह क्रिकेट में 2 पदक आए हैं गोल्ड,

0: हॉकी में दो गोल्ड आए हैं। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में अमन ने उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग को 11-7 से हराया। वहीं अंतिम पंघाल ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्होंने जापान की मोए क्योका को 1-9 से, उनसे जो मुकाबला था क्योका से, अंतिम पंघाल को 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। कुश्ती में दीपक पुनिया ने भी पुरुषों के फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम में कांस्य पदक अपने नाम किया। यानी भारत के नजरिए से देखा जाए तो जब भारत के तमाम खेल खत्म हो गए, आज के दिन 3 स्वर्ण पदक बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: जी, और क्योंकि हम आपको मेडल टेबल में बता रहे थे तो थोड़ा आगे चलते कुछ और इवेंट्स जो बचे हुए हैं। उसमें है सॉफ्ट टेनिस जिसमें 1 ब्रॉन्ज आया, स्क्वॉश में हमने 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज कमाए हैं, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में कुल मिलाकर 6 मेडल्स भारत ने कमाए, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, और वुशू में 1 सिल्वर भारत ने कमाया। तो इसलिए भारत ने अपना 2026 का एशियन गेम्स का सफर कुल मिलाकर 85 मेडल्स पर समाप्त किया, 21 गोल्ड, एंड होपफुली व्हेन टुमारो देयर इज एन इवेंट उज्बेकिस्तान, क्योंकि अभी हमारे साथ 21 गोल्ड पर ही टाइड है। उज्बेकिस्तान का भी एक और इवेंट बचता है कल इक्वेस्ट्रियन के अंदर, तो देखना होगा कि क्या इक्वेस्ट्रियन के अंदर उज्बेकिस्तान कल गोल्ड अपने लिए ला पाता है कि नहीं। चांसेस उसके कैसे हैं, हाईली अनलाइकली कह रहे हैं लोग, लेकिन एक्सपर्ट्स खासतौर से, बट वील हैव टू सी टिल इट गेट्स ऑफिशियल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारत को माना जाएगा शायद कि हम चौथे स्थान पर ही मेडल टेबल पर,
0: बिल्कुल होप कि हम चौथे स्थान पर खत्म करेंगे। लेकिन हम उन खिलाड़ियों की भी बात, श्रोताओं तक बात पहुंचाएं कि जिन्होंने एक से ज्यादा भारत के लिए मेडल जीते। भारत की बात करें तो आर्चर कुमकुम मोहोत के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक आया, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। जी हाँ, 3 पदक इन दोनों खिलाड़ियों ने जीते, दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर है। नीरू ने निशानेबाजी ट्रैप व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, वहीं ट्रैप में महिलाओं की टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल हासिल किया। वहीं कुमकुम मोहोद ने रिकर्व व्यक्तिगत और टीम में गोल्ड मेडल जीता, जबकि मिश्रित टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम ने तीसरे स्थान पर रहते हुए कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड 3 इसके अलावा सहित 3 पदक जीते, जबकि निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 2 रजत पदक समेत 3 पदक जीते हैं। यह है भारत के वो खिलाड़ी जिन्होंने एक से ज्यादा पदक जीते हैं। लेकिन अगले 1 घंटे बाद क्या कुछ और नया ताजा आता है और भारत का क्या कुछ ओवरऑल प्रदर्शन रहा, हम अगले 1 घंटे बाद आपको बताएंगे। फिलहाल मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को ठीक 7:30 बजे तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स और आज का टॉपिक है दोस्तों कि अगर कोई पब्लिक हॉलिडे सार्वजनिक अवकाश कोई आपको डिक्लेयर करना पड़े तो कौन सा होगा। जी हाँ, हर एक की अपनी अपनी राय है, अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी सोच है, समझ है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा दिन जो है होना चाहिए जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, तो जल्दी से लिखकर भेजिए 9868107070। वैसे मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आपको सुझाव दे सकता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई सुझाव मांगे नहीं तो क्यों देने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सुझाव हम दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और सुझाव ये है दोस्तों कि कोई लेजी डे होना चाहिए, कोई कह रहा है वैलेंटाइन डे होना चाहिए, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा दिन होना चाहिए जब पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे तो वैसे पूरे साल ही होते हैं, लेकिन आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें कि मेरा जन्मदिन जी उस दिन, जिस दिन मेरा जन्मदिन होता है उसी दिन आप पब्लिक हॉलीडे कर दो। उस हिसाब से तो 365 दिन ना पूरे साल ही छुट्टियां ही मनाते रहेंगे, फिर काम कब करेंगे, है ना। तो आप अपने हिसाब से बताइए। शुभ संध्या, ये लिख के भेजा है अश्वंत, यशवंत आठमुड़े धाराशिव महाराष्ट्र से। लेकिन दोस्त आपने लिख के नहीं भेजा कि आपके हिसाब से कौन सा दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। कवि प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से लिखते हैं, अपना कोई खोए ना, तन्हाई में रोए ना, आओ मिलकर करें हम ऐसा कि अपनी प्यारी इस दुनिया में भूखा कोई सोए ना, भूखा कोई सोए नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। और अगला मैसेज जो हमें

भेजा है, किन्नू ने भेजा है ये, हमें भेजा है किन्नू ने, ये बार बार उन्होंने रिपीट मैसेज भेजा है। लेकिन कुछ हमारे और दोस्त भी हैं जिन्होंने हमें मैसेज भेजा है, ये सोनू ने हमें भेजा है। सोनू अभी कह रहे हैं कि हम भी जुड़ गए हैं। जी सोनू जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है हमारे शो में। और अगला मैसेज हमें भेजा है किन्नू ने, ये भेजा है, नाम नहीं भेजा, हाँ सुदर्शना मुखी, अनीता मुखी जी ने भेजा है सोनीपत से शांतिनगर। लिखते हैं इन्होंने क्या लिख के भेजा है, ये लिख के भेज रहे हैं दोस्त कि स्वस्थ सुंदर प्रणाम, स्वस्थ सादर प्रणाम, सुंदर प्रणाम। हमारे विचार से आज जो पब्लिक हॉलिडे हैं वो सफिशिएंट है, और पब्लिक हॉलिडे नहीं होने चाहिए। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, अगर हमें ऐसा मौका मिला तो हम आगे और नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे पास भी ऐसा नहीं है। पर मैंने आपसे सुझाव पूछा है कि अगर ऐसा कोई हो तो कौन सा दिन होना चाहिए आपके हिसाब से। और ये अगला निधि ने पंचकुला से लिख के भेजा, माई वोट इज फॉर एवरी मंडे टू बी पब्लिक हॉलीडे बिकॉज संडे एंड्स वेरी सून, मंडे अराइव्स विद एब्सोल्युटली नो मर्सी। ऐसा नहीं है दोस्त, संडे को अगर हम छुट्टी डिक्लेयर हो गई, मंडे को भी चलिए हम मान लेते हैं 1% की छुट्टी डिक्लेयर हो जाए, तो क्या गारंटी है कि आप ट्यूसडे को नहीं कहेंगे? क्योंकि हम भी ऐसे होता था कि बच्चे जब होते थे ना स्कूल में जाते थे, हमें मंडे सबसे बेकार लगता था, पता क्यों? क्योंकि हम कहते थे कि मंडे आज स्कूल जाना पड़ेगा, सुबह उठते थे सोचते थे यार मंडे होता क्यों है, कभी कभार ऐसा सोचते थे। संडे के दिन हमें बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन संडे जैसे ही शाम होती थी ना, रात होती थी, अरे सुबह स्कूल जाना है। और सैटरडे तो बहुत मज़ा आता था, सैटरडे ऐसे सोचते थे आज तो सैटरडे, वैसे भी कभी कभार पढ़ाई नहीं होती थी उस दिन, स्कूल में खेलना कूदना होता था, तो सैटरडे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन संडे हम कहते थे संडे बहुत बढ़िया, लेकिन मंडे आप कह रहे हैं कि मंडे पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, तो ट्यूसडे क्या गारंटी है कि आप ट्यूसडे नहीं कहोगे? कई लोग कहेंगे ट्यूसडे भी होना चाहिए अगर मंडे ऐसा होने लग गया तो। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है निधि जी, थैंक यू सो मच। बुरा ये नहीं लगा कि तुम अजीज हो, कोई और है, दर्द तब हुआ जब हम नज़रअंदाज किए गए, क्या बात है। अब तो मेरे दुश्मन भी मुझसे कहकर अकेला छोड़ गए कि जा तेरे अपने ही बहुत हैं तुझे रुलाने के लिए। मोहम्मद सैयद अब्बासी बुलंद शहर से, ऐसा क्यों कह रहे हो दोस्त, ऐसा तो नहीं हमने कहा था। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिखते हैं, 23 जनवरी को अवकाश घोषित होना चाहिए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी का इस दिन जन्म होता है। उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद जय भारत, क्या बात है। थैंक यू सो मच आपने अपना सुझाव दिया। रेडियो वर्ल्ड रेडियो दे एक और सुझाव आया, 13 फरवरी को मनाया जाता है, हम तो बोलेंगे पब्लिक हॉलिडे होना चाहिए जी। अमर रमेश कुमार खत्री चनेश्वर गौत, अरे क्या बात है अमर रमेश कुमार जी, आपने हमारा दिल की बात छीन ली। और पब्लिक हॉलिडे कब मनाया जाता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको गुड इवनिंग शाम सुहानी, नया पारा भराई से बसंत कुमार ठाकुर, पप्पू ठाकुर। भाई पब्लिक हॉलिडे, भाई मेरे दोस्त यही होता है पब्लिक हॉलिडे, जिस दिन हम 2 अक्टूबर हो गई, जिस दिन पूरी ऑफिसेज वगैरह गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए और हर स्कूल ऑफिस बंद होता है, कॉलेज बंद होते हैं, वो हम पब्लिक हॉलिडे गए, बैंक बंद होते हैं, वो पब्लिक हॉलिडे हो गया ना दोस्त। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पब्लिक हॉलिडे कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से, और एक पब्लिक हॉलिडे होना चाहिए। फिलहाल एक मैसेज लेते हैं और उसके बाद म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये भेजा है ओखला संगम बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। दोस्त मैं लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पब्लिक हॉलीडे कौन सा होना चाहिए अगर आपको मौका मिले। अगर मैं बच्चों से पूछता ना, बच्चे तो कहते सारे ही छुट्टी होनी चाहिए, कुछ मतलब टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, स्कूल जाने की चिंता ही नहीं होनी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दो, जिस दिन मन करे पब्लिक हॉलीडे है।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। और आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा जिस दिन आप पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहेंगे, यानी कि सार्वजनिक अवकाश, सबकी छुट्टी हो, सब अपना इंजॉय करें, मौज मस्ती करें, घर पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। विजेंद्र घटोल अको

महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि हमारी अटेंडेंस भी लगा लीजिए, आपकी भी अटेंडेंस लगा ली। और रुंझुन शर्मा कह रही हैं कि हर सैटरडे को छुट्टी होनी चाहिए, हर सैटरडे को छुट्टी होनी चाहिए, पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, क्योंकि हमारा नहीं होता है। इतना तो बेसिक है, सभी को हफ्ते में दो दिन तो मिलने ही चाहिए। ये फरीदाबाद से उन्होंने मैसेज भेजा है, बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो होना चाहिए भाई, है ना। और अगला मैसेज हमें भेजा है आदिल कमार तस्दीक अली मुजफ्फर अली ने, लिखते हैं कि जब जब आपका प्रोग्राम आता है ना, वही दिन खुशी खुशी का हमारी हो जाना है। जब जब प्रोग्राम में आना है वही दिन हर रोज़ खुशी का हमारी हो जाना है। क्या बात है, लेकिन आपने नहीं बताया कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। आदिल जी ये लिख कर ज़रूर भेजिए, आपसे भी जानना चाहते हैं। लूणा राम नागौर राजस्थान से, सर पब्लिक हॉलीडे 1 फरवरी को रेडियो डे के रूप में होना चाहिए, इस दिन सभी रेडियो सुन और सभी के बेनिफिट्स को जाने। आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी में मोबाइल से इतने व्यस्त रहते हैं कि रेडियो हम काम करते हुए भी सुन सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रेडियो का एक सबसे बड़ा फायदा है कि हम काम करते हुए भी सुन सकते हैं, अपने काम भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे माइंड को भी एक थेरेपी की तरह जो है सुकून देता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। और सुहास दुर्गापुर से लिखते हैं, आई फील सबके पास एक ऐसा दिन का परमिशन रहना चाहिए कि जिस दिन वो खुद को काम से मुक्त करवा सकें, चाहे वो हफ्ते में किसी भी दिन हो, जिस दिन उसे कोई सवाल नहीं करेगा, ना ही किसी को कोई जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कर रहता है, बस हॉलीडे बोल के वो निकल लेगा अपना काम से, बस एक ऐसा फ्रीडम डे होना चाहिए। क्या बात है, बड़ा यूनिक आइडिया दिया है यार, बहुत यूनिक आपने आइडिया दिया है दोस्त, कि एक फ्रीडम डे होना चाहिए जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, फ्रीडम डे एक दिन महीने में होना चाहिए कि जिस दिन, पर होता है ना सीएल होती हैं, ईएल होती हैं, आप ले सकते हैं, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए, उस दिन कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछेगा, बिल्कुल। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, चिल्पा रानी, आकाश कुमार हमारा भी संदेश शामिल करने, जिस दिन मनाना चाहें उसे दिन पूरा परिवार के साथ मनाएं, अच्छे से बिताएं, वही पब्लिक डे होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगला मैसेज जो हमें भेजा है, ये भेजा है, मेरे हिसाब से जिस दिन मानव अधिकार दिवस शुरू हुआ था और मनाया जाता है उसी दिन को छुट्टी घोषित करवा देता है, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी वही है। प्रकाश घुगिया जी, ये मैंने पहले कंडीशन लिखी थी कि दोस्त जिस दिन आपका बर्थडे हो उस दिन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जिस दिन मानव अधिकार दिवस हम मनाते हैं वो पब्लिक हॉलीडे होता है, होना चाहिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उस दिन वो पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए आपने ये कहा है ना। चलिए, ये आपने अच्छा सजेशन दिया। और मैं नवुल वरक फ्रॉम मलपण जिला उत्तर गोवा से, पब्लिक हॉलीडे जिस दिन होना चाहिए उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन हो। अरे दोस्त, फिर आपने वही कंडीशन, सर गोवा में इन दिनों बारिश हो ना होने से बहुत गर्मी है, बहुत बहुत बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि ये समर सीजन है जैसे। ओहो, गोवा में भी इतनी गर्मी होती है क्या, मैं तो सोचा समंदर का किनारा है, क्या मौसम सुहाना है। कोई बात नहीं दोस्त, 20 अगस्त को उस दिन रेडियो श्रोता दिवस मनाया जाता है, उस दिन सभी की छुट्टी होनी चाहिए। पिंटू दीवाना, बबलू कश्यप, नवाब अहमद भारती, सिराज मिथुन, अशरफ अली, संजय मालकर मंगोलपुरी से, आपने भी अच्छा सुझाव दिया, थैंक यू सो मच आप सभी का तहे दिल से, और आप सभी का स्वागत है। मेरे हिसाब से मंडे को पब्लिक हॉलीडे करना चाहिए, संडे को जल्दी ख़त्म हो जाता है, मंडे को काम करने का मन नहीं करता, इसलिए मंडे को हॉलीडे घोषित करना चाहिए, मेरी तरफ से ओके है। ओके, आपने बोल दिया। ये जयंता कर्माकर केरल से लिखते हैं कि आपकी तरफ से ओके है आपके करने से नहीं होता ना दोस्त, लेकिन आपने प्रस्ताव दिया है, अच्छा दिया है। और मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता, आपका मैसेज हमने ले लिया, आप मैसेज कर रहे हैं, आपका मैसेज शामिल कर दिया। अनुज यादव लखनऊ से लिखते हैं, मैं प्रोग्राम झक्कास लग रहा है, थैंक यू सो मच, 31 को हॉलीडे होना चाहिए, 31 दिसंबर को हॉलीडे होना चाहिए, जिस दिन पूरा दिन पार्टी टाइम गुजरे। अरे क्या बात है, 31 को होना चाहिए, वैसे मेरा भी मानना है 31 दिसंबर को पूरी फैमिली के साथ स्पेंड करें,

और जॉनी कश्यप, विपिन कश्यप, मंगोलपुरी, बबलू कश्यप लिखते हैं 13 फरवरी रेडियो दिवस के दिन छुट्टी घोषित करें क्योंकि रेडियो हमारा जुनून है। क्या बात है। और पब्लिक हॉलीडे सभी दिन होने चाहिए। ज्योति घटोल, अकोला, महाराष्ट्र, पब्लिक हॉलीडे सारा दिन होने चाहिए, फिर काम क्यों करेंगे 365 दिन पब्लिक हॉलीडे। क्या बात कर रहे हैं दोस्त, ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पब्लिक हॉलीडे अगर होगा तो फिर काम कब करेंगे? हर कोई छुट्टी पे होगा। मेरे ख्याल से तो एक दिन छुट्टी का नहीं होना चाहिए, एक भी दिन, सभी दिन कामकाज हो। भूरे लाल वक्तरिया धाकड़, उन्हेल, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से। तो फिर सारा दिन काम करेंगे तो फिर बंदे को एक होता ना, माइंड को रिलैक्स चाहिए। विनोद कुकरेजा चंडीगढ़ से, वो भी कह रहे हैं कि मंडे को छुट्टी होनी चाहिए। क्या बात है जी, आप भी कह रहे हैं मंडे को छुट्टी होनी चाहिए। चलो अच्छा है, बहुत वोट आए हुए हैं, मंडे को छुट्टी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और आपके इतने मैसेजेस आए, और फिलहाल फिलहाल फिलहाल फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। आप भी मैसेज लिख सकते हैं, अभी भी समय है, 7 मिनट हैं, और आपसे 8 बजे फिर मुलाकात होगी म्यूजिक मस्ती में। कि अगर आपको कोई पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करने का मौका मिले या सार्वजनिक अवकाश, तो वो कौन सा दिन होगा? 9868107070 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम, शहर के नाम के साथ।

जी हाँ, कहते हैं मुझको हवा हवाई आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। ये हवा हवाई है प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और अगला मैसेज हमें भेजा है सोनिया त्यागी ने द्वारका से। लिखते हैं, फर्स्ट जनवरी जो है हॉलिडे होना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के साथ कुछ तो हमें भी अगले दिन के लिए रेस्ट चाहिए। 29 फरवरी को पब्लिक हॉलिडे होना चाहिए। नवाब अहमद भारती जी महाराज से क्या बात है। 29 फरवरी तो फिर लीप ईयर हो गया ना, 4 साल के बाद एक बार आएगा। चलिए, अच्छा अच्छा सजेशन है। फिलहाल आपसे मेरे को अब विदा लेनी होगी, और चलते चलते इतना ही कहेंगे कि अगला प्रोग्राम जो है वो आकांक्षा मिश्रा लेकर आ रही हैं, सैटरडे सिजलर्स लेकर आ रही हैं, 7 बजे रहेंगी आपके साथ, और 8 बजे एक बार फिर आपके साथ रहूंगा मैं म्यूजिक।

एक मस्ती में म्यूजिक मस्ती मस्ती भी करेंगे, म्यूजिक भी सुनेंगे, नाचेंगे गाएंगे, जिंदगी का जश्न मनाएंगे और क्या। फिलहाल अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नए सफर पर। जी हाँ, आप बजे ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने पड़ोसियों का भी और अपने दोस्तों का भी, है ना। तब तक बाय।

0: And it's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम 2026 की आज की अंतिम अपडेट में। आज बात करेंगे भारत ने क्या कुछ हासिल किया, इस एशियन गेम्स में क्या कुछ भारत की उपलब्धियां रही और आज के दिन क्या कुछ खास रहा एशियन गेम्स में। जैसा कि आज का दिन शानदार उपलब्धियों भरा रहा, भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 9 पदक अपने नाम किए। पुरुषों की हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जबकि अंतिम पंघाल ने रजत और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक हासिल किया। तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने कांस्य पदक हासिल किया। जबकि इस प्रदर्शन के साथ भारत के पदकों की संख्या 85 कुल हो गई जिनमें 21 स्वर्ण 27 रजत शामिल हैं। कांस्य पदक जिस तरह से भारत ने आज जीते, स्वर्ण पदक जीते हैं, यकीनी तौर पर कह सकते हैं भारत की जो मेडल टैली उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला साक्षी
3: जी। एंड अ क्विक अपडेट आल्सो एट हाउ द डे स्टार्टेड, देयर वर 2 अदर गोल्ड मेडल्स इन दिस लिस्ट ऑफ मेडल्स दैट इंडिया वाज एबल टू फिनिश विद ऑन द लास्ट डे ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। वन वाज एट द स्टार्ट ऑफ द डे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ वेयर प्रणवी उर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स 2026। अलोंग विद दैट प्रणवी उर्स, अदिति अशोक एंड दीक्षा डागर आल्सो claimed the silver medal in the women's team event in golf. Let us also tell you all that no Indian has won an individual gold in golf since Shiv Kapoor in 2002. So it was a 24-year-old long wait that finally came to an end when Pranavi Urs was finally able to get us the gold in the Asian Games 2026. Along with that, the big event of the day that happened was in the world of cricket, where it was not just the women who bought us the gold but also the men who clinched the gold in the Asian Games today by defeating Pakistan comfortably by a margin of 19 runs. Having won the toss and choosing to bat first, India posted a mammoth score of 211 runs, while Pakistan in return of chasing that target was only able to chase and put on board 192. Hence a good day for India overall, Shahid, with wrapping of the last day.
2: इस एशियन गेम्स में अगर हम मल्टीपल मेडलिस्ट की बात करें, जो वर्ल्ड लेवल पर हम एशियन गेम्स के मेडलिस्ट की बात करें, तो सबसे ऊपर हैं जो चीन की मेडलिस्ट हैं, चीन की तैराक है जांग झांगशुआ, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीतकर सबसे ऊपर बनी हैं। उनके नीचे बात करें उनके ही देश की तैराक यू इतिंग है, जिन्होंने 5 गोल्ड समेत 7 पदक जीते। इसी तरह चीन की ही तैराक जो तीसरी तैराक है ली बिंगजी ने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत की आर्चर कुमकुम मोहोद के खाते में 2 स्वर्ण और 1 रजत है, जबकि निशानेबाज नीरू ढांडा ने भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर समेत 3 पदक जीते हैं। दोनों संयुक्त रूप से टॉप पर बने। वहीं अगर बात करें तीसरी खिलाड़ी की बात करें तो भारत जो तीसरे खिलाड़ी कुमकुम मोहोद के अलावा बात करें तो तीरंदाज थिरुमुरु मणिरत्नम, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया इस लिस्ट में। कंपाउंड पुरुष टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। इसी तरह एथलीट विद्या रामराज ने 1 गोल्ड समेत 3 पदक जीते हैं, जबकि निशानेबाज रुद्रांक पाटिल 2 रजत समेत 3 पदक। इसके अलावा बात करें तो आर्चर ज्योति सुरेखा वेन, प्रतिका प्रदीप, साहिल राजेश जाधव, जिसके अलावा चिकिता तनिपार्थी और कुशल दलाल ने भी 2-2 गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया, यानी 2-2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं।
3: राइट नाउ

वेलकम बैक. यस, दिस इज द स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम रेनबो एंड द प्रोग्राम लाइव राइट नाउ ऑन योर एयरवेव्स इज कॉल्ड द सैटरडे सिज़लर्स. इट्स अ ब्यूटीफुल सैटरडे इवनिंग डियर लिसनर्स. थैंक यू एवरीबॉडी हुज़ ट्यून्ड इन एंड सेंडिंग दोज मैसेजेस एंड वी प्रॉमिस टू कंटिन्यू प्लेइंग great music, great Saturday sizzling music for you guys for the rest of the evening for you, and at least from our end, from the Western music section, for this program till 8 p.m. Yes, and the next track which is queued up for you is called Dr. Jones.

0: Well, Jennifer Lopez stole what she had to. She ain't mama for the boys. Yes, and for now it's time for us to take the first and the only break of the show. But please promise me that you'll not touch the dial and you will be right back. Enjoy.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. Phir aaya entertainment ka revolution. Jab kone kone pahuncha Doordarshan. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
5: खेतों से आपकी क्यारी तक बागों से घर की फुलवारी तक हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर जी हाँ प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
0: Welcome back, and for those who've just tuned in, this is the station of the nation, 102.6 MHz Akashwani FM Rainbow, and the program live right now on your airwaves is called Saturday Sizzlers, where we are playing sizzling music for you to enjoy, to help you enjoy your Saturday evening, and well, we've played quite a few nice pop tracks for you all, and the next track that we've queued up for you is called Swim. So let's continue swimming in the ocean of great, great Western music, and this is Swim by BTS. Enjoy.

पेश अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि राजकोषीय विवेक अवसंरचना निवेश बैंकिंग सुधार बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में प्रत्येक देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति का भंडार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे होमुर्ज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया, ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया, कहा यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया, एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी में भारत ने मलेशिया को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारतीय हॉकी टीम ने इस जीत के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। वहीं क्रिकेट में भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। तो ये तो थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए एआईआर एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, दिल की वाणी, सबकी वाणी आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। एक बार फिर मेरा आप सभी को प्यार।

अमर भरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर। थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन चटपटा लगेगा प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन AIRFM रेनबो आकाशवाणी पर दिल से दिल तक। तो आ जाइए मेरे साथ डांस फ्लोर पर, जिंदगी का जश्न मनाइए, खो जाइए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। अर्ज किया है कि हम भी निकले थे मोहब्बत की तलाश में, हम भी निकले थे मोहब्बत की तलाश में, लेकिन ट्रैफिक बहुत था, फिर वापस आ गए।

0: जी हाँ, प्यार का सिग्नल आकाशवाणी एफएम रेनबो, म्यूजिक मस्ती चल रहा है, डांस रुकना नहीं चाहिए। बरखुदार एक और ट्रैक आपके लिए चला रहे हैं,
1: तो आइए हमारे साथ जिंदगी का जश्न मनाइए।

दोस्तों कहते हैं कि वैसे दोस्ती में सॉरी नहीं होता, बस एक छोटी सी लाइन होती है। क्या होती है? चल चाय पिलाता हूं। बस यही एक दोस्ती का सबसे बड़ा खूबसूरत सा एक फलसफा है, क्योंकि दोस्ती ऐसी ही होती है। नाराजगी भी हो जाए ना, फिर भी कहते हैं चला चाय पीते हैं, बातें करते हैं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती चल रहा है और आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन। कहते हैं कि खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा चेहरा, खूबसूरत सी आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, प्यारा सा इखलाक। ये तो हुई मेरी बात। और सुनाओ, कैसे हैं आप?

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: आए हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी।

और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। और कहते हैं ना कि शराफत तो बचपन में छोड़ दी थी दोस्तों, अब तो सीधा कॉमेडी से वार करते हैं, दिल से दिल तक मुलाकात करते हैं। हमारे साथ सुरेश वैष्णव जुड़े हुए हैं उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल, आप सबका स्वागत है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती, और हमारे साथ पंकज अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, बबलू कश्यप, जोनी कश्यप, विपिन कश्यप, नवाब अहमद, पिंटू दीवाना, संजय मलाकर न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुरेश वैष्णव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कवि प्रेमचंद प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धामपुर से, और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और आप यूं ही अपना प्यार अपने मैसेजेस के जरिए बांटते रहिए, और अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर कुछ ही देर में रहेंगी आपके साथ नमिता, और रात्रि 11 बजे एक बार फिर जुड़ेंगी आपके साथ रंगे महफिल में नमिता। तो सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक समझ नहीं आता कि जिंदगी यादें हैं या यादों में जिंदगी। बस यही फलसफा है कि यूं ही जिंदगी के साथ आगे चलते जाओ और जिंदगी को हर पल को खुशनुमा बनाओ और बस दिल से यही गुनगुनाओ।
1: It's Valentine's Day. Groove.

दोस्तों, अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। चलते चलते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी हसीन है। जिंदगी से प्यार करो, है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुमको है इंतजार। खुद पर यकीन और रब पर एतबार करो, और अगला प्रोग्राम आपकी याद आती रही लेकर आपके साथ रहेंगी नमिता। अब अपने दोस्त आरजे वीर दमन को दीजिए इजाजत। बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 साल पूरे हुए। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। तो ये थे इस वक्त की अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। आपकी याद आती रही।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

मोहब्बत के एहसास कभी मरते नहीं, दिल हमेशा आबाद रहता है यादों से, उन यादों से जो कभी साथ गुजारे होते हैं, उन यादों से जो बिछड़ने का सबब बनते हैं, उन यादों से जो दिल को दर्द देते हैं।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नविता के साथ। एहसास आपके

काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझे मुंह फेर कर गुजरना है। इश्क में दिल का हाल कुछ ऐसा ही होता है, जब कह नहीं पाता दिल कुछ तो सोचता है मुलाकात हो भी जाए और कतरा कर निकल भी जाए, झलक मिल भी जाए और बात भी ना करें।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: तो यादों का सफर यहीं थामते हैं, मिलते हैं आपसे एक घंटे बाद रंगे महफिल में। रहिएगा हमारे साथ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों की स्पर्धाएं आज तकरीबन समाप्त हो गईं। दो सप्ताह का खेल मेला, शानदार जानदार प्रदर्शन की खुशी तो कहीं चूक जाने का गम, या फिर अपने तई हर संभव प्रयास न कर पाने का मलाल, यही तो खेल है। खेलों का रोमांच है, खेलों का जुनून है, उनका जादू है। खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
2: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू successfully defend their Asian Games title. Batting first, India posted an imposing 211 for 6. Abhishek Sharma led the charge with a blistering 61 of 28 deliveries, including 7 sixes and 3 fours. He brought up his half century in only 20 balls. Tilak Varma provided the finishing flourish with an unbeaten 51 of 22 balls, helping India cross the 200 mark. Pakistan's chase got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up 2 important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
1: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर। टीम पूरा चढ़कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो, गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हूटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने 5वें स्वर्ण पदक का जयघोष था वो। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ

0: क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही चॉइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की, लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई, गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल, और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया, लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपनी लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति और दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the Games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound category.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दाव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत की, जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझाऊ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझाऊ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
0: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
4: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने चौथे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
0: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
0: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
1: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 केजी राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। शी वाज डिफीटेड बाय किम यूजन ऑफ साउथ कोरिया इन दिस राउंड। इन द वुमेन्स 67 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन ताइक्वांडो, ज्योति यादव लॉस्ट टू कैनला 0-2। शी वाज दस नॉक्ड आउट एंड इंडियाज कैंपेन इन द स्पोर्ट एंडेड विद दिस लॉस।
0: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी में माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी जानते हैं मेघा से।
2: इन सेलिंग 16-year-old माही वर्मा फिनिश्ड 6th ओवरऑल इन द गर्ल्स डिंगी इवेंट एज अ कॉम्पिटिशन कंक्लूडेड टुडे। माही कंप्लीटेड द 12 रेस ओपनिंग सीरीज विद 75 टोटल पॉइंट्स एंड 57 नेट पॉइंट्स। शी फिनिश्ड 8th इन ओपनिंग सीरीज रेस 12।
0: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।

0: courtesy of a late search that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
1: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
0: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutants has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Tharyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60kg category. Jemina's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10-meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75kg boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years. And the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
1: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आंखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को आज्ञा दें, शुभ रात्रि। एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग दिल्ली, गुड इवनिंग इंडिया। दिस इज 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम रेनबो इंडिया एंड द प्रोग्राम लाइव ऑन योर एयरवेव्स राइट नाउ इज कॉल्ड इन द ग्रूव एंड इट्स अ ब्यूटिफुल लवली सैटरडे इवनिंग ऑन द 3rd ऑफ अक्टूबर 2026। एंड सो माय नेम इज आकांक्षा मिश्रा एंड आई विल स्टे विद यू अंटिल 11 PM and play music which will help you groove the night away. So let's start the groove with a very very silky smooth soft track in the voice of Ilior James Ray, and the track's name is called I Think They Call This Love.

0: And dear listeners, you are our number one. Yes, you will always remain on the top of our list. And the music that we curate for you will always be the favorite thing that we have to do on our jobs here. Yes, and time at the studio clock is 33 minutes past 10 p.m., which means we have a little less than 30 minutes left for this show. And which also means that there is great music in line for you. But for now, it's time to take the first and the final break of the show. And please, a simple promise, as I always say, do not touch the dial. Stay tuned in, because we will be right back.
1: Koyal si teri boli.
2: Aye, aye.
1: Tere chhi nazar mein hai jadu.
2: Are besure gaane kyon suna rahi ho mujhe?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Welcome back. This is 102.6 megahertz Akashwani FM Rainbow. And thank you, dear listeners, for keeping your promise. And I'm so glad that you are still tuned in for this show, which is called In the Groove. And my name is Akanksha Mishra. Yes, and we are playing songs for you on this beautiful Saturday evening, which will help you groove just a little in the Sunday. Yes, and...

नमस्कार दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं, सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना, निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह

कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया। त्रिपुरा में कैलाश शहर नगरपालिका परिषद को प्रधानमंत्री आवास योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पुरस्कार दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी ओर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रंग महफिल नविता का सलाम कबूल कीजिए।

मोहब्बत का सफ़र नाजुक तो है, दिल जिस पर आ जाता है, जहाँ दिल ठहर जाता है उसे कह दें और इनकार मिले तो खो जाने का डर है, और मिल जाए तो भी खोने का डर है। इसलिए जो है वो खूबसूरत है।

0: मोहब्बत का हर रंग खूबसूरत, मोहब्बत के सफ़र में मिले हर एहसास ख़ास है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है।

0: मोहब्बत में मिले गम भी यादों का खजाना भर जाते हैं, है ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

तुम मेरे लिए अब कोई इल्ज़ाम न ढूंढो, तुम मेरे लिए अब कोई इल्ज़ाम न ढूंढो, चाहा था तुम्हें एक यही इल्ज़ाम बहुत है। रेनबो दिल से दिल तक, मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

बातें कहाँ पूरी होती हैं, निगाहें कहती हैं निगाहों से, दिल सुनता है बुनता है, पर एक इजहार पूरा नहीं होता। उनका जिक्र, उनकी तमन्ना, उनकी याद, वक्त कितना कीमती।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से

0: दुश्मनों के खात्मे तक। ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: और दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना, निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा, अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत। सीबीआई ने मुंबई की कंपनी हंजर बायोटेक एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रबंधकों और जमानतियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4थे स्थान पर। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आइए अब ले चलते हैं आपको हमारे रेनबो चैनल पर अगले कार्यक्रम की ओर, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये मीठी धुन।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब ले चलते हैं आपको गीतों के सुरीले सफर की ओर। कार्यक्रम है जीरो आर शो, तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर जीरो आर शो।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी रिनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना विनिवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को विदेश मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलजमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। कहा, यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन की शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच जीता। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते।

पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब हम आपको लेकर चल रहे हैं सुहानी रात के सफर पर। जी हाँ, कार्यक्रम का नाम है सुहानी रात।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बड़ी स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा कि ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप ने 162 रन की शानदार पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच जीता। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुजुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर है। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

और आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें भुलाया जाना बहुत ही मुश्किल है। कार्यक्रम है भुलाए ना बने, आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूड़ी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 19वां संस्करण अगले साल 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। और खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलेडीज़।

0: मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना, निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से देश की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूडी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हुए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने रक्षा अभियान में समन्वय किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी रेनबो चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कार्यक्रम सारेगामा।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से

देश की आर्थिक स्थिति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद राधामोहन सिंह रक्षा समिति के अध्यक्ष और राजीव प्रताप रूड़ी को जल संसाधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 12 वर्ष पूरे हुए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया। ये कदम पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गैरकानूनी घुसपैठ के खिलाफ भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने के लिए उठाया गया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया। कहा, ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने शास्त्रीय असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी। और खेल जगत की बात करें तो क्रिकेट में वेस्टइंडीज ने न्यू चंडीगढ़ में तीसरे और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष हॉकी और क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहत और गोल्फर प्रणवी उर्सी ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। और भारत ने कल 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारत अब 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रही हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।